0: भूख लगी
1: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
8: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
9: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
10: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, FunAsia Radio.

दिल के टुकड़े हजारों करने के लिए नहीं, बहुत सारे हजारों टुकड़े जोड़ने के लिए पारो आती है। बहुत लंबे टाइम बाद आप लोगों से हो रही है मुलाकात इस टाइम पर, यानी कि 7 PM। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेंसडे इट इज। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वेंसडे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो गया। जुलाई मेरा बर्थडे मंथ है, तो जुलाई मेरा फेवरेट मंथ है ऑब्वियसली, बट ऑल्सो जुलाई इज इट्स एटलीस्ट टूडे इज द बिगिनिंग, द मार्क ऑफ, बिल्कुल शुरुआत हो गई है एक इंडिपेंडेंस टाइम की। लॉट ऑफ पीपल आई वॉज लिसनिंग टू, दे वर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस डे। आ रहा है बिल्कुल, दिस इज लॉन्ग वीकेंड बहुत सारे लोगों के लिए, थर्सडे फ्राइडे को ही शुरू हो जाता है एंड 4th of July इज कमिंग, सो इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम। US का इंडिपेंडेंस डे है। आई वॉज इन द स्टोर टूडे एंड वॉज वॉचिंग सब ब्लू रेड ऑल दोज पैराफिनेलियाज, ऑल द फ्रीडम के सेलिब्रेट करने के लिए जो इतना सारा सामान था और इतनी सारी लोग शॉपिंग कर रहे थे। सो यस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वेंसडे, 1st of July, a very happy 1st of July to you all from here, from Funisha Studio, Funisha Radio ke studio se, Paro ki taraf se.

0: What a beautiful song. और बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई. थोड़े साल पहले आया था, आई थिंक कुछ साल पहले, बट स्टिल इट वॉज वेरी लाइक अ बिग वायरल. बहुत सारे लोग इस पे डांस करते थे. एंड यस, द फीफा फीवर चल रहा है. लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग, टॉकिंग अबाउट इट. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ के सारी दुनिया बात कर रही है फीफा की, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स से थोड़ा सा दूर रहती हूँ. बट दूर कैसे रह सकते हैं, फीफा का जो आई थिंक फॉलोइंग है, और डालस में हमारे यहाँ पर इतने सारे मैचेस हुए हैं, वेरी एक्साइटिंग. तो इवन दो मैं दूर रहती हूँ, बट आई स्टिल वॉच्ड सम ऑफ देम, मतलब वॉच्ड इन द टीवी, जाके तो नहीं देखा है मैंने, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स दैट पीपल हु हैव गॉन देयर एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज. सो इफ यू हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर, क्या कर रहे हैं समर, कौन सी टीम को कर रहे हैं आप सपोर्ट, या टीम्स को, इतनी सारी टीम्स हैं कि एक बार तो आप आई थिंक एक को सपोर्ट करना मुश्किल है, हो सकता है आपकी एक लिस्ट हो ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये. And so if you have something like that that you want to share, or if you have a song in mind that you want to listen, a song that celebrates you, that celebrates your loved ones, something that you want to dedicate to someone, koi anniversary hai, koi birthday hai, ya fir US ka इंडिपेंडेंस करना चाहते हैं सेलिब्रेट, कॉल कर सकते हैं 972-235-5555. देखिए नंबर अभी बताया लेकिन कॉल बजने लगा. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर ऑन एयर. बड़ी बड़ी आवाजें आ रही हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा आप अपना कम करिए. चलिए इनसे हम बाद में बात करेंगे. फरेशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हाँ
0: जी,
1: लेकिन नाम दिस वर्ल्ड कप जिस वो एक गाना बजाता उन दो स्ट्रेस उन पास सीधे पालन ते मरिया
0: उन दो स्ट्रेस. अच्छा वो वाला, मतलब कि नॉन इंडियन,
1: नॉन.
0: हाँ जी, हाँ जी, समझ गए. रिक्की मार्टिन साहब का ये, आप तो उनो दोस्त बोलेंगे तभी मैं समझ जाऊंगी. लेकिन हम बॉलीवुड के गाने चलाते हैं सर जी, तो कोई बॉलीवुड का ऐसा करती हूँ मैं आपके लिए, बॉलीवुड का उसी से मिलता जुलता गाना चला दूं.
1: No, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा. Anyways,
0: फिर तो ओके, श्योर श्योर, ओके थोड़ा सा गा के निकल गए. चलिए मैं लगाती हूँ उनका गाना, फिलहाल आप ये गाना सुनिए, उसके बाद मैं इनका गाना ढूंढती हूँ. जनाब ने नाम भी नहीं बताया अपना.

0: A very happy Canada Day. जी हाँ, जो जुलाई 1st है, दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज कैनेडा डे. और स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में, क्योंकि स्पोर्ट्स की बहुत बात चल रही है विद फीफा, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉबी बोनिला डे. फनिशर रेडियो, यू आर ऑन ईयर. अरे ये कौन बच्चा चीखा? फनिशर रेडियो, यू आर ऑन ईयर. हाँ जी बोलिए. हेलो. हाँ जी. यस, आई थिंक आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है. आपको थोड़ा सा आपको स्पीकर बंद करना पड़ेगा और थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा. हाँ जी बोलिए. आई कैन नॉट लिसन, आई कैन नॉट हियर यू. आपको स्पीकर बंद करना पड़ेगा. ओके, चलिए आप फिर से कॉल करिए. स्पीकर मुझे रखना पड़ा फोन. मैं बताना चाहती हूँ हमारे मित्रों को, क्योंकि आज मुझे बड़ा बुरा लगा. अभी शो शुरू किया है मैंने 7 बजे और मुझे 2 फोन रखने पड़े, क्योंकि वन देर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. आई लव टू टेक यू ऑन एयर, आई लव टू टेक योर रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं, अपना समझ के कॉल करते हैं. दैट टू मी इज मीन्स अ लॉट. गाना आप तो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, बट आप अपना समझ के कॉल करते हैं. रियली लव इट. लेकिन रेडियो पर बहुत जरूरी है, बहुत सारी दुनिया सुन रही है, हजारों हजारों लोग हमें सुन रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉइस क्वालिटी रिमेन्स गुड. स्पीकर ऑफ करके कॉल करिए, जल्दी से अपनी रिक्वेस्ट बताइए. फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हेलो, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड. देखिए आपने मेरी बात सुन ली, बढ़िया क्वालिटी है एकदम आपकी आवाज की. आप तो यहाँ पे मेरी जगह पर आ सकती हैं.
1: नहीं, मैंने ना बिल्कुल पीछे से पहले बंद कर दिया, उसके बाद मैंने कॉल की.
0: अरे वाह वाह, आपको तो मैं अवार्ड दे दूंगी आज कैनेडा डे के दिन.
1: आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि वो सब लोग जो है वो बिल्कुल अच्छे मोड में आ जाते हैं.
0: अरे वाह वाह, आपका क्या नाम है? इतनी प्यारी बातें कर रही हैं आप.
1: आशी.
0: आशी, देखिए आशी नाम है आपका.
1: आशी.
0: हाँ जी, आशी.
1: जी जी.
0: अच्छा,
1: मैंने वो एक सॉन्ग सुना है, मैं तेरे इश्क में, जो नया वर्जन नहीं अभी आया वो.
0: नया वर्जन, ओके. मैं तेरे इश्क में, नया वाला इश्क वाला लगाएंगे हम, पुराना इश्क नहीं. आशी 2.0. थैंक यू सो मच.
1: आप इसी तरह से खुश करती रहे, अच्छा अच्छा शो, ठीक है, सबको खुश करती रहे.
0: ओह थैंक यू सो मच. मैं तो बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, ये तो मेरा टाइम भी नहीं है. मैं कवर कर रही हूँ वैसे, लेकिन मैं जरूर आऊंगी. या थैंक यू सो मच. ओके, बाय. बता देती हूँ आप लोगों को, वैसे बताने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद आ रही हूँ. आई थिंक महीना तो हो चुका होगा. दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो. फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर.
2: हेलो.
0: हेलो, व्हिच सॉन्ग यू वांट टू लिसन टू?
2: आई वांट टू लिसन टू घुंगरू टूट के है.
0: घुंगरू टूट के? कहाँ चले गए घुंगरू टूट के? ओहो, ढूंढने पड़ेंगे अब तो. व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज हिमाच.
0: शिमाच?
2: Himach.
0: Himach. What a beautiful name that is. Whose choice was it? Mom or dad?
2: Mine.
0: Oh, okay. Perfect. Thank you so much, Himach. Bye.
2: बाय बाय, थैंक यू.
0: फनिशर रेडियो. ओके, चलिए मैं चलाती हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट. एक जनाब ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, थोड़ा जल्दी में थे, अपना नाम नहीं बताया. चलिए उनका गाना लगाते हैं, एंड देन आई विल बी प्लेइंग योर रिक्वेस्ट वन आफ्टर द अदर. पारो इन द हाउस.

एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. अभी आप लोगों से ही बात हो रही थी तो हमारे एक और मित्र सुबू साहब ने कॉल करा और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है रेडियो पे. ये एक चीज़ मैं बहुत मिस कर रही थी बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर अ मंथ इज़ कि जब मैं कोई बात करती हूँ वहाँ से हमारे एक कोई लिसनर बात करते हैं, यू नो रेडियो पर स्पेशली ऑन एयर बात होती है, हमारे और लिसनर्स भी बहुत सारे हजारों लोग फनीशा को सुनते हैं, इट्स सच अ बिलव्ड रेडियो स्टेशन, तो कोई और सुनते हैं और ऐसा लगता है मुझे कि एक और फिर वो कॉल करके बोलते हैं कि उन्होंने ये कहा, फिर कोई और कॉल करके बोलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थ्रेड सा बन रहा है, एक नैरेटिव सा बन रहा है एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट इंटरेक्शन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो शो है एटलीस्ट मेरा शो में हमेशा मुझे ऐसा लगता है इट बिकम्स एन इंटरेक्टिव शो. मतलब मैं नहीं लिख रही हूं इसको, हम सब मिलकर लिख रहे हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट. तो आशीष जी ने कॉल करा और जिस गाने की रिक्वेस्ट करी वो 2.0 वाला सॉन्ग जो है दैट इज द रीमिक्स वर्जन. मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है और अगर उनके अच्छे रीमिक्स आते हैं तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है. सो थैंक यू सो मच आशीष जी, जितनी आप प्यारी बातें करती हैं जितना आपका प्यारा नाम है उतना ही आपने प्यारा गाना चूज किया. और इस पर एक और प्यारी बात बता देती हूं कि सुबू जी ने कहा कि आशी आपका नाम सुनकर उन्होंने ये कहा, शायद आपको जानते भी नहीं है वो वैसे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे एक दूसरे लिसनर, ये ऑफ एयर बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि आशी ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म जो उन्होंने करी थी आप लौट चले उसमें उनका नाम आशी था. तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है. और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि डालस में मेरे मित्र रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ कुणालन दीप्ति, और उनकी भी सबसे छोटी बेटी का नाम आशी है. और चूंकि अब इतनी आशी की बात हो रही है तो मैंने सोचा मैं भी पता लगाऊं क्योंकि आशी का मीनिंग क्या है. तो आशी का इंटरेस्टिंगली बहुत सारे मीनिंग्स हैं क्योंकि आशी इज अ क्रॉस कल्चरल नेम, सो इट्स नॉट जस्ट अ हिंदी संस्कृत नेम जो कि अगर इंडियन वर्जन में देखा जाए तो वो होता है विच मीन्स होप एंड ब्लेसिंग और ब्यूटिफुल स्माइल, लेकिन ये पर्शियन वर्ड भी है विच इज पीस एंड जॉय. बहुत जरूरत है हमें पीस की, राइट, बहुत जरूरत है हमें आशी की, आशा की. आशा भी उसी से बना है ऑब्वियसली, आशी एंड जापानीज और बहुत सारे ग्लोबल मीनिंग है. जापानीज में तो खैर फुट है बट बहुत सारे इस तरह के अलग अलग मीनिंग है. सो आशी देखिए हमने तो आपको फेमस कर दिया, कॉल करते रहिए फनीशिया वायरल होने के लिए.

0: Phanisha Radio, you are on here.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi, Paro. I thought I just cut off.
0: Hanji, aapka
1: you're still talking.
0: Yeah, yes, yes. Yeah, your name.
1: Mariam.
0: I actually thought
1: Mariam
0: it's Mariam.
1: Sohail,
0: yes. The fun couple.
1: Yes.
0: The best couple in Dallas. Yes, I thought it is Mariam and Sohail, but maine socha ki ek bar main confirm kar lun, thode time baad aa rahi hun, but yes, I could tell from, kyunki piche thodi thodi awaaz aati hai unki na, to pata chal jata hai.
2: हमने बहुत मिस किया आपको. रियली वी मिस यू.
0: थैंक यू सो मच. आई आल्सो मिस. थैंक यू सो मच. आई आल्सो मिस यू ऑल. थैंक यू.
1: श्योर. बाय
0: बाय
1: बाय.
0: बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं, सो लेट मी प्ले अगला गाना एंड आई विल बी प्लेइंग मोर सॉन्ग्स आफ्टर. जो आपकी रिक्वेस्ट है वो थोड़ी ब्रेक के बाद बाकी चलती रहेंगी एज दे आर इन क्यू. जैसे कहते हैं आप कतार में हैं, आपकी रिक्वेस्ट कतार में है. हिमाच जो हमारे एक प्यारे से बच्चे हैं, मैं उनकी एज नहीं पूछी लेकिन आवाज से लग रहा था कि बच्चे हैं. हिमाच साहब ने ये गाने की रिक्वेस्ट करी है, सो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड विद दैट वी विल बी हेडिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. उसके बाद लौटेंगे यहीं पर और करेंगे और बहुत सारी ढेर सारी बातें. 10 बजे तक है पारो आपके साथ. वी विल लिसन टू your songs that you want to listen. Happy 1st of July.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
3: Excuse me. It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
3: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
4: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: It's Lawson.
8: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
9: It's Lawson.
8: Daddy, what is the law?
10: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
11: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा।
12: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
13: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
12: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
12: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
14: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
17: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
2: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल कॉल्स. आई एम एंजॉइंग. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वापसी हुई है. जैसे कई बार होता है ना, हम छुट्टियों में अगर इंडिया पाकिस्तान अपने घर जाते हैं, तो जैसे घर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आराम से. मतलब आई थिंक मुझे कभी इतना रिलैक्सिंग नहीं लगता कभी कहीं पर वेयर आई फील इन दिल्ली. वो भी दिल्ली में. मतलब इमेजिन, दिल्ली में जाके मुझे रिलैक्सिंग लगता है. दिल्ली के लोग इतने हाइपर होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. लेकिन लगता है क्योंकि ऐसा होता है जहां हम बड़े हुए होते हैं, जहां हमारा बचपन बीता होता है. एंड दैट कैन बी अ प्लेस इन द यूएस. कई बार हमारे मित्रगण हैं, मेरे दोस्त हैं जो कैलिफोर्निया में बड़े हुए हैं, या दे फील द सेम एट दैट प्लेस. सो आई थिंक पीपल हैव दैट अटैचमेंट विद चाइल्डहुड प्लेस. मेरे लिए वो दिल्ली है, किसी के लिए हैदराबाद होगा, लाहौर होगा, किसी के लिए कैलिफोर्निया होगा. सबके लिए अलग अलग होता है. बट दैट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन दैट यू गेट, दैट यू हैव गॉन इन टू योर चाइल्डहुड, यू हैव गॉन इन अ टाइम वेयर थिंग्स वर लाइक सो रिलैक्स्ड. मतलब भाग नहीं रही थी जिंदगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी जिंदगी ऐसी ही होती है. मतलब इट्स लाइक दे आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट, एंजॉइंग फुली. तो ऐसा हम जब उस टाइम में जाते हैं, उस जगह में जाते हैं, तो वो जो वाइब्स होती हैं वो फिर हमें घेर लेती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी भी फिर से एकदम रिलैक्सिंग हो गई है. वैसे नहीं हुई है. अगर आप फोन देखेंगे, ईमेल देखेंगे, तो वो तो सच में भाग रही है, लेकिन एक फीलिंग इस तरह की आती है. एंड उसी फीलिंग के साथ अगला गाना मैं चलाती हूँ, जो सुब्बू जी ने कॉल किया था और रिक्वेस्ट करी थी थोड़ी देर पहले. एंड सॉरी सुब्बू जी, थोड़ी देर बाद चला रही हूँ, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं तो एक के बाद एक चल रहे हैं. एंड आई हैव अ फ्यू मोर रिक्वेस्ट, बट आई कैन टेक मोर रिक्वेस्ट. 972-355-5555 पारो इन द हाउस.

रिक्वेस्ट करी थी थोड़ी देर पहले, एंड सॉरी सुबू जी थोड़ी देर बाद चला रही हूँ क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं तो एक के बाद एक चल रहे हैं, एंड आई हैव अ फ्यू मोर रिक्वेस्ट बट आई कैन टेक मोर रिक्वेस्ट। 972-355-5555 पारो इन द हाउस।

वंडरफुल फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है ये। हाईवे पे जो ट्रक में घूमते रहते हैं रणदीप हुडा और आलिया भट्ट, एंड द फिल्म की स्टोरी एंड जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक वही क्वेश्चन इसमें किडनैप होती है वो तो ये इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई थिंक इट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट ये एक सवाल पूछती है ये फिल्म, जो मुझे लगता है कई बार हम लोग भी अपने आप से पूछते हैं कि वॉट इज एक्चुअली फ्रीडम। क्या फ्रीडम इज जस्ट अ फिजिकल कैप्चर, मेंटल कैप्चर, इमोशनल कैप्चर, ये उससे उससे आप अगर उससे आप निकल पा रहे हैं क्या वो फ्रीडम है? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सेलिब्रेट फिजिकल फ्रीडम, राइट? अगर आप कैप्टिविटी से निकल गए हैं, अगर एक कंट्री अभी यूएस की इंडिपेंडेंस आ रही है, तो अगर आप किसी की कैप किसी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है और वहां से आप छूट कर भाग गए हैं, तो दैट इज फ्रीडम एंड वी सेलिब्रेट। बट जैसे जैसे अगर हम ये फिल्में अगर हम इनकी बात करें हाईवे की या इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी कहानियां हैं और हमारी अपनी जिंदगी में भी, एंड देन वी रियलाइज दैट नो, फ्रीडम डेफिनेटली इज मोर visible when it is physical freedom, but there are a lot

ऑफ काइंड्स ऑफ फ्रीडम, स्पेशली बहुत सटल होता है, बहुत कई बार समझ नहीं आता, दिखता नहीं है, वो होती है मेंटल मेंटल कैप्टिविटी एंड इमोशनल कैप्टिविटी, सोशल कैप्टिविटी. ऊपर से आप फ्री हैं लेकिन आप बंधे हुए हैं, बुरी तरह बंधे हुए हैं, और उससे जब फ्रीडम मिलती है तो कैसा लगता है. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म फॉर दैट आइडिया. एंड विद दैट बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. Ye licensed hai 50 states mein. Their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Whether you are buying your first home, upgrading or refinancing, start your home ownership journey with confidence today. Aap call kar sakte hai, unka number hai 972-245-5626, or you can visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, make Dream Homes happen. And with that, हमारे स्टार कपल, मैं बहुत बातें होती थी उनसे जब कुछ महीने पहले, एक महीने पहले जब मैं रेगुलरली शो करती थी इस टाइम पर, तो बहुत अच्छा लगता था. मरियम और सोहेल बहुत ही प्यारे कपल हैं, और उनकी रिक्वेस्ट पर, सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन रिक्वेस्ट काफी सारी है मेरे पास, इसके बाद भी लाइन है रिक्वेस्ट की. सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर द ब्यूटिफुल कपल मरियम एंड सोहेल.

श्रीनिवास जी ने कहा कि एक तमिल गाने की वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम तमिल गाने नहीं चलाते, क्योंकि तमिल हमारा अपना रेडियो स्टेशन है, हमारे पास बहुत अलग रीजनल रेडियो स्टेशंस हैं और उनकी अपनी लिसनरशिप है, एंड यू नो सो ये हमारा बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है, तो हम प्राइमरली बॉलीवुड के गाने चलाते हैं, इसमें इंग्लिश भी नहीं चलाते, वी जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन बॉलीवुड, और अगर हो सकता है कुछ उसमें रीजनल वर्ड्स आ जाए, क्योंकि इतनी मिक्सिंग है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जिसमें पंजाबी गाने मिले हुए होते हैं, बॉलीवुड में भी बहुत पंजाबी होते हैं, गुजराती होते हैं, लेकिन हम जो बॉलीवुड से रिलेटेड हों वही चलाते हैं, चाहे उनमें कुछ और लैंग्वेजेस आ जाएं. लेकिन फिर भी श्रीनिवास जी को एक सिंगर बहुत पसंद है, जो मुझे भी बहुत पसंद है, वैसे ओरिजिनली साउथ के सिंगर हैं, एसपी बाला सुब्रमण्यम. तो उनका गाना मैं एक चलाती हूँ आपके लिए, और इतने सारे गाने हैं श्रीनिवास जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम के जो मुझे पसंद है. मैंने तो उन पर 2-3 घंटे के शो भी किए हैं, जब मैं पहले बातें सितारों की शो करती थी, और उनकी पूरी उनकी बहुत सारी बातें करी हैं, उनकी जो कहानियाँ बहुत सारी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ ही हैज लेट. 74 की एज पर वो हमें छोड़कर चले गए 2020 में, पर कितने सारे गाने और इतने सारे उन्होंने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं. ही इज सच एन आइकॉनिक सिंगर. आई थिंक ऐसे सिंगर दुनिया में और बहुत सेंचुरीज में एक बार होते हैं, ऐसा मुझे लगता है. एंड व्हाट अ वंडरफुल सिंगर ही वाज, एंड हिज वॉइस विल ऑलवेज रिमेन विद अस. लेकिन उससे रिलेटेड, एसपी बाला सुब्रमण्यम से रिलेटेड हमारा मैं अगला गिव अवे भी कर रही हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बात करके, और मुझे उससे भी उसी तरह से बहुत अच्छा लगता है बात करके फन पिज्जा किचन की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फन पिज्जा किचन. मैं जानती हूं आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं. सो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट फन पिज्जा किचन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द गिव अवे. इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. फॉर ऑल माई वेजी लवर्स, ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद दैट टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. एंड फॉर द मीट लवर्स, द तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. तो चाहे आपको बोल्ड पसंद हो या ब्यूटीफुली बैलेंस्ड पसंद हो, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन. डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं उनकी वेबसाइट विच इज funpizzakitchen.com. एंड इफ यू वॉन्ट टू विन $10 गिफ्ट कार्ड, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट. एंड लेकिन उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन फ्रिस्को टू कलेक्ट दिस गिफ्ट कार्ड. और पिछले एक महीने में आपने ये पर्टिकुलर गिफ्ट कार्ड नहीं जीता हो. दोज आर द टू रिक्वायरमेंट्स, दैट्स ऑल वी हैव. एंड सवाल क्या है, अगला गाना चलाऊंगी. सवाल मुझे, आपको मुझे ये बताना है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, बड़ा फेमस शहर है साउथ का. 9723555555, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज गोइंग टू विन $10 फ्रॉम फन पिज्जा किचन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम फ्रिस्को. पारो इन द हाउस.

आप चाहे कितना भी मना करें एसपी बाला सुब्रमण्यम जी कि इतना करो ना मुझे प्यार, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, बेइंतहा प्यार करेंगे, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे गाने, इतनी इतनी सारी मेमोरीज हमें दी हैं। नेल्लोर में जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश में है नेल्लोर, एंड दिस वाज माय क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर। ये हैं हमारे, मैं नाम ढूंढती हूँ इनका तो द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर जिनको फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड मिला है, शिवानी बाजवा। सो मुबारक हो आपको शिवानी जी टू विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड। और एस बी बाला सुब्रमण्यम की ये एक छोटी सी बात है, वैसे तो बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन छोटी सी बात है कि नेल्लोर में एक छोटी सी जगह में उनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश में। इंजीनियर बनने के लिए निकले थे, बीमार हो गए, इंजीनियर नहीं बन पाए और देखिए सिंगर बन गए एंड कुछ ऐसा ही होता है कई बार जिंदगी में, आप कहीं की तरफ निकलते हैं और आपको लगता है कि ये जो सड़क है, ये जो मंजिल है, तो बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है, और कुछ एक बड़े इंजीनियर बनेंगे, बड़े बंगले में रहेंगे, बड़ा कोई अच्छा जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा, क्योंकि ऐसी उनकी ख्वाहिश थी, वो एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, एक इस तरह की उनकी ख्वाहिश थी। एक मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश होती है, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि प्लेबैक सिंगर बनेंगे और ऐसे बनेंगे कि इतने अवार्ड्स जीतेंगे, इतने वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे, ऐसा तो बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं। एस बी बाला सुब्रमण्यम जी ने भी ये नहीं सोचा था, कॉलेज में ऐसे गाते थे फेस्टिवल्स वगैरह में लेकिन ऐसे ही वहीं से उनकी निकल पड़ी गाड़ी, बीमार हो गए और इंजीनियरिंग खत्म नहीं कर पाए, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में घुस गए, और एक बार घुसे और लोगों ने देखा कि भाई ऐसी आवाज है, तो फिर तो उसके बाद 6 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, इन सब में उन्होंने गाने गाए, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। 25 आंध्र प्रदेश के जो नंदी अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है तेलुगु सिनेमा का, वो 25 जीते हैं, और पता नहीं कितने सारे 4 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, और फिल्म फेयर अवार्ड इन बॉलीवुड एज वेल, और He has a Guinness World of Book record, Guinness record for recording the highest number of songs by a singer with over 50,000 songs in 16 languages. और इतना ही नहीं, उन्होंने एक दिन, एक पर्टिकुलर दिन तो ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक किया, 8th February 1981, that he set a record by recording 28 songs in Kannada in a single day, along with 19 songs in Tamil and 16 in Hindi. मतलब एक दिन में, मतलब मुझे लगता है पूरा दिन वो गाते ही रहे अलग अलग भाषाओं में, and that is एस बी बाला सुब्रमण्यम फॉर यू। चलिए मैं एक जल्दी से गाना लगाती हूँ आप लोगों के लिए, एक रीमिक्स है, ये हमारे राम कुमार साहब जिनका जन्मदिन है आज, वेरी हैप्पी बर्थडे राम कुमार जी। देवानंद के बहुत बड़े फैन है, तो मैं आपके लिए एक देवानंद साहब का गाना तो नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि वो 90s के बाद के हम चलाते हैं, लेकिन मैं एक रीमिक्स चलाती हूँ, देवानंद साहब का ये गाना मुझे बहुत पसंद है और इसका रीमिक्स भी बड़ा प्यारा है, ये आपके लिए। अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ फनेशिया। छोटे से ब्रेक में जाएंगे, लौट कर यहीं आएंगे, पारो इन द हाउस।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting, rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स. व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
7: कुछ भी नहीं. उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
6: क्या मतलब?
7: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
6: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
18: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
19: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
18: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
20: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
21: इन प्लेनो.
20: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
17: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
22: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
19: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
22: नहीं.
19: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
22: नहीं.
19: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
22: वो भी नहीं.
19: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
23: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
24: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
25: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
26: इंडिया में?
0: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
24: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

वैसे मुझे सारे रीमिक्स नहीं अच्छे लगते, और इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारे रीमिक्स इसलिए कम अच्छे लगते हैं क्योंकि ओरिजिनल इतने अच्छे होते हैं. नॉट दैट कि रीमिक्स अच्छे नहीं है, लेकिन ओरिजिनल इतने अच्छे हैं कि समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू मैच. लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नर्सरी राइम और उस तरह का मिलाकर इसको बनाया है. फूलों का तारों का सबका कहना है, विच इज़ एन आइकॉनिक ब्रदर सिस्टर सॉन्ग. और ये गाना थोड़ा सा ही चला था ब्रेक से जाने के पहले. आई वॉन्टेड टू फिनिश दिस क्योंकि राम कुमार साहब को देवानंद बहुत पसंद है और राम कुमार साहब का जन्मदिन है. और इससे और एक और चीज बताना चाहती हूँ कि राम कुमार जी, शायद आपको नहीं पता होगा, बट यू शेयर द बर्थडे मंथ विद मी. जुलाई मेरा भी बर्थडे मंथ है. मुझे जुलाई बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों. जुलाई 9th मेरा बर्थडे है, अभी वक्त है थोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई आता है और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होना शुरू हो जाता है. मतलब मन में अंदर से मैं सेलिब्रेट करने लगती हूँ, अंदर से मुझे खुशी होने लगती है, पता नहीं क्यों. आई थिंक मैं ही हूँ जो कुछ ज्यादा सीरियसली लेती हूँ बर्थडे वाली चीज को. लेकिन एक और चीज है, आज है जुलाई 1st, एंड जुलाई 1st इज एक्चुअली नेशनल पोस्टल वर्कर डे. जी हाँ, इट इज अ डे दैट रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर द मेल कैरियर्स हु कीप अवर मेल डिलीवरी रनिंग. और ये जो चिट्ठियां हैं, अब तो खैर चिट्ठियां थोड़ी पुरानी चीजें लगने लगी हैं बहुत सारे लोगों को. आई थिंक जो जेन जी और स्पेशली जो जेन अल्फा है उनको तो लगता होगा ये चिट्ठी क्या होती है, इसकी स्पेलिंग क्या है. लेकिन ये जो टेक्स्ट और ये मेल्स हैं, इनसे पहले और अभी भी इनफैक्ट इट इज स्टिल अ वेरी वेरी कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन जो लेटर्स हैं. इनफैक्ट अगर अभी भी बहुत जगह ऑफिशियली लेटर्स को ही माना जाता है, ईमेल्स को नहीं माना जाता. और बहुत सारे गवर्नमेंट या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, दे आर एक्चुअली दे सेंड पोस्ट को ही वो मानते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट एंड ऑल दैट. तो ये आई होप ये चेंज ना हो और जो ये मेल है, क्योंकि मेल की रिलायबिलिटी बहुत है. देखिए ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि ईमेल हम लोग सोचते हैं बड़ी रिलायबल है, टेक्स्ट इमीडिएटली किया किसी को मिल जाएगा. और टेक्स्ट तो खैर वैसे इनफॉर्मल है, उसकी तो बात ही अलग है. लेकिन ईमेल ऐसा लगता है कि आपने क्लिक किया और सामने वाले को मिल गया, कितना भी दूर कोई रहता हो. लेकिन ईमेल की रिलायबिलिटी से ज़्यादा मेल्स की रिलायबिलिटी है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है. एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज इट इज़ सच एन इफेक्टिव सिस्टम. तो अभी भी यही है कि अगर कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट से या कहीं से मेल आएगी तो वो ऑफिशियल मेल ही आएगी और वो डिलीवर होगी, एंड दैट इज स्टिल कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड एंड द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ डिलीवरी. आई फाइंड दैट टू सो फैसिनेटिंग. कितना भी AI आ जाए और कितनी भी हमारा ज़माना डिजिटलाइज हो जाए, इतने सारे रोबोट्स जो हैं हमारा जॉब ले लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन आई थिंक जो हमारी ये चीज़ें जो हमने इतनी सिविलाइजेशन जो इस्टेब्लिश करी है, इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मेल मेलिंग डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत पावरफुल है. एंड आई होप इट स्टेज दिस वे. एंड विद दैट, हमारी बॉलीवुड ने भी बड़े अलग अलग तरह के मेल करियर्स कह सकते हैं आप उनको सेलिब्रेट किया है. और थोड़ी देर पहले SB बाला सुब्रमण्यम की बात हो रही थी क्योंकि श्रीनिवास जी को वो बहुत पसंद है, ही कॉल्ड अस. और मेरे पास और 2-3 कॉल आए जिन्होंने कहा कि उनको भी SB बाला सुब्रमण्यम बहुत पसंद है. तो मुझे लगा भाई बात हो रही है पोस्टल वर्कर्स की, मेल डिलीवरी की, और SB बाला सुब्रमण्यम की, तो थोड़ा सा कबूतरों को भी याद कर लें.

0: एंड वैसे तो ये जब गाना आया था और इसके बाद भी बहुत लोग यू नो दिस इज टू बी सच अ फन थिंग कि बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा फिल्म, बहुत प्यारी थी, बट रियलिस्टिक नहीं लगता था. बट इंटरेस्टिंगली एज इफ यू रीड हिस्ट्री, कबूतरों को यूज़ किया जाता था. यस, बर्ड्स एंड पिजन्स, दे वर एक्चुअली द मेल कैरियर्स बिफोर टाइम. आई मीन बहुत पुरानी बात है, लेकिन तो अभी भी इनको याद करना चाहिए, स्पेशली ऑन टूडे डे. अगर अभी ज्वाइन किया है तो बता दें टुडे इज जुलाई 1st एंड दैट इज नेशनल पोस्टल डे. जी हाँ, जो मेल मैन डे होता है हमारे, जो हर दिन नहीं, आई थिंक 6 दिन, राइट, दे कम एंड दे डिलीवर मेल्स, अ लॉट ऑफ सर्विस, अ लॉट ऑफ वर्क दे डू फॉर अस. एंड विद दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाय CPA सुधीर पाय. They help individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. Whether you are planning for long-term wealth, retirement or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. Aap visit kar sakte hain unki website, which is mytimeequity.com, or you can call 469-702-1272 today. And with that, batana chahti hun jinhone abhi join kiya hai. दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो और आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है काफी टाइम बाद. ये वक्त अब मेरा नहीं है. देखिए, रेडियो हमारा कुछ ऐसा ही होता है, जो कभी एक हमारा वक्त होता है वो किसी और का वक्त होता है, फिर कभी किसी और का वक्त होता है. दैट्स हाउ लाइफ इज एंड दैट्स हाउ रेडियो इज. आई एब्सोल्युटली लव दिस फन थिंग अबाउट रेडियो. यहाँ जो है वक्त निकलता रहता है, चलता रहता है, और आप लोग कॉल करते हैं और इसी तरह से रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते नहीं है. रियल लाइफ में थोड़े रिश्ते बिगड़ते हैं, लेकिन हमारी इंटरेस्टिंग रेडियो की बात यह है कि यहां से हम जुड़ते हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम बस बनते ही जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट दिस फनिशिया स्टैंड्स फॉर, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एंड ऑलवेज डूइंग दैट. सो यस, मैं आप लोगों से काफी टाइम बाद मिल रही हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोगों की कॉल्स आ रहे हैं एंड आई होप आई विल गेट टू स्पीक विद यू एंड चैट विद यू एंड शेयर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड अ न्यू टाइम. बट विद दैट आई रियली होप, घड़ी में हुए 8:20, थोड़ा लेट है, बहुत सारे लोग चाय वाय पी के बैठे होंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाय एक ऐसी चीज है, स्पेशली अदरक की कड़ी कड़क चाय, दैट यू कैन ड्रिंक इट एनी टाइम. तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अभी चाय पी रहे हैं, चाय पीने का सोच रहे हैं, यू नो सम पीपल हैव चाय आफ्टर डिनर, तो आप लोगों के लिए ये वाला गाना.
1: उम्र हो 20 या 50 के अंदर, दिल्ली की सर्दी रजाई के अंदर, स्कूटर की गद्दी, हलवाई की जलेबी, आई लव यू बोलेगी तू पी.

0: आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बाबा साहेब साहब इज वेरी फिटनेस फ्रीक, ही इज वेरी मच इनटू लाइक डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ऑल दैट गुड स्टफ. तो ये जनाब खुद ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी पीते हैं, अदरक भी पता नहीं डालते हैं कि नहीं. कहने का मतलब है कि ये गाने में इतने सारी ये चाय के कप्स लेके घूम रहे हैं और बना रहे हैं गाना, बट इन रियलिटी आई थिंक ही इज लाइक अ ब्लैक कॉफी ड्रिंकर और समथिंग. बट जो भी है, आई थिंक एक चाय की प्याली से क्या हो जाएगा, क्या किसी का बिगड़ जाएगा, इज द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव. एंड विद दैट, इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट प्ले कर चुकी हूं. 7 बजे से चल रही है हमारी गाड़ी और रहूंगी आप लोगों के साथ 10 बजे तक. जी हां, आज मैं आप लोगों के साथ 10 बजे तक रहूंगी. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू आर डूइंग और यू आर गोइंग टू डू ऑन दिस लॉन्ग अमेजिंग लॉन्ग वीकेंड 4th of July जो आ रहा है, प्लीज शेयर 972-35-5555. मैं बता देती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ. जी हाँ, मैं तो काम ही काम करती हूँ. बल्कि आई थिंक इंटरेस्टिंगली कई बार मैं जब लोग छुट्टियाँ मना रहे होते हैं, सो द काइंड ऑफ वर्क आई डू, आई समटाइम्स आई एम वर्किंग जब लोग छुट्टियाँ मना रहे होते हैं. तो यस, दिस लॉन्ग वीकेंड आई विल बी वर्किंग, बट इफ बट देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप एज वेल दैट आई विल बी डूइंग, एंड वेन आई कम बैक फ्रॉम दैट इंटरेस्टिंग थिंग आई विल शेयर दैट विद यू वेन आई कम बैक ऑन रेडियो. बट फिलहाल अगर आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली शेयर करिए, कोई गाना रिक्वेस्ट करिए और अपने आप को डेडिकेट करिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने आप को डेडिकेट करते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी की तेज भाग दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं.
1: बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल्स. और समीरा जी, आपने नहीं बताया कि किसको करना है डेडिकेट, तो मैं आप ही को कर देती हूँ. हेमा मालिनी बहुत पसंद है इन्हें, एंड आई थिंक हेमा मालिनी तो खैर बहुत लोगों को पसंद है. और जब से स्पेशली मेरे साथ ऐसा हुआ है दैट बिकॉज आई रियली वॉज वेरी सैड वेन धर्मेंद्र पाजी चले गए, एंड लास्ट ईयर इट वॉज नवम्बर आई बिलीव, राइट. तो उसके बाद बहुत सारी मैंने पुरानी उनकी पिक्चरें देखी, और उनकी पिक्चरें देखी मतलब हेमा मालिनी की पिक्चरें देखी, क्योंकि उनकी जोड़ी और उनकी इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया और इतनी अच्छी फिल्में हैं. सो आई वॉज वॉचिंग ऑल दैट, एंड यस, हेमा मालिनी इज सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट. डांसर बहुत अच्छी हैं, और आई थिंक उनका एक्टिंग और काम वो सब भी कुछ कुछ फिल्मों में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली जब उनको मौका दिया गया है, बिकॉज इन लॉट ऑफ फिल्म आई थिंक शी हैजंट गॉट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. बट फिल्में उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगती थी. तो मैं चलाती हूँ ये गाना आपके लिए, चूंकि आप ने उनकी रिक्वेस्ट करी और उनके गाने पुराने हैं. हम 90s के बाद के गाने चलाते हैं या थोड़े से नए रीमिक्स इस तरह के चलाते हैं. तो मुझे एक रीमिक्स मिला, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसका रीमिक्स वर्जन चलाती हूँ आपके लिए, एंड आपके लिए समीरा जी. एंड आई एम गोना डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

वेलकम बैक। आधा हो गया है हमारा शो, आधा है बाकी, यानी कि 7 बजे से चल रही है गाड़ी, 10 बजे तक रहूंगी आप लोगों के साथ। समीरा जी का बड़ा प्यारा सा गाना है जो रीमिक्स मैंने चलाया था, और वो बहुत ही थोड़ा सा चला क्योंकि हम एक ब्रेक में चले गए। सो लेट्स फिनिश दैट सॉन्ग एंड आफ्टर दैट विल बी प्लेइंग सम मोर सॉन्ग्स। फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आबला हिंदी, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखिए कितनी है हमारी रेंज, हमारे स्पैनिश लिसनर्स हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल दैट लिसन, हमें इंडिया पाकिस्तान तो है ही, बट बहुत सारे हमारे नेपाल के, अफगानिस्तान के, पर्शिया यानी कि ईरान के, बहुत सारे हमारे लिसनर्स कॉल करते हैं हु एक्चुअली लिसन टू बॉलीवुड। तो आई विश मुझे स्पैनिश आती तो मैं उनसे स्पैनिश में बात कर सकती, लेकिन मुझे जो है पुक्की तो आती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी आती है। बट विद दैट समीरा जी, आपका गाना अब पूरा चलेगा क्योंकि ब्रेक से आ गए हैं हम लौट कर पारो इन द हाउस।

0: बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। चलिए बात करते हैं हमारे कॉल लिसनर से। फनिश रेडियो, यू आर ऑन एयर।
1: यस हाय, कैन आई बी ऑफ एयर?
0: ऑफ एयर, ओके श्योर, यस आई विल टेक यू ऑफ एयर।

0: करके चलिए बात करते हैं हमारे कॉल लिसनर से. फनिश रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: यस हाय, कैन आई बी ऑफ एयर?
0: ऑफ एयर, ओके श्योर, यस आई विल टेक यू ऑफ एयर. चलिए हम करते हैं इनसे बात. फिलहाल मैं चलाती हूँ गाना, अगले गाने जिसकी रिक्वेस्ट आई है, एंड दैट इज सफी के लिए. सफी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. सुरैया जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की आवाज़ सुनती हूँ. काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक एक महीने से ऊपर हो गया. सो यस, आई वॉज डेफिनेटली मिसिंग ऑल माई लवली लिसनर्स, एंड आप लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग ही एनर्जी मेरी बहुत हाई हो जाती है. सो आई एब्सोल्युटली लव दैट. तो सफी ने गाना इस बार नहीं बताया कौन सा वो सुनेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ सफी को कौन सा गाना पसंद है, तो मैं सफी की पसंद का एक गाना चलाती हूँ जो बहुत टाइम से मैंने भी नहीं सुना, मुझे बहुत पसंद है. सो बंटी और बबली का गाना सफी, आई नो यू आर गोना लाइक इट. फॉर यू.

पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली की याद ताजा हो जाती है जब भी ये गाना सुनते हैं। बड़ा लंबा गाना है तो मैं आई एम गोना कट शॉर्ट। हमारे एक जनाब थोड़ी देर पहले कॉल किया था एंड ही सेड ही वांट्स टू टॉक ऑफ एयर, लेकिन जनाब पता नहीं आप कहाँ चले गए आप। सो प्लीज कॉल बैक 9723555555 बिकॉज आई वॉज पुटिंग यू ऑन होल्ड एंड फिर आप नहीं मुझे मिले क्योंकि आपने शायद डिस्कनेक्ट कर दिया। बट यस, इफ यू वॉन्ट टू टॉक ऑन एयर ऑफ एयर, पारो इज हेयर, प्लीज कॉल 9723555555। देखिए गाड़ी चलाते हैं बहुत सारे लोग, हमें सुनते हैं, और कई बार कुछ लोग घर में काम कर रहे होते हैं और हमें बैकग्राउंड में सुन रहे होते हैं। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ, इट टेक्स एन एफर्ट टू कॉल समबडी, और आज के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है एफर्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल किसी को कॉल करना बहुत आसान हो गया है। मुझे याद है वो जमाना जब वेन वी वर लिविंग इन इंडिया, जब हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, किसी को कॉल करना होता था तो हम पहले डायरी निकालते थे, उसका नंबर ढूंढते थे और उसके बाद उसको डायल करते थे। सबसे पहले हमारे पास वो रोटरी फोन था, और जब मैं बहुत छोटी थी तो रोटरी फोन था, फिर वो बटन वाला फोन आ गया था वो, यू नो, बट स्टिल यूज टू टेक टाइम, टाइम लगता था, कॉल करते थे, इंतजार करते थे, कोई वॉइस वाली बात भी नहीं होती थी, बस घंटियां जाती रहती थी एंड कई बार कई दफा कॉल करते थे आप। तो कहने का मतलब है कि इट यूज टू बी सच अ बिग थिंग कॉल करना, लेकिन उस वक्त लोग ज्यादा एक दूसरे को कॉल करते थे। और आजकल इतना आसान हो गया है कि बस आपको किसी का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक करने की जरूरत है और कॉल हो जाएगा। तब भी लोग बहुत ज्यादा कॉल नहीं करते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि शायद जिंदगी लोगों की बहुत बिजी है, किसी को क्यों परेशान करना। लेकिन पारो उनमें से नहीं है, पारो अभी भी पुराने ख्यालात की है, यानी कि पारो को आप परेशान कर सकते हैं। और रेडियो हमारा जो फनिश है उसकी लाइन आपके लिए ओपन रहती है, सदैव ओपन रहती है। दिल तो हमारा वैसे ही आप लोगों के लिए ओपन रहता है, लाइन भी हमारी ओपन रहती है 9723555555। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा। इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, सो यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कंपनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन। सो टोटल विन विन विन विन विन विन सिचुएशन इज दिस। सो यस, फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, नंबर है उनका 4693005046, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomer.com। कोई गाना सुनना चाहते हैं, थोड़े गाने और चला सकती हूँ आप लोगों की पसंद के, 10 बजे तक हूँ मैं यहाँ पर। दो गिव अवे हमारे आने वाले हैं इन अ लिटल बिट, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM। थैंक यू बिकॉज यू आर ट्यून्ड इन, यू आर कनेक्टेड टू अस एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दैट।

एक हमारे लिसनर हैं, नाम मैं उनका नहीं बताती, वैसे मुझे पता है लेकिन आई एम नॉट, ही डजंट वांट टू शेयर, तो मैं एनोनिमस लिसनर कहूंगी, लेकिन वो अभी हमें सुन रहे हैं. तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट द फोन कॉल्स जो हुआ करते थे उस जमाने में. वॉइस मेल वाला चक्कर नहीं था, कॉलर आईडी का चक्कर नहीं था. तो पता नहीं चलता था कौन कॉल कर रहा है. तो आप किसी को 10 बार भी कॉल करने कोई टेंशन नहीं है. कोई आप यू कुड हाइड बिहाइंड दैट यू नो बिकॉज देयर वाज नो वन टू नो दैट. तो हमारे जो लिसनर हैं वो हैदराबाद के हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे उनको एक एक बात याद आई कि लोग ऐसा करते थे, एंड आई एम श्योर उन्होंने भी किया है, दैट इफ यू लाइक समबडी, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है कॉलेज में, तो उस जमाने की बात कर रही हूँ मैं, 80s 90s की, बिफोर द कॉलर आईडी एंड ऑल दैट, एंड स्पेशली 90s 2000s में ज्यादा आना शुरू हुआ था. मुझे याद है हमारे यहाँ शायद आई थिंक लेट 90s या 2000s की बात है जब हमारे पास कॉलर आईडी या आया था, और इस कॉलर आईडी भी शायद बाद में आया था, लेकिन वॉइस मेल आ गया था, मुझे ऐसा याद है. सो ही वाज सेइंग कि आप ऐसा कॉल करते, मिस्ड कॉल मारते थे अगर आपको कोई पसंद है, और इसलिए अगर ऐसा होता था कि किसी के घर में अगर कोई लड़की है जिसके बड़े चाहने वाले हैं, तो उसके मिस्ड कॉल्स बहुत आने लगते थे, और घर वाले बड़े परेशान हो जाते थे, क्योंकि पता तो चल रहा है कि जैसे कोई कॉल आता है और उठाते हैं, अगर पेरेंट्स उठाते हैं या घर में कोई और उठाता है, तो एकदम से फोन काट दिया जाता है, और जब वो लड़की उठाती है तो नहीं काट रहा जाता है. तो इसका मतलब दाल तो जरूर, दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है, लेकिन खोज नहीं सकते थे लोग कि कौन क्या कर रहा है. सो दे वर नो, और लॉट ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ तो ये भी होता था कि घर के आसपास बड़े चक्कर लगाए जाते थे, दिल्ली में गलियों में, हमारी जिस गली में हम रहते थे, तो वहां आसपास वहां पे बड़े चक्कर लगा रहे हैं अगर जो अगर कोई किसी को पसंद करते हैं, तो इस तरह से, अरे ये कौन लड़का है, ये रोज यहाँ नजर आता है नीचे. बट द थिंग इज देयर वाज नो सीसीटीवी एंड ऑल दैट, तो आप इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, ऐसे कोई नजर आ गया तो आ गया. तो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट पीपल हैव ऑफ दैट टाइम. बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. आप कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर है 4699429888, और यू कैन विजिट agfintechs.com. और जो हमारे ये मित्र हैं हैदराबाद से, उनको उन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट करी है. गाना ऑलमोस्ट 90s का है, 90 से कुछ 3 साल पहले का है, यानी कि 1987 का है, बट इज ऑलमोस्ट देयर. सो आई एम गोना प्ले दिस, इट्स डेफिनेटली अ वेरी फन सॉन्ग. इफ यू वांट टू लिसन टू अ सॉन्ग अगेन, जस्ट आई कैन टेक मे बी 2 or 3 मोर रिक्वेस्ट, 9722355555. हैप्पी 1st जुलाई. खत्म हो गया है आधा साल, ये बोलते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है. खत्म हो गया है आधा साल, यानी कि 6 months आर गॉन एंड वी आर हेडेड इन टू आज के ही दिन वी आर हेडेड इन टू द सेकेंड हाफ ऑफ 2026. अगर अभी भी आपने गोल्स पूरे नहीं करे हैं मेरी तरह, मतलब शुरू भी नहीं करे हैं 2026 के गोल्स मेरी तरह, कोई टेंशन नहीं, आधा साल है बाकी. पारो इन द हाउस.

मिथुन चक्रवर्ती एंड बॉबी लहरी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन. एंड विद दैट एक छोटा सा गाना चलाऊंगी. थोड़ी देर पहले बात हो रही थी धर्म पाजी की, तो मैंने सोचा कि धर्म पाजी की बात कर रहे तो एक गाना ही चला दें. और अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट चला रही थी इसलिए मैंने ये लाइनअप करके रखा है. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग. कुछ चंद मिनटों में हम एक ब्रेक में निकल जाएंगे और ब्रेक से लौट कर यहीं पर आएंगे. एंड एज आई सेड वी हैव सम गिव अवेज एज वेल फॉर यू. आई विल बी हियर अंटिल 10 PM. कीप लिसनिंग टू पारो, कीप लिसनिंग टू फनिशर रेडियो. थैंक यू.

वेलकम बैक, वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो एंड वी आर इन द लास्ट आवर ऑफ आवर शो. करेंगे कुछ और बातें और सुनेंगे आप ही की पसंद के गाने. सो लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग.

थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कॉल्स और बहुत आई एम जस्ट इन्जॉइंग अ लॉट विद यू ऑल. आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस सो थैंक यू. आप लोग अगर इन्जॉय करते हैं तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. एंड यस, दीज आर रियली फन सॉन्ग्स दैट आई एम प्लेइंग. और कुछ आपकी रिक्वेस्ट हैं और कुछ मेरी पसंद है. एंड कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है शो, उसकी करूंगी मैं थोड़ी देर में बात, बिकॉज आई डू वॉन्ट टेल यू अबाउट. हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज समथिंग very interesting is coming. A lot of some interesting people are coming in our town and they are very famous and they are famous for a reason. So unki karenge thodi si baat. Filhal I do want to say this that today is jinhone bhi join kiya hai July 1st, ji haan, ye to aapko pata hi hoga, aapne phone mein dekh hi liya hoga subah, lekin this is national postal worker day. To thodi der pehle humne kara tha jo hamare mail men hain, jo hamari chithiyan deliver karte hain, chahe wo india mein ho, pakistan mein ho ya yahan par ho, hamari chithiyan jo hamesha se deliver karte aaye hain, abhi bhi karte hain. They are postal workers and this is actually a day that is celebrated in the US for them. क्योंकि बहुत काम करते हैं और कई सौ सालों से काम कर रहे हैं, मतलब लोग बदल गए हैं लेकिन जो ट्रेडिशन है वो नहीं बदला है. और इसी के साथ आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक दिन है, विच इज अमेरिकन जू डे. और ये मुझे बहुत पसंद है बिकॉज जू जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग आती है मुझे कई बार कुछ जानवर शायद खुश नहीं होते हैं वहां पे. यू हैव अ लिटिल वाइल बैक आई वाज टॉकिंग अबाउट कैप्टिविटी, क्योंकि कैप्टिविटी की अगर बात करें तो यस, अगर आप खुला लोगों को या जानवरों को या किसी को भी अगर खुला छोड़े तो एक अलग ही उन लोगों का एक अलग फ्रीडम की फीलिंग आती है. बट एट द सेम टाइम सिंस आई हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ जू, हैव लाइक मुझे बड़ा जू बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के जू देखे हैं, लोगों से बात करी हैं जो जू में काम करते हैं. आई एक्चुअली थिंक दैट अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग गुड वर्क इन द सेंस कि बहुत प्रिजर्वेशन करने का काम कर रहे हैं. बहुत सारे जानवर जो बहुत उनको टॉर्चर किया जाता है उनको जाके रिहैबिलिटेट करते हैं, तो अच्छे काम बहुत ज्यादा करते हैं. हाँ, उसमें हो सकता है कि जानवर शायद बता नहीं पाते हैं तो कुछ ना भी पसंद करते हो वहां रहना, लेकिन उनका खाने पीने का इंतजाम और बहुत कुछ उनके लिए किया जाता है. सो यस, एंड नॉट ओनली दैट दे ऑल्सो बिकॉज ये जू में जब लोग आते हैं वहां पर टिकट देकर और वो टिकट से, सो आई वुड रियली अर्ज यू टू गो टू द जू एंड बाय द टिकट्स, क्योंकि ये जो टिकट्स हैं इससे ये वाइल्ड लाइफ जो वहां पे है, जो जानवर हैं, उन लोगों के खाने पीने और सबके इंतजाम के लिए होता है. सो आई फील ऑलवेज वेरी गुड डोनेटिंग एंड टेकिंग टिकट्स फॉर द जू, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड फॉर द एनिमल्स आउट देयर, क्योंकि हम सब एक प्लैनेट शेयर करते हैं और बहुत सारे हम सब लोग जंगल नहीं जाते हैं. तो एक जू की मुझे एक ये भी अच्छी चीज लगती है कि हम रूबरू होते हैं वाइल्ड लाइफ से और वाइल्ड लाइफ हमसे होती होगी. कितना वो लोग पसंद करते हैं इंसान से मिलना हो तो अलग बात है, वो तो आई डोंट know about that, but for us and our children it is very important to connect with nature, to connect with wildlife, I mean from a distance obviously, lekin to see that ki ye jo hamara planet hai ye kitna beautiful hai, yahan se sirf insaan aur paisa aur badi gaadi aur yahi sab kuch nahi hai, bahut kuch hai usse bahut zyada hai aur bahut zyada important hai, which is actually wildlife and so much beauty, flora and fauna jisko bolte hain out there, and we are part of the very beautiful फुल यूनिवर्स आउट देयर. तो ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए आज मैं बोलना चाहती हूँ वेरी हैप्पी अमेरिकन जू डे. दिस इज अ नेशनल हॉलीडे, इट इज सेलिब्रेटेड एज दैट.

Absolutely fun song. And with that, I also want to say बहुत सारे हमारे लोग हैं जो खाने बनाने के और बेकिंग के और आइसक्रीम बनाने के. I have a friend who makes like really interesting ice creams. उसके शौकीन होते हैं. So I do want to say कि आज का दिन उनके लिए भी है. So it is actually National Creative Ice Cream Flavors Day. देखे कितना बड़ा नाम है. मतलब इसको सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है कि क्या क्रिएटिव आइसक्रीम्स. एंड I really think that we are getting very creative with everything and definitely with ice creams. It's today is a fun food holiday that encourages experimental ice cream recipes. पहले मैं एक disclaimer बोल दूं कि मुझे experimental ice creams बहुत अच्छी दूर से लगती हैं. मतलब खानी नहीं अच्छी लगती है क्योंकि I am a very big chocolate fan. और मुझे जब कोई chocolate में कुछ और मिला देता है ना, मुझे तो peanut chocolate butter और इस तरह की भी जो ice creams होती है ना mix, वो मुझे नहीं पसंद आती. Fusion मुझे लगता है खराब कर दिया. Chocolate pure chocolate ice cream is what I absolutely love. और उसको उसमें अगर कुछ और ना मिलाया जाए, कोई dry fruits नहीं, कुछ नहीं, जस्ट लेट इट बी प्योर चॉकलेट. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. बट हैविंग सेड दैट, आई एम रियली अमेज्ड अगर आप कॉफी ये बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं, कैफेज होते हैं या फिर आइसक्रीम शॉप्स होती हैं, इफ यू गो देयर. एंड आई एम नोटिसिंग दैट इन इंडिया एज वेल. जब हम बड़े हो रहे थे तो कुछ तीन चार फ्लेवर्स होते थे. आई थिंक शायद एक बटर स्कॉच होता था, एक चॉकलेट होता था एंड वेनीला. एंड आई जस्ट लाइक तीन चार फ्लेवर्स होते थे, तो उन्हीं में से स्ट्रॉबेरी, यस दीज आर द वंस. एक कसाटा बहुत हम लोग खाया करते थे बचपन में. बट कहने का मतलब पांच फ्लेवर्स होते थे, उसमें से लोग चूज कर लेते थे. जिंदगी कुछ ऐसी ही थी आइसक्रीम की तरह कि छोटी थोड़ी सी चॉइसेस होती थी और उन्हीं में से आप चूज कर लीजिए और उसमें आदमी खुश रहता था. लेकिन अभी आप देखेंगे तो इतनी सारी आइसक्रीम्स हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रोज भी एक आइसक्रीम खाएंगे तो शायद आप खत्म नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में. इतनी सारी आइसक्रीम्स लोग डेवलप कर चुके हैं, इतने सारे लोग क्रिएटिव हो चुके हैं. एंड आई फील दैट रियली विद द लॉट ऑफ आइसक्रीम शॉप्स दैट आई विजिट. मुझे बड़ा मजा आता है आइसक्रीम के फ्लेवर्स देखने में, मतलब दूर से. सो यस सर, फॉर ऑल ऑफ यू हु लव एक्सपेरिमेंटल आइसक्रीम्स, क्रिएटिव आइसक्रीम्स एंड हु एंजॉय मेकिंग आइसक्रीम्स एट होम, वेल टुडे इज योर डे. आई होप यू आर ईटिंग और मेकिंग समथिंग डिलिशियस. इनवाइट जरूर करिएगा हमें भी.

टाइम फॉर आवर सेकंड गिव अवे. दिस इज फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. बता देती हूँ आपको गिव अवे डिशेस क्या हैं इनकी. यू कैन गेट ड्राई चिली चिकन और चिली बेबी कॉर्न और डैलस बेस्ट बटर चिकन विच इज रेड हॉट चिली पेपर्स चिकन मक्खन वाला. और ये जो बढ़िया सी डिशेज हैं, वन ऑफ दीज डिशेज यू कैन एक्चुअली गेट इफ यू विन द गिव अवे. एंड यू कैन पिक दीज डिशेज फ्रॉम द गिव अवे लोकेशन फ्रॉम रिचर्डसन, मैकिनी या फिर एलन. फ्रिस्को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रिस्को में ये गिव अवे नहीं है. आप फ्रिस्को की लोकेशन में जाके नहीं पिकअप कर सकते हैं. अब आपको कैसे ये गिव अवे आप कैसे जीत सकते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. जी हाँ, उसका आपको जवाब देना है. द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज गोना is going to win this, which is these giveaway dishes. One of these giveaway dishes you can order from any of the Red Hot Chili Pepper location except for Frisco location. तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप इन लोकेशंस पे जा सकें. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये गिव अवे पिछले एक महीने में नहीं जीता हो, बिकॉज देन यू गेट डिस्क्वालिफाइड. क्या है सवाल? सवाल है अगले गाने से रिलेटेड. देखिए, जुलाई बड़ा अच्छा लगता है मुझे महीना, इसलिए आज मैं थोड़ी ज्यादा ही खुश हूं क्योंकि जुलाई फर्स्ट है. थोड़ी सी दुखी भी हूं कि साल कैसे निकल गया पता नहीं चला. आधा साल तो निकल ही चुका है. 50% इज ओवर. 50% में हम एंटर कर गए आज द रेस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ. लेकिन जुलाई का मंथ मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मेरा बर्थडे मंथ है और बड़े धुरंधर कलाकारों का बर्थडे मंथ है. एक धुरंधर कलाकार है हमारे रणवीर सिंह. जी हाँ, बिल्कुल हाईली एनर्जेटिक लोगों का बर्थडे होता है जुलाई में. जो लोग बहुत उछलते कूदते रहते हैं मेरी तरह, रणवीर सिंह हमारे जैसे एवे ही करते करते नाचते रहते हैं. सो व्हाट द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन देखिए, आपको धुरंधर एक्टर के बारे में कितनी बातें पता हैं ये मैं जानना चाहती हूँ. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे रिसेंटली पता चली है. मेरा अल्मा मॉटर, यानी कि जहां से मैंने पढ़ाई करी है यूएस में एक यूनिवर्सिटी में, वहीं से हमारे रणवीर भैया ने भी पढ़ाई करी है. जी हाँ, ही हैज स्टडीड इन द सेम यूनिवर्सिटी एज मी. एंड वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज आई वांट टू सी हाउ मच यू नो अबाउट योर धुरंधर स्टार दैट इज रणवीर सिंह. एंड द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज गोना विन रेड हॉट चिली पेपर की गिव अवे डिश. 9723555555.

0: बैचलर्स करा है हमारे रणवीर सिंह ने इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से. लॉट ऑफ पीपल गॉट द राइट आंसर. सो यस, मैंने वहां से मास्टर्स किया है. और मुझे ऐसा लगता है शायद उसी टाइम पे तो नहीं थी कहीं मैं जब ये हमारे जनाब थे. इट्स अ वेरी वंडरफुल यूनिवर्सिटी, ब्यूटिफुल कैंपस. इट इज ऑलवेज रैंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपस इन द यूएस. तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी जगह है और वहां के लोग भी बड़े प्यारे होते हैं जो वहां से पढ़कर निकलते हैं. और अगर उनका जन्मदिन जुलाई में आता है जैसे कि रणवीर सिंह और मेरा, तो और भी ज्यादा मजेदार होते हैं. वैसे डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. टेली कम्युनिकेशन में उन्होंने वहां पे से पढ़ाई करी है एंड वहां पे भी एक्टिंग क्लासेस भी लेते थे. एक्चुअली इंडियाना यूनिवर्सिटी हैज लॉट ऑफ स्कूल्स. उसका बिजनेस स्कूल और उसका स्पेशली म्यूजिक स्कूल इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड. मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज कि इतनी कंट्रीज के लोग, जिन कंट्रीज के मैंने नाम भी नहीं सुने हैं, वहां PhD करने के लिए आते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने नाम भी नहीं सुने हैं. मतलब इट्स लाइक सो अनबिलीवेबली गुड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एंड एक्टिंग का उस समय मुझे नहीं ज्यादा पता था, बट आई एम प्रीटी श्योर इट इज प्रीटी गुड विद दैट एज वेल, क्योंकि म्यूजिक एक्टिंग ये सब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है. तो रणवीर सिंह जी ने ऐसा लगता है वहीं से थोड़ी सी लर्निंग वर्निंग करी है अपनी, क्योंकि ही यूज टू लर्न एक्टिंग, टेक क्लासेस देयर एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. एंड विद दैट लेट्स लिसन टू दिस अनदर सॉन्ग. छोटा सा चलेगा, इसके बाद हम एक ब्रेक में निकल जाएंगे. एंड द विनर इज प्रिया धनजानी. यू आर द विनर. थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट पर्सन. शी इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर टू विन द रेड हॉट चिली पेपर गिव अवे डिश.
1: चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़, पीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े. बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभ फटके बाहर आंदे.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
6: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.

वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूं पारो। पहुंच गए हैं हम अपने लास्ट 30 मिनट में एंड 10 बजे तक रहूंगी मैं आप लोगों के साथ। रणवीर सिंह से जुड़ा हुआ था हमारा लास्ट गिव अवे, सो रणवीर सिंह की बात हो तो धुरंधर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी आर गोना मूव वेरी सून टू द नेक्स्ट गिव अवे, आवर लास्ट गिव अवे ऑफ टुनाइट।

अभी हमारे एक लिसनर से बात हो रही थी, अमिता जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और यस, आई डू वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द यूएस. 4th of July आने वाला है और हमारी इंडिपेंडेंस डे हम लोग बहुत बाजे नगाड़े के साथ करेंगे सेलिब्रेट, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ फायर वर्क्स फॉर श्योर. एंड टुडे यूएस वन ओवर बॉस्निया हर्जिगोविना. एंड सो यस, दैट इज अ वेरी बिग विन. एंड मैं तो नहीं देखा मैंने मैच, बट आई हैव हर्ड दैट इट वाज अ वेरी गुड मैच, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ यू हु हैव वॉच्ड हैव एंजॉयड इट एज वेल. सो वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस टू आवर ब्यूटिफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर विनिंग टुडेज मैच. एंड विद दैट चलिए अब हमारा लास्ट गिव अवे करते हैं, विच इज अबाउट इंडिया बाजार. कौन नहीं पसंद करता इंडिया बाजार को? सो व्हाट इज दिस गिव अवे, लेट मी टेल यू दैट. और मैंने सोचा कि अभी रणवीर सिंह की बात करी तो एक एक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, वेरी नेचुरल एक्टर, लेट मी टॉक अबाउट हिम. एंड उनसे रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले आपको इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ के बारे में बता देती हूँ. सो हियर इज योर चांस टू विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. ये फोर्ट वर्थ का है और कोई इंडिया बाजार नहीं है. सो ये आप जरूर याद करिए. इफ यू कैन गो टू फोर्ट वर्थ और यू लिव अराउंड देयर, देन यस, दिस इज फॉर यू. योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर डेली देसी एसेंशियल्स. इंडिया बाजार लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. सो फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, दिस इज परफेक्ट फॉर यू. अच्छा, अब सवाल ये है, मैं अगला एक गाना चलाती हूँ ऋषि कपूर साहब का, और मतलब पुराना गाना नहीं है, वैसे तो कितने जमाने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो, और इतने सारे गाने और इतनी सारी फिल्में हमें दी हैं, लेकिन दिस इज रिलेटिवली न्यूअर. इसमें काजोल के वो फादर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक रिसेंटली जब तक उनके नहीं गुजरे थे, वो कंटिन्यूसली एक्टिंग के टच में थे, बहुत सारी फिल्में करते रहते थे. सो इसमें उनके काजोल के फादर बनते हैं. लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने एज अ चाइल्ड डेब्यू उन्होंने करी थी फिल्म जिसमें वो बच्चे थे, तो छोटे से बच्चे की तरह उन्होंने किस फिल्म में डेब्यू किया था, उस फिल्म का आपको नाम बताना है. 9723555555, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर इज गोना विन द गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. आप फोर्ट वर्थ जा सकें ये बहुत जरूरी है. और दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपने लास्ट वन मंथ में ये ना जीता हो. अगेन, ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म जिसमें वो छोटे से बच्चे थे. आई थिंक थोड़ा सा वॉल्यूम का गड़बड़ हो गया. आई नो पीपल आर कॉलिंग एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कुछ चक्कर क्या है कि इसका बजा नहीं गाना. सो लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट. आई नो बहुत सारी लाइंस बज रही हैं, लेकिन कुछ तो चक्कर है इस गाने के वॉल्यूम में. सो आई वांट टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू प्ले दिस सॉन्ग.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स. मेरे ख्याल से शायद मैं इतनी जल्दी जल्दी पिकअप कर रही थी, एटलीस्ट 15 लोगों ने मुझे कहा होगा मेरा नाम जोकर. मुझे दुख हो रहा था क्योंकि आई थिंक पीपल वर सो कॉन्फिडेंट एंड सो मेनी पीपल गेव दैट आंसर, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट मेरा नाम जोकर, इट इज़ श्री 420. यस, मेरा नाम जोकर से लोगों ने उन्हें स्पॉट किया था. मेरा नाम जोकर में उनका काम बहुत ही आइकॉनिक था, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला उनको इतनी कम एज में. एंड ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरा नाम जोकर के लिए बहुत ऑप्शंस थे राज कपूर साहब के पास, लेकिन राज कपूर साहब को परख बड़ी थी टैलेंट की और काम की, और वो ये जानते थे कि जो उनका चिंटू बेटा है वो बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड है, और इसीलिए और वो ही उनका जो बचपन का किरदार है मेरा नाम जोकर में वो ही कर सकता है, तो इसलिए उनको उन्होंने लिया. और फिर उसके बाद तो बॉबी एंड फिर एवरीथिंग इज हिस्ट्री. ही रियली मेड अ स्ट्रॉन्ग मार्क ऑन यू नो जस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट एंड वर्क. लेकिन उनकी जो पहली फिल्म है वो श्री 420 है, विच इज 1955 की, और उसका एक आइकॉनिक गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ, और उसमें जो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें एक छोटा बच्चा ऋषि कपूर है. सो यस, द फर्स्ट डेब्यू एज अ चाइल्ड एक्टर वॉज इन श्री 420, एंड द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर आफ्टर लिटरली 15 कॉल्स इज दर्शन साहब. सो यस दर्शन साहब, यू हैव वन दिस एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दैट. एंड विद दैट, ये आखिरी गाने के साथ मैं आपको छोड़कर जाती हूँ, और अब आप लोगों से कब मिलूंगी आई डोंट नो, क्योंकि ये मैं कवर कर रही थी, ये मेरा टाइम नहीं है, पर 6 साल से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो लौट कर आऊंगी किसी एक अगले नए टाइम पर वेरी सून. बट फिलहाल स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, एंड आई होप यू एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड अ लॉट एंड यू एंजॉय द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम. ये जो हमारा 4th of July जो फ्रीडम की स्पिरिट को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस की स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं, आई होप यू सेलिब्रेट दैट एंड यू ट्रूली ट्रूली फील फ्री, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली इमोशनली, एंड डू समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, स्पेशली ऑन दैट पर्टिकुलर डे 4th of July. ऐसा मुझे लगता है कि अगर इंडिपेंडेंस की स्पिरिट को अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें कुछ ऐसा करना है विच मेक्स अस फील टोटली फ्री एज अ चाइल्ड. विद दैट, आरजे पारो साइनिंग ऑफ.

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker,
1: हार्ट बीट

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

बजा बजा।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
5: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इनटू फन एशिया रेडियो।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: आनंद
1: लगे रहो।
2: I love you।
3: आनंद तेरा फोन आया यार।
1: अरे
3: चल चल।

0: tracks that put you on the right track.
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
3: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.
1: रोते काय को हम

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
1: जिद शर्दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी, तो तू कर लेगा?
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं जोंदी करूंगा हॉकी।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: Praveen, what is this? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर. वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई।
3: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
4: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
5: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
6: Official tax and finance partner, AG FinTax.
5: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
6: In association with Passion Health Primary Care.
7: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
8: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
9: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
10: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
11: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
12: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Samajh nahi aa rahi, ticket loo to kahan se loo?
18: It's Lawson.
17: Kisse baat karun? Sari jankari kaun dega?
18: It's Lawson.
17: Daddy, what is the law?
19: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The Travel Experts. Lawson Travel.
20: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
21: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
20: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
21: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Har bhai super hit.
22: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
23: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
22: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
23: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
22: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
23: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
22: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
24: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
24: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
25: In one moment, an accident can change everything.
0: When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the airwaves of the FunAsia Network, and let's get started with our program. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai, chaand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan mummy.
3: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
5: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
6: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
10: माई टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स Investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
13: First ever authentic सात्विक flavors with no onion and garlic,
12: where every divine food is an offering. Open daily from 7 AM, located at Independence and Eldorado. श्री अयोध्या भवन, where taste meets divinity.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
19: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: are trusted, they're efficient, and they get you ready for the future. You can call them 469-942-9888 or visit agfintax.com. agfintax.com.
1: क्वीन विक्टोरिया की तो कैसे देख सकती हैं आप?
2: तो वैसे ही लगेंगी मालिक।

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
8: Haan, dekh lenge.
7: To fir India ki ticket kab karwaye?
8: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
9: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस. PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलस न्यूएस्ट.
10: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
12: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी.
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
18: Calculating route, rerouting, rerouting.
17: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
18: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
17: क्यों?
18: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
17: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
19: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
18: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
20: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर? एट shopcompareinsure.com, वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स, वी आर ग्रोइंग अ नेटवर्क ऑफ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स. वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, वी प्रोवाइड द टूल्स, ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड एक्सेस टू टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स लाइक एन्युइटीज, टर्म लाइफ, होल लाइफ एंड IUL टू हेल्प यू सक्सीड. वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स, बिल्ड योर ओन income, make a real impact.
21: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
22: Mere kal wale khane mein dosa, आने वाले खाने में डोसा.
23: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
24: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
23: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction.
25: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है।
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.

0: बड़ी कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ
1: उस साल का लोकप्रिय गीत
0: ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन
2: शेख ये बात ही गया।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
5: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
13: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
16: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
15: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
16: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338, दैट्स 817-786-3338।
19: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
2: Shah Rukh Khan is my favorite, as most of you know who've been listening to me for a while, and I will be playing a track of his as we get started with this hour of the program. Warm welcome to all of you on this beautiful Thursday morning, the 2nd of July, going towards the 90s, hot, humid and hazy still, but we have east of the mid-cities a 30% chance of a shower this afternoon. Most of us won't see any, but some just will.
1: Thank you.
2: title track of Pathaan.

0: American adventurer Steve Fossett became the first balloonist to circumnavigate the world alone on today's date in 2002. And in 2008, more than 6 years after being taken hostage by the FARC guerrillas, Colombian politician Ingrid Betancourt was freed during a rescue mission in which army soldiers posed as international aid workers. Happened in Colombia on today's date in 2008. Malaysian development Berhad scandal was first exposed by a journalist called Claire Newcastle Brown, founder of the blog called Sarawak Report, one of the largest corruption scandals in modern history. It helped topple Malaysian Prime Minister Najib Razak. On today's date in 2015. And in 2016, Romanian-born Jewish writer Elie Wiesel, who won the 1986 Nobel Peace Prize for his works that provide a sober yet passionate testament of the nearly complete extermination of European Jews by Nazi Germany. He died on today's date at the age of 87. Elie Wiesel, the Romanian-born Jewish writer. Lee Iacocca died on today's date in 2019 in Bel Air, California. The American automobile executive who was president and chairman of the board of Chrysler Corporation, credited with reviving the foundering company. He notably secured the largest amount of federal financial assistance ever given to a private corporation at that time. Son of Italian immigrants. Lee Iacocca died on today's date in the year 2019. And in 2021, 5 years ago, the United States vacates the Bagram Airfield, the U.S. Air Force base north of Kabul, and turns it over to Afghan forces, a major milestone in the longest war in U.S. military history. Happened on today's date in 2021. And those, ladies and gentlemen, were some stories from the annals of history that happened on the 2nd of July. As I get ready to round off my show for this morning, Me Too's coming on right after me. You'll continue listening to the Fun Asia Network. I'll be back at 7 o'clock tomorrow morning. It is 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है ये वाला बहुत हैवी है और ये कब पहना था लास्ट टाइम
4: तो पहनती क्यों नहीं हो
3: कैसे पहनूं या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेजन टाइप
4: तो रोज वाला ले लो
5: India's most loved everyday jewelry brand CaratLane is here get your everyday real diamonds now because jewelry is meant to be worn not to be kept inside a locker CaratLane now open next to Tanishq in Frisco
6: मेरे कल वाले खाने में दोसा आने वाले खाने में दोसा
7: क्या आपको भी हमेशा दोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश योर सर्च एंड्स हियर
8: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स क्रिस्पी डोसास फ्लफी इडलीज कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस
7: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और गस्टर जंक्शन Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
9: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
9: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
3: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
3: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
7: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
7: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
9: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। Enjoy fine dining experience और पंजाबी बफे एवरी डे। Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
13: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali with me too. Hello, namaskar, and thank you very much for tuning in. और गले में कुछ खराश है तो पहले तो गला साफ कर लेती हूँ. और अब शुरू करना चाहूंगी द शो दैट आई डू बिटवीन 10 to 12:30 फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. शबनम जी के बाद आती हूँ और शबनम जी जैसा एनर्जी मैच करना किसी का भी मुश्किल है. द मॉर्निंग एनर्जी दैट शी गेट्स फॉर ऑल ऑफ अस दैट इज व्हाट गेट्स अस गोइंग. और वहीं से एनर्जी पिक करते हुए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस नेक्स्ट वन फॉर ऑल ऑफ यू ऑन गपशप गली विथ मी टू. इट इज 2nd of July, लेडीज एंड जेंटलमैन. घड़ी में अभी हमारे स्टूडियो के बजे हैं 10:09. इट इज थर्सडे. लेट्स मेक इट वर्थवाइल फॉर यू.

पता है आपकी ज़िंदगी के कुछ कुछ गाने होते हैं ना जो किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं, और ये गाना मेरे लिए हमेशा आरजे मीता के साथ एसोसिएटेड होगा। हाल ही में उन्हें याद भी कर रहे थे हम, और इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि कुछ गाने ऐसे जुड़ जाते हैं हमारी ज़िंदगी से कि दैट ब्रिंग्स बैक द मेमोरी ऑफ अ पर्सन और अ मोमेंट, राइट? और ये उनमें से एक गाना है। द नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस ट्रैक फ्रॉम दावते इश्क, एंड दैट ऑल्सो एक्चुअली ब्रिंग्स बैक सो मैनी मेमोरीज फॉर प्रॉबेबली सो मैनी ऑफ यू लिसनिंग टू मी राइट नाउ। क्योंकि दावत एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आप बड़े दिल से करते हो लोगों को, यानी कि खाने पे बुलाना अपने घर, है ना? तो अगर आप दिल से बुला रहे हो किसी को तो आप दिल से खाना बनाते हो, और जब दिल से खाना बनाते हो और सामने वाला उसकी ना भरपूर तारीफ करता है ना, तो बनता है दिन। और कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में हैं कि जब भी हम दावत का सोचते हैं तो उनकी याद आ जाती है, द वे दे अप्रिशिएट फूड, द वे दे इंजॉय फूड विथ यू, कि वो एक अलग ही बात हो जाती है ना? और वैसे ही कुछ और जगह होती हैं जहाँ पर कि आपके लिए वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि आप उस वजह से उन्हें याद रखते हो। तो ए जी फिनटैक्स इज़ वन सच प्लेस फॉर यू, ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US, इट इज़ ए जी फिनटैक्स। And they deploy a solution-centric and analytical approach that empowers their clients to improve efficiencies through smart functions, intelligent workflows, and customized care. और वो चाहे आप individual अगर आप अपना potential tap करना चाहते हो, या तो अगर business है आपका और आप अपने जो है financial कितना क्या आप explore कर सकते हो, उन सब मामलों में ये आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट, एंड दे कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। इट्स एजी फिनटैक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू नीड टू रिमेंबर। टैक्स प्लानिंग हो, बुक कीपिंग हो, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हो, एंड एडवाइजरी फंक्शंस टू इंडिविजुअल्स, रिटेल एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंटेल दैट दे हैव बीन serving since many years now. So get in touch with them. This part of my show is brought to you by AG Fintax. AGFintax.com inki website hai, aur 469-942-9888 is that number to call and get in touch with them.

0: शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं ही हूं।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
8: क्यों?
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
12: उमर ख्वाजा।
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
19: Tracks that put you on the right track.

इट इज 10:30 बाय द स्टूडियो क्लॉक और इस वक्त मंडे को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इस सेगमेंट ड्रीम होम मॉर्गेज की तरफ से. मिस्टर हुसैन पंजवानी इज ऑन द एयरवेव्स ऑन मंडेज एट दिस टाइम. जरूर याद रखें टू लिसन इनटू दैट शो बिकॉज ही ब्रिंग्स सो मच ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन. आप अगर पहली बार अपना घर लेने का सोच रहे हैं और वो जो एक डिसीजन है वो कितना इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और महंगा डिसीजन होता है हमारी लाइफ का, इसीलिए इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आप तक होनी चाहिए. All the details that you should be knowing before buying your own home. और साथ ही साथ अपने अगर current mortgage को आप अगर refinance करना चाहते हो, don't let the paperwork or the market intimidate you. Dream home mortgage आपके लिए बहुत ही simple layman language से शुरू करते हुए, जब तक आपको खुद समझ नहीं हो जाए उस चीज़ के बारे में, they are ready to explain it to you, they are ready to be with you during this process. So yes, remember to get in touch with them. Dream home mortgage .com is that website जहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी आपकी पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस के लिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री प्रोसेस के लिए. Get in touch with Mr. Hussain Panjwani. Close to 30 years of experience that they have, that speaks volumes about their clientele and how happy and contented they have been. Isiliye log jaate hain unke paas. Isiliye we are proud to announce them on the airwaves of Fanasia Radio 104.9 FM. 972-245-5626 is that number that you should be aware of. Aur saath hi saath studio ka number wo bhi aapko pata hona चाहिए. 972-235-5555.

जो हो रहा है उसे आप जाने नहीं दे सकते हो एज फार एज वेदर इज कंसर्न. आज की शुरुआत भी अच्छी गर्मी से ही हुई है, 70s एंड 80s दैट वी आर सीइंग. द ओनली चेंज टू द फोरकास्ट विल बी द रिटर्न ऑफ सम रेन चांसेस मेनली ईस्ट ऑफ I-35. और ये मतलब गर्मी जो है दोपहर के टाइम पे होगी, बस उसी वक्त जो बारिश के चांसेस हैं, उसके बाद सन डाउन के साथ इसके चांसेस भी बिल्कुल डाउन हो जाएंगे. एंड वंस अगेन इट्स मेनली ईस्ट ऑफ I-35 दैट कैन एक्सपेक्ट सम चांसेस ऑफ रेन टुडे. हाँ, इस हमारे वही आफ्टरनून के मिड टू अपर 90s रहेंगे, लेकिन वो फील वही ट्रिपल डिजिट्स में ही रहने वाला है. नथिंग हैज चेंज सिंस यस्टरडे. लुकिंग अहेड टू द हॉलीडे वीक द फोकस विल बी सिमिलर टू टूडे इटसेल्फ. 10-20% चांसेस हमारे रेन के जो हैं वो कंटिन्यूड रहने वाले हैं. और वीकेंड पे यानी कि 4th of July पे हमारा जो चांसेस है वो थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन विल कीप यू विल मेक श्योर दैट यू आर पोस्टेड ऑन द वेदर अपडेट्स हियर. फिलहाल 88 degrees टूडेज हाई इज अराउंड 97 एंड वो ट्रिपल डिजिट का जो कहा मैंने हीट इंडेक्स का ना, बस उससे वो 97 है या 96 है या 98 है, डजंट मैटर, इट्स गोना फील लाइक 100+ टू ऑल ऑफ अस.

0: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
1: हाँ देख लेंगे।
0: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
1: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
2: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलसिस न्यूएस्ट।
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
4: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
12: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, इर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
15: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
16: Tracks that put you on the right track.

एब्सोल्युटली लव ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय विशाल शेखर, और इसीलिए इसी एक्साइटमेंट में मैंने सोचा है कि कुछ अलग तरीके से आप लोगों को एक ये शानदार गिव अवे फॉर द विशाल शेखर कॉन्सर्ट दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू वंस अगेन टुडे. एक टिकट किसी को बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है, तो इसीलिए चाहूंगी कि आप स्टूडियो का नंबर ना बिल्कुल हैंडी रखो. अगले सेगमेंट में वी विल हैव दैट शायर रिडल, हाँ सही बोला मैंने, शायरी और रिडल का जो एक साथ जो एक कनेक्शन हम बनाएंगे फॉर विशाल शेखर्स म्यूजिक दैट दे हैव क्रिएटेड. कुछ गाने जो कि शायरी में शामिल होंगे, वो सॉन्ग टाइटल आपको पहचानने हैं और बताने हैं कि भाई वो गाने कौन से हैं. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गाने पहचान पाएगा फ्रॉम द शायरी दैट आई से, उनको मिलेगा एक फ्री टिकट. बट दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि इस सेगमेंट में मैं जो कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इट इज़ अबाउट द मूवीज दैट हैव रिलीज्ड ऑन दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग इनटू. लेकिन उसके पहले ना ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई मुझे पता है, मेरे जैसे कई लोग जो विशाल शेखर के फैंस हैं उन्हें पता है कि दे आर गोइंग टू कम टू डैलस एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस जुलाई 12th कर्टिस कैलविल सेंटर इन गार्लिन. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैश पटेल प्रोडक्शंस .com पे जाकर आप अपने टिकट्स खरीद लो. और याद रखना कि फनीशिया कोड जो है वो आपको यूज करना है, क्योंकि 30% डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा. रिमेंबर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड डू रिमेंबर टू कॉल इन इफ यू कैन फिगर आउट द शायरी डल दैट आई विल हैव फॉर यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट. ठीक है, अभी फिलहाल एक और गाने पे जाने वाली हूँ, और उसके पहले बताने वाली हूँ आई हेट लव स्टोरीज रिलीज्ड ऑन दिस डे July 2nd एंड इट वॉज 2010 व्हेन इट मेड अ लैंडफॉल एंड डिड इम्प्रेस अस ऑल, डिड वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. और इमरान खान और सोनम कपूर की फिल्म अच्छी चली थी, अलॉन्ग विद द म्यूजिक जो आज भी इतना फ्रेश लगता है. राइट, I have my favorites from that film, जो कि आप आने वाले दिनों में और सुनोगे. लेकिन फिलहाल एक और फेवरेट गाने पर लेकर जाने वाली हूँ, और ये फेवरेट गाना मेरा आता है एक ऐसी फिल्म से which released on this day in the year 1993. शाहरुख खान थे, फारूक शेख थे, दीपा मेहता इन दिस वन, एंड ऑल्सो यू नो राज बब्बर इस फिल्म में थे. और ये शाहरुख खान की एक्चुअली पहली फिल्म थी जो अपेरेंटली इन्होंने साइन की थी, ऐसा मुझे पता चला है. लेट मी नो इफ इट इज एनीथिंग अदरवाइज. क्या हुआ था कि काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज इस फिल्म के लिए चली थी और काफ़ी सारा मुद्दा बना था इस फिल्म का, लेकिन कुछ लीक्ड सीन्स के वजह से और जो VHS के उस टाइम पे जो लीक्ड टेप्स थे उसके कारण लोगों ने जो एडिटेड वर्जन जिसे एडिट आउट कर दिया था वो भी लोगों ने देखा एक्चुअली. बट आई विल टेल यू ऑल्सो दिस, सेंसर बोर्ड के चक्कर और एग्जीक्यूशन डीलेज की वजह से ये जो 1993 में जो फाइनली रिलीज हुई उसके पहले तक शाहरुख खान ने एक्चुअली 5 और फिल्में कर ली थी, और ही had become a star by the time Ketan Mehta's Maya Memsahib released. इस फिल्म के ना एक गाना particularly, दो एक गाने actually, एक और गाना मुझे बहुत पसंद है, and शहर बड़ा पुराना है, it's a very beautiful song, but I'll take you to this one, Hridaynath Mangeshkar's composition, Gulzar's lyrics and Lata Ji's voice

एंड दैट वॉज केतन मेहताज फिल्म माया मेम साहब. और मुझे लगता है एक डायरेक्टर नीड्स एन आई टू रिकग्नाइज द एक्टर्स दे वॉन्ट फॉर द कैरेक्टर्स इन देयर स्टोरी, राइट? क्योंकि कितने भी कोई अच्छे एक्टर हो, लेकिन हर कोई मेरे ख्याल से हर किस्म का रोल शायद पूरी जस्टिस के साथ नहीं कर सकता है. एवरीबडी इज मेंट फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ रोल. एंड देन देर आर ऑफकोर्स दोज मास्टर क्लास एक्टर्स जो कि किसी भी रोल में आराम से ढल जाते हैं. लेकिन आई थिंक शाहरुख खान बीइंग द चॉइस फॉर केतन मेहता वाज अ नॉवेल्टी, क्योंकि काफ़ी न्यू कमर थे वहाँ पे, और वहाँ पे उनको इतना मेजर रोल देना. वॉज केतन मेहताज आई टू चूज हिज डायरेक्टर्स राइट? आई मीन चूज हिज एक्टर्स राइट, वुडंट यू अग्री? और अगर आंखों की बात करें ना, तो लिटरल टर्म्स में आंखों की देख रेख करना हमें आना चाहिए. और आंखों की देख रेख हम करते हैं, वी डू आर बेस्ट दैट वी कैन. एंड देन कम्स अ टाइम इन आर लाइफ कि ऑटोमेटिकली हमारी विजन चेंज होने लगती है. वो 45 से 60 के बीच जब आपके नियर विजन जो है दैट स्टार्ट्स चेंजिंग, देन 65 प्लस में हो सकता है कि आपको कैटरैक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़े. उससे भी पहले के अगर वक्त के बारे में बात करूँ, 18 to 45, हो सकता है आपके ग्लासेस हैं और आपको यू नो लेंसेज वगैरह नहीं चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट यू नो. सो ऑल दैट इज केटर्ड बाय विजनरी आई केयर दैट यू मस्ट रिमेंबर. डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला ए फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो. इनकी अप्रोच बहुत सिंपल है कि वो आपको सारे ऑप्शंस आपके जो हैं वो समझा देते हैं, बता देते हैं, एंड देन यू चूज फॉर योर सेल्फ वॉट यू फील इज राइट फॉर यू. Different decades, different vision needs. That's what we need to understand. That there are different ways to get them sorted. So, एक कोई तरीका fits all वाली बात नहीं होती है. There is something for everyone at Vision Eye Care. तो ज़रूर इन्हें call करें. 214-972-2000 is that number. LASIK-PLANO.com is that website. And don't forget to mention FunAsia 2020 to receive that free consultation from them. Maya Mem Saab, jo ki aaj hi ke din release hui thi. It was in the year 1993. Taking you to yet another film which had a similar story to it, and it was Haseen Dilruba, jo ki let me see which year it released, but it released on this day that I'm very sure of. The year was 2021. Aur dekha jaye to Maya Mem Saab aur Haseen Dilruba ki kahani kuch milti julti thi. It was about infidelity and beyond, way beyond that as well. So let's get you Haseen Dilruba ka ye gana starring Tapsee Pannu, Vikrant Masi and Harshvardhan Rane, jo aaj ke din release hui.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: मामू, देखो क्या हो गया?
7: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
7: ओए जर्मन का कमाल है।
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू, और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुनी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट, मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस। सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएट लास्टिंग memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
5: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
3: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया।
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया।
15: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772, that's 972-863-7772.
9: विजिट www.sanadainc.com today.

0: कर्नाटक के सुपर हिट्स इज कमिंग योर वे
1: विशाल एंड शेखर
2: हियर वी गो
0: दैट्स राइट विशाल एंड शेखर लाइव गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग फिल्ड विद सॉन्ग्स यू डांस टू सेलिब्रेटेड विद एंड फॉलन इन लव लिसनिंग टू संडे जुलाई 12th एट द करिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड टिकट्स ऑन सेल नाउ cashpatelproductions.com द सुपर हिट टूर विद विशाल एंड शेखर
3: यूज कोड फन एशिया एंड गेट 30% डिस्काउंट
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
5: सुन रहे हैं आप और ये है गपशप गली विथ मीठू और आज क्या तारीख है 2nd जुलाई और 12 जुलाई की तारीख है जब विशाल शेखर आर गोइंग टू परफॉर्म हियर एट द कर्टिस कलवेल सेंटर जिसकी तैयारी हम जोरों शोरों से कर रहे हैं और हमारे पास आपके लिए एक फ्री में तैयारी है एंड दैट फ्री तैयारी इज दिस गिव अवे दिस वन टिकट दैट आई विल बी गिविंग अवे टू वन ऑफ यू क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि ये ना मतलब इतने आराम से नहीं देने वाले कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे और इसीलिए शायरी और रिडल को मिलाकर यानी कि शायर रिडल को आपको सॉल्व करना है 4 गानों के नाम होंगे इस आज की शायरी में और वो विशाल शेखर के कॉम्पोजिशंस हैं और वो टाइटल होंगे उस शायरी में 4 गानों के टाइटल्स आपको बस पहचानना है 9722355555 स्टूडियो का नंबर है ब्रेक के बाद का गाना मैं लगाने वाली हूँ वंस अगेन विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन और उसके बाद शायरी रिडल is coming up for you in Gapshap Gali with me too.

आई कैन सॉर्ट ऑफ वाउच फॉर इट कि हमारे कोई भी शोज जो है ना विशाल शेखर के म्यूजिक के बिना पूरे नहीं होते, और विशाल शेखर विल बी इन टाउन फॉर अस परफॉर्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस एट द कर्टिस कलविल सेंटर इन गार्लिन। कैश पटेल प्रोडक्शंस .com पे जाके आप टिकट्स ले लीजिएगा, और याद रखिएगा फर्नीचर कोड यूज करने पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए ये भी कि अगर आप मुझे अभी अभी कॉल करोगे ना, किसी एक को मिलने वाला है मुफ्त में टिकट, यस कॉन्सर्ट टिकट, दिस इज टू विशाल शेखर एंड यू कैन विन दिस राइट नाउ। बस शायरी और रिडल का जो एक हमने कनेक्शन बनाया है ना, शायरी रिडल, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल इट। बस इसमें चार गाने हैं, इस आज की शायरी में चार गाने हैं विशाल शेखर के कॉम्पोज किए हुए। आपको बस मुझे बताना है दोज फोर सॉन्ग्स फ्रॉम द शायरी, इफ़ यू कैन यू कैन फिगर इट आउट। ऑलराइट, हियर वी गो। एक ही बार आप सुन सकते हो या मैं रिपीट कर सकती हूँ चाहे तो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने भी कहा, चारों के चारों जिसने भी मुझे पहले यू नो पहचान के ये जवाब दे दिया, उनको मिल जाएगा फ्री कॉन्सर्ट टिकट। सिंपल सी बात है। तो हियर वी गो। लगता है डर खोना दूँ तुम्हें इस भीड़ में कहीं, लगता है डर खोना दूँ तुम्हें इस भीड़ में कहीं, क्योंकि तुमसे कोई देसी गर्ल इस पूरे जहां में नहीं। आंखों से सिर्फ नहीं, अब बस कह भी दो तो स्वैग से करेंगे स्वागत तेरा, कि बिन तेरे अब जीना मुश्किल है क्योंकि तू मेरी और मैं तेरा। ऑलराइट, आई हैव अ कॉल हियर, लेट्स सी इफ दे कैन फिगर आउट द फोर टाइटल्स, सॉन्ग टाइटल्स कंपोज बाय विशाल शेखर। और लाइन कट गई, कोई ना यार, हम ये लेंगे व्हाइल आई प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए आपके लिए एक और विशाल शेखर का ही गाना मैं लाइनअप करने वाली हूँ यहाँ पर, और अगर आपको पता चले कि वो चार गाने क्या थे तो आप मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा राइट हियर ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM। अंटिल देन लेट्स ब्रिंग यू दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM, विशाल शेखर्स कॉम्पोजिशन। इस गाने के बाद वो शायरी रिडल फिर से मैं रिपीट करूंगी आप लोगों के लिए, इफ आई डोंट गेट माई आंसर।

0: एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अपनी विनर मिल गई हैं और ख्याति मेरे साथ है, और उन्होंने चारों चारों गानों का नाम बिल्कुल सही सही पहचाना. इनफैक्ट चौथे नाम के साथ तो थोड़ी हमारी ही कंफ्यूजन हो गई थी, बट बल्ले बल्ले, विशाल शेखर इज इन प्रैक्टिकली एवरी ईयर दैट वी फाइंड ग्रेट म्यूजिक फ्रॉम देम. सो यस, मैं एक बार और शायरी, अपनी जो शायरी कम रिडल जो है, विच इज शायर रिडल जो है, वो दोबारा शेयर करने वाली हूँ. लता है डर, खो ना दूँ तुम्हें इस भीड़ में, क्योंकि तुमसे कोई देसी गर्ल इस पूरे जहां में नहीं. आंखों से सिर्फ नहीं, अब बस कह दो तो स्वैग से करेंगे स्वागत तेरा, कि बिन तेरे अब जीना मुश्किल है, क्योंकि तू मेरी और मैं तेरा. यू आर डेफिनेटली द विनर ख्याति. कैन यू लिसन टू मी, कैन यू हियर मी?
1: यस आई कैन.
0: कंग्रेचुलेशंस टू यू. और आखिरी फिल्म के साथ क्या कंफ्यूजन हुई मैं बताऊं आपको, बिकॉज द सॉन्ग दैट आई वाज लुकिंग वाज फ्रॉम द 2011 फिल्म बैंग बैंग, तू मेरी मैं,
1: दैट
0: ऋतिक रोशन. एंड देन शी गोज, यू नो इट इज फ्रॉम द रीसेंट फिल्म, आई एम नॉट एबल टू यू नो फिगर आउट कौन सी. मैंने कहा यार बहुत रीसेंट तो है नहीं, मुझे लगा मैं वहीं पे अटकी हुई थी, बट शी लैंडेड ऑन टू द कार्तिक आर्यन फिल्म दैट रिलीज लास्ट ईयर. सो यस, बल्ले बल्ले, आपके लिए आपके नाम टिकट हमने कर दिया है. विशाल शेखर का जो ये टिकट है आपको बिल्कुल मिलता है मुफ्त. कंग्रेचुलेशन टू यू ख्याति, थैंक यू.
1: Thank you so much, me too. And if we can talk off air, I have a quick question.
0: Absolutely, I'm going to put you on hold here. और वो गाना लेकर आने वाली हूँ जो ख्याति ने हमें बताया. Once again, composed by Vishal and Shekhar. Twelfth of July, mark it on your calendars. Ladies and gentlemen, Curtis Carnival Center should be your destination. CashPatelProductions.com should be your destination online to book your tickets right away. ख्याति को फ्री टिकट देकर वापस आती हूँ, और वो 30% डिस्काउंट फनीशा की तरफ से आपको मिलेगा अगर आप फनीशा कोड यूज करते हो.

अगर एहसास की बात की जाए ना, तो जी हाँ, कुछ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि खुश और पीसफुल रहने के लिए कौन क्या क्या नहीं करता है. हम बहुत तरह के पापड़ बेलते हैं, लेकिन लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे पीस ऑफ माइंड की अच्छी सी ना वाट लगाते हैं. ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ना सीधा रास्ता दिखाओ जो सीधे एग्जिट डोर की तरफ जाता हो. सी, सिंपल सी बात है, यू कांट कीप डांसिंग विद द डेविल एंड वंडर व्हाई यू आर स्टिल इन हेल, करेक्ट? तो सीधी सी बात ये ही है कि एक जो मैंने पढ़ी थी कि कुछ ऐसे कस्म के लोग होते हैं जिनको आप बिल्कुल दूर से टाटा नमस्ते बाय बाय कर दिया करो. जो आपको पसंद नहीं करते उनके साथ, जिनके साथ आपकी एक वाइब मैच नहीं होती ना, उनको बार बाहर से ही, दूर से ही सत श्री अकाल करो, है ना? दूसरे वो जिन्हें आपकी वैल्यू नहीं है, विथ हुम यू हैव हैड अ फॉलिंग आउट. तीसरे किस्म के जो वो लोग होते हैं जो आपको स्ट्रेस देते भी हैं और कॉन्स्टेंटली आप उनके आसपास स्ट्रेस में रहते हो. और फिर वो लोग भी हैं जो आपके लिए बैड इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. और ये समझना ना बहुत मुश्किल नहीं होता, हम ऐसी उम्र में हैं कि ये समझना काफ़ी आसान हो गया है हमारा. सो दीज आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल यू नीड टू ब्रेक अवे फ्रॉम. 100 बातों की एक बात, वी हैव टू लर्न टू वॉक अवे फ्रॉम पीपल, रिलेशनशिप्स या सिचुएशंस दैट थ्रेटन आर पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट या वैल्यूज या सेल्फ वर्थ को अगर वो चैलेंज करते हो, तो फिर ऐसे लोगों से भाई दूर से ही टाटा बाय बाय हेलो सत श्री अकाल जो करना है वो दूर से करो. खुश रहना क्योंकि हमारा बर्थ राइट है. और सबसे अच्छी बात पता है ये क्या है, ये पूरी की पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है कि हम किन से मिलते हैं, किन से घुलते मिलते हैं और किन से हम रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं. ये सारा कुछ हमारे ही बस में है. मेरी बस में है कि मैं एक और विशाल शेखर का बहुत ही पॉपुलर सा गाना आप लोगों के लिए लगाऊं. राइट हियर ऑन फर्नीचर रेडियो, 12th of July, लेडीज एंड जेंटलमैन, कर्टिस कलविल में ना धमाल मचने वाला है विशाल शेखर के म्यूजिक के साथ. कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम, डू नॉट फॉरगेट टू बाय योर टिकट्स देयर, 30% डिस्काउंट इफ यू यूज द फन एशिया कोड.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
1: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ perfect lunch ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 Mekini.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan mummy.
6: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
10: प्लीज डोंट सी योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
11: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
10: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
11: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus Fairview, Mexican cuisine with global influences.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
14: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
15: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, 'cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, 'cause miracles happen in Mirage.
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: Tracks that put you on the right track.

वेल, इफ यू एंजॉय दिस टाइटल ट्रैक फ्रॉम एक दिन, तो शुक्रिया आप कह सकते हैं सीधे अनिल को. ही रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग. यू नो दैट यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट हियर, योर डेडिकेशंस हियर. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. अब देखिए ना, एक एक दिन करके हम उस मकाम तक पहुंच गए. वी हैव रीच द हाफ ईयर मार्क ऑलरेडी एंड दिस इज डे टू ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ आर 2026, करेक्ट. और आने वाले दिनों में अगर समथिंग स्पेशल दैट यू going to celebrate, may it be with Shri Krishna, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसे ही खास दिन को और भी थोड़ा खास बना देता है. अगर आपके घर में शादी हो रही हो, कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस हो या कुछ और सेलिब्रेशन हो और आपको आपको ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा और स्पेशल बनाना चाहते हैं, थोड़ी और स्पेशल चीज़ कुछ गिफ्ट करके, तो श्री कृष्णा कैन बी वन ऑफ योर चॉइसिस. दैट इज वॉट आई वॉन्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ, क्योंकि ये वो जगह हैं, यहाँ पे आपको क्लासिक गोल्ड डिजाइंस मिलते हैं, डायमंड्स में ब्यूटीफुल डिजाइंस मिलते हैं, एंड देन दोस इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल की कलेक्शंस दैट दे हैव दैट यू माइट वांट टू चेक आउट. एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स हियर. तो वो आपका जो स्पेशल एक दिन आ रहा है आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में, वो थोड़ा और स्पेशल बनाइए विद श्री कृष्णा ज्वेलर्स. वंस अगेन डू रिमेंबर टू चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो देयर लोकेशन, देयर न्यू लोकेशन विच इज फॉर योर GPS. द एड्रेस इज 13145 सुइट 220 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. याद रहना चाहिए आपको. दे हैव बीन क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी since 1967 that you should be aware of. Ek din ke baad mujhe ek aur din ki yaad aa gayi, yani ki ek aur gana which begins with ek din bik jayega maati ke mol jag mein reh jayenge pyare tere bol. Mukesh sahab, this is Nostalgia Express, ladies and gentlemen, on Gupshup Gali with me too.

मुकेश साहब की आवाज इन दैट सॉन्ग दैट यू जस्ट हर्ड. यू आर ऑन दिस नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस विथ मी. और अगर हम वाइब कर रहे हैं इस पे तो कुछ और ऐसे गाने मिलेंगे फ्रॉम यस्टरडेज दैट यू एब्सोल्युटली लव. मुकेश साहब की आवाज थी इस गाने में. आप क्या ये फैक्ट जानते हैं कि वो फॉर्मली ट्रेंड नहीं थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, लाइक हिज कॉन्टेम्प्रेरीज जैसे कि रफ़ी साहब या मन्ना दे साहब. उनके पास इतना रॉ सोलफुल आवाज थी और उसी को उन्होंने बिल किया टू मेक हिज लेजेंडरी सिंगिंग करियर ऑन दैट इननेट इमोशनल डिलीवरी स्किल दैट ही हैड. दैट ब्रिंग्स मी टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, क्या है ना कि लेट्स टॉक अबाउट द अमेजिंग फीलिंग ऑफ प्राउड मोमेंट्स. अगर हम अपनी लाइफ को रिकॉल करें ना, तो राइट फ्रॉम आवर बर्थ टिल टुडे हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. पहले चलना सीखा, बोलना सीखा, फिर स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज के पीछे भागे और प्रोफेशनल्स के पास जाके अपना नो हाउ जो है बढ़ाया. करेक्ट, वी एक्वायर्ड स्किल्स दैट गॉट अस आवर फर्स्ट जॉब. फिर वहाँ सीनियर से सीखा, बॉस से सीखा, तब जाकर आज हम जहाँ पर हैं वहाँ बड़े शान से खड़े हैं. राइट, बिग शाउट आउट टू All those institutions and teachers जिनके पास हम गए और उनसे कितना कुछ सीखा है हमने. And that includes our parents, our people around when we were growing up as well. उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. But दोस्तों, life में ना क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किसी professional class या school या teacher ने नहीं, कोई system ने नहीं सिखाया. No coaching, no classes. हमने उन्हें बिल्कुल खुद से सीखा, थोड़ा थोड़ा करके, hit and trial तरीके से, जिद पकड़ के हमने खुद सीखा.

0: में किसी प्रोफेशनल क्लास या स्कूल या टीचर ने नहीं, कोई सिस्टम ने नहीं सिखाया, नो कोचिंग, नो क्लासेस, हमने उन्हें बिल्कुल खुद से सीखा, थोड़ा थोड़ा करके, हिट एंड ट्रायल तरीके से, जिद पकड़ के हमने खुद सीखा। बस ऐसी ही कोई चीज़ अगर आपने सीखी हो, खुद अपने आप से अपने आप को ट्रेन किया हो, बस वही स्किल जानना है मुझे आपसे। 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो। एक कॉल आ रही है, ले लूं क्या मैं यहाँ पर? यू आर लाइव ऑन एयर।
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने सब कुछ सीखने के साथ, मुझे वालिद साहब की एक बात याद आ गई,
0: जी
1: एक गाना था उनका फेवरेट,
0: जी
1: सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, वो लगा दे तो मजा आ
0: हाँ,
1: जाएगा।
0: सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार।
1: सीखी होशियारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर लगाती हूँ मैं आपके लिए वो गाना। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर एंड फाइंड आउट कि आपने अपने आप से क्या सीखा विदाउट एनी फॉर्मल कोचिंग सेंटर और लेट्स से यू नो हेल्प फ्रॉम द टीचर्स और योर पेरेंट्स और एनीबडी, समथिंग दैट यू लर्न ऑन योर ओन। योर लाइव ऑन है।
2: हाय, मैंने स्पैनिश सीखा, स्पैनिश
0: स्पैनिश,
2: लैंग्वेज।
0: क्या बात है, विदाउट एनी हेल्प यू लर्न इट योर सेल्फ।
2: यस, बिकॉज माय डॉटर वाज लर्निंग इट इन स्कूल एंड शी यूज्ड टू टीच इट टू द अदर स्मॉल चिल्ड्रन इन द अपार्टमेंट। दे यूज्ड टू कम टू हर, यू नो, प्ले विद हर एंड शी यूज्ड टू टॉक टू देम इन स्पैनिश। सो आई वाज एनकरेज्ड एंड आई लर्न फ्रॉम हर अ लिटिल इन द बिगिनिंग, बट देन आई सेड नो, आई विल गेट माई ओन, यू नो, वो डुओलिंगो करके है ना ऐप, उसमें से मैंने स्पैनिश सीखा। अभी मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ तो आई कैन टॉक टू माई पेशेंट्स इन स्पैनिश, सो दैट रियली हेल्प।
0: हाउ कूल इज दैट, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम?
2: गीता।
0: गीता, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्यू मोर कॉल्स आफ्टर दिस सॉन्ग दैट हैज बीन गिवन टू मी एज ए रिक्वेस्ट हियर कि भाई सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी।

0: ऐसे अनाड़ी ही रहे यार, थोड़ी सी इनसेंस बच जाएगी ह्यूमैनिटी की। यू आर लिसनिंग टू फनीचर रेडियो 104.9 एफएम। मेरे साथ फिलहाल है अमरीन, और अमरीन ने अपने आप क्या सीखा वो मैं जानना चाहती हूँ। यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग वेरी वेल अमरीन, एंड यस, थैंक यू फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स दैट यू वर शेयरिंग विद मी अर्लियर। और अपनी तारीफ सुन के किसको नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: एंड आई वांट टू रियली से इट आउट लाउड, आई रियली रियली लव योर शो
0: एंड
1: द कन्वर्सेशंस वी हैव ऑन एयर, यू नो, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू।
0: Absolutely my pleasure, Amreen. तो बताएं वो एक चीज जो आपने खुद से सीखी।
1: तो आप जो बोल रहे थे ना कि हम खाना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं।

0: Right.
1: with everybody's, your help. I have learned to stay quiet, to not talk as
0: You are breaking up, Amreen. Can you hear me?
1: because I feel it's not necessary. I can hear you. Can you hear me?
0: Now I can hear you. Yes. So go ahead.
1: मैं ये कह रही थी कि मैंने चुप रहना सीखा है. हाँ,
0: क्या बात है कि सही जगह पे चुप रहना भी एक आर्ट है.
1: बहुत बड़ी आर्ट है. एंड यू नो लाइफ टीचेस यू दैट, बिकॉज
0: करेक्ट.
1: हम छोटे रहने ये सुनते थे ना कि तोल मोल के बोल नहीं समझ आती थी जब, बट लाइफ टीचेस यू दैट. सो इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव योर टू सेंट्स टू एवरीबडी, बिकॉज यू डोंट नो
0: हाँ,
1: व्हाट काइंड ऑफ अ डे दे आर हैविंग.
0: सो ट्रू. वेल
1: सो इट्स
0: सेड,
1: बेटर टू बी क्वाइट.
0: वेल सेड, वेल सेड. एंड यू नो व्हाट, फॉर दीज गोल्डन वर्ड्स दैट यू हैव शेयर्ड विद आवर लिसनर्स, दिस वंडरफुल प्लेस कॉल्ड पंचतारा रेस्टोरेंट हैज फ्री आलू कुलचे या छोले भटूरे फॉर पीपल लाइक यू. तो आपके लिए मैं ये रिजर्व करती हूँ कि ये आपको देना चाहूंगी मैं. प्लीज होल्ड द लाइन, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर. एंड टू एवरीबॉडी एल्स, लेट मी टेल यू कि ये पंचतारा, ये जो जगह है ना, ये आपके लिए बहुत शानदार है. इफ यू आर इन टू दोस वेरी वेरी ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ यू नो फूड, द स्पाइसेस दैट यू आर सीकिंग, मेंशन द कोड फानीशिया और अपना पंजाब एट द रेस्टोरेंट. डू नॉट फॉरगेट दैट कि आपने हमसे सुना. और फॉलो कीजिए उन्हें इंस्टाग्राम पे, पंचतारा रेस्टोरेंट. एंड अलॉन्ग विद दैट, अपना पंजाब .hg3 दैट यू मस्ट फॉलो यू नो ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि पंचतारा लेकर आते हैं पूरे पंजाबी फ्लेवर्स आपके लिए राइट हियर इन फ्रिस्को एंड एलन. किशोर कुमार साहब, इनकी आवाज़ हम कितना पसंद करते हैं, राइट? लेकिन इनकी भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, इन्होंने सीखा गाने सुनते सुनते. अपने सहगल साहब जो उनके मेंटोर थे, उनको गुरु मानते थे, उन आइडियलाइज करते थे, बस उनके गाने सुनते सुनते ही तो सब सीखा.

0: यू आर ट्यून इन टू फनीचर रेडियो 104.9 एफएम. नीला नीला अंबर तो है लेकिन गर्मी भी काफी है. टुडे इज हाई अराउंड 97 लेकिन वो ट्रिपल डिजिट्स में हमें फील होने वाला है. राइट नाउ वी आर एट 92. थोड़ी देर पहले मैं वेदर के बारे में बात कर रही थी एंड देन वी वर एट 88. 4 डिग्री है वहीं बढ़ गए. क्या हमने बढ़ा दिया फनीचर रेडियो ने, क्योंकि हम कमाल के कुछ गाने लगा रहे हैं आपके लिए राइट हियर ऑन फनीचर रेडियो 104.9 एफएम. ये है गपशप गली विथ मीठू. Up next is the FIFA fever segment for all of you between 12 to 12:30. So, bane rahe mere saath. Let's talk about FIFA, ladies and gentlemen, in the next segment right here.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
9: Haan, dekh lenge.
8: To fir India ki ticket kab karwaye?
9: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
10: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
17: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
18: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
17: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
19: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd to 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्रे परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
15: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
17: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
20: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो
0: थोड़ा ओवरहीटिंग था।
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
21: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
22: इन प्लेनो।
21: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
20: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
23: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
24: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
25: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
26: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
27: छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
28: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
29: Tracks that put you on the right track.

फ्रॉम द मूवी जोर, और जोर से शोर मचाने की तो बनती है, बिकॉज यूएस मेंस टीम ने जो कल खेला मजा आ गया. लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेट स्ट्रेचिंग बैक टू 2002 इज फाइनली ओवर फॉर ऑल ऑफ अस हियर. बोस्निया एंड हर्जेगोविना से जो जीता 2-0 टू बुक देयर प्लेस इन द राउंड ऑफ 16, इट वॉज अमेजिंग. और बलोगन ने पहला गोल मारा और दूसरा गोल टिलमन का था, दैट इज फैंटास्टिक. लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब लोगन को एक्चुअली रेड कार्ड दिया रेफरी ने, एंड फेल्ट इट वाज टोटली अननेसेसरी बिकॉज दैट ब्लॉक्स हिम टू प्ले फॉर द राउंड ऑफ 16 विद बेल्जियम व्हेन यूएस मेंस टीम विल गो हेड ऑन बिल्कुल विद दैट अदर टीम, यू नो. सो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इतने अच्छे हमारे प्लेयर और ही विल बी ब्लॉक्ड, यू नो, एंड ही वोंट बी एबल टू प्ले. एंड द बिगेस्ट मोमेंट फॉर अस व्हेन द टू गोल्स वर मेड बाय दीज टू जेंटलमैन, Balogun and Tillman, ladies and gentlemen. And yes, they have advanced to that round of 16. July 6th ko hone wala hai Belgium ke saath ye game. Balogun nahi khel payenge yaar. But total dhamal, isi baat par it calls. This is FIFA segment, ladies and gentlemen, और ये है गपशप गली with me. मेरा नाम है मीठू.

Well, we have three massive knockout encounters scheduled for today, जहां एक भी गलती का मतलब हुआ कि सीधे फ्लाइट पकड़ के घर वापस जाना पड़ेगा अगली टीम को. स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 PM पे द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट एंड टुडेज ओपनिंग क्लैश इज गोइंग टू बी ए टैक्टिकल मास्टर क्लास बिटवीन द टू टीम्स. स्पेन ने ग्रुप स्टेज में कमाल का फुटबॉल खेला है, कीपिंग देयर डिफेंस एब्सोल्युटली सॉर्ट ऑफ रॉक सॉलिड वन कैन से. ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रिया इज कमिंग इन टू द मैच विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और उनका हाई प्रेसिंग स्टाइल किसी भी टीम को परेशान कर सकता है. क्या स्पेन की क्रिएटिव मिडफील्ड का आज जो देखने वाले हैं ऑस्ट्रिया के एग्रेसिव गेम के साथ बराबरी कर पाएगा, दैट इज टू बी सीन एट 2 PM व्हेन द मैच स्टार्ट्स. द सेकेंड गेम टुडे इज एट 6 PM इट स्टार्ट्स और पोर्चुगल वर्सेज क्रोएशिया का ये गेम होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ लेजेंड्स, जहां दोनों टीम्स के पास टूर्नामेंट के का मजा हुआ एक बहुत ही मजा हुआ एक्सपीरियंस है. एंड पोर्चुगल्स अटैकिंग लाइनअप लुक्स एक्सट्रीमली डेंजरस राइट नाउ, लेकिन क्रोएशिया के पास भी उनके मिडफील्ड माएस्ट्रो हैं जो गेम का टेम्पो अपने हिसाब से पूरी तरह से कंट्रोल में रखना जानते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी एज आई सेड ए बैटल ऑफ लेजेंड्स बिटवीन पोर्चुगल एंड क्रोएशिया. द थर्ड मैच स्टार्ट्स एट 10 PM स्विट्जरलैंड वर्सेज अल्जीरिया और आज का ये आखिरी फाइनल शोडाउन होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि स्विट्जरलैंड की टीम अपनी डिसिप्लिन डिफेंडिंग और क्विक काउंटर अटैक्स के लिए जानी जाती है, मेकिंग देम वेरी टफ नट टू क्रैक एक्चुअली. लेकिन अल्जीरिया के पास जो रॉ पेस है उनके पास और नॉर्थ अफ्रीकन फ्लेयर है, वो किसी भी डिफेंस को खोल कर टुकड़े टुकड़े कर सकती है. Under the floodlights, it's going to be a do-or-die match for the two. देखते हैं कौन सी टीम राउंड ऑफ 16 एंटर कर पाती है. राउंड ऑफ 16 तो नहीं, लेकिन राउंड 2 पे कंगना रनावत विद द फिल्म क्वीन. जी हाँ, विकास बहल की वो फिल्म जो हमने बहुत पसंद की, उसी का जो सेकंड आने वाला है द सीक्वल विच इज रिपोर्टेड टू बी कॉल्ड क्वीन फॉरएवर, उसका जो है शूटिंग पूरा हो चुका है. जस्ट FYI.

यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मीठू। और ये अगला गाना मैं लगाऊं उसके पहले ना मुझे बात करनी है आपके डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ एक्सपीरियंस। अगर आप भी कुछ उनमें से हैं जिनको इतना इंतजार करना पड़ा है कि भाई मतलब आपको अगली बार ना जाने में यू ड्रेड टू द डॉक्टर्स बिकॉज दे मेक यू वेट सो मच, और फाइनली जब वक्त आता है आपका तो फटाफट आपको जल्दी से रूम खाली करने के चक्कर में दे डोंट लिसन टू यू एज वेल। यही चीज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में आपको बिल्कुल नहीं फेस करना पड़ेगा। दे गिव यू अपॉइंटमेंट द सेम डे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपको तबीयत से टाइम देते हैं जितना आपको जरूरी है आपके आपके मर्ज को जानने के लिए, आपकी पूरी सुनने के लिए। एंड दैट्स ऑल द टाइम दैट दे गिव टू यू इज फॉर योर हेल्थ कंसर्न। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू बी टॉकिंग टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेज वो पूरी तसल्ली से आपको टाइम देते हैं। सो रिमेंबर टू गेट इन टच विद देम। पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम इज दैट वेबसाइट फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी। दिस इज द नेम दैट यू शुड बी स्प्रेडिंग, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स हैं इनके पास, यानी कि एक ही जगह पे आपके सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के जवाब आपको मिल जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड नीड्स के भी जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे लिसनर्स में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस या साइकेट्रिस्ट हैं, कॉलिंग ऑन देम फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन सेंड योर रेज्यूमे टू passionhealthphysicians@gmail.com और उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं आप एट 217-454-4639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड द इन्फॉर्मेशन फॉर रेस्ट ऑफ द लिसनर्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, द वेबसाइट इज passionhealthphysicians.com और नंबर है 214-666-6259। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू गपशप गली विथ मीठू।

0: You are tuned into the last segment, the FIFA Fever segment of Gupshup Gali with me too. तो क्या है ना कि FIFA World Cup में trophy तो priceless है, ये हम सब जानते हैं. But let's look at the top 10 highest paid stars who are dominating both the pitch and the bank accounts, ladies and gentlemen. हाल ही में Forbes ने release किया the estimate on that, the numbers, the exact figures, the financial powerhouse जो top 3 है, number 1 पे है the undisputed goat of earnings Cristiano Ronaldo. Ronaldo at $300 million a year. Number 2 pe hai the global icon, of course, Lionel Messi, who is at $140 million. Number 3 pe hai the future of football, it's Mbappe, sitting pretty at $95 million, ladies and gentlemen. Aur hamari rising stars and global icons mein naam aata hai at the fourth position, it is Erling Haaland from Norway, $80 million. Pay, followed by Brazil's sensation Vinicius Jr., ladies and gentlemen. And if you are still curious to know about the next in the line, it is Jude Bellingham and Lamine Yamal. और ये दोनों जो हैं ये अगले दो spots उन्होंने लिए हुए हैं on Forbes list. That's all the time I have with you all. जी हाँ, कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ. Looking forward to be talking to all of you once again then between 10 to 12:30, ladies and gentlemen. Up next is Simi. Get ready for her and everybody else after her. Because this is Funasia Radio 104.9 FM. Entertainment, entertainment or entertainment. Kabhi khatam nahi hota. This is Me Too signing off for the day.
1: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191
3: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
4: क्या मतलब?
3: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
4: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
3: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
7: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
10: इंट्रोड्यूसिंग Lumity लर्निंग सेंटर, Frisco, Prosper और McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math और English plans, certified teachers, continuous feedback, on demand support और हर बच्चे के लिए competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

ऐसे ही शुक्रिया करते करते मैं आपके पास फिर से आ पहुंची हूँ। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में वक्त हो गया है 12:40 और मेरा और आपका साथ होने वाला है पूरे 2 घंटे तक, मतलब मोटा मोटी 2:30 तक। और आज का जो एडिशन है ना, काफी स्पेशल है क्योंकि आज का दिन भी स्पेशल है। थर्सडे है और हर थर्सडे को हम थ्रोबैक थर्सडे मनाते हैं। हम याद करते हैं पुराने दिनों को, पुराने गानों को और पुरानी बातों को। तो आज हम आपको ले चलेंगे उस जमाने में जब यूट्यूब एड्स स्किप नहीं हुआ करते थे, बल्कि टीवी के एड्स का वेट करते थे। कुछ लोगों के तो एड फेवरेट एड्स भी हुआ करते थे। और 90s और अर्ली 2000s के एड्स ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स नहीं थे, वो हमारे बचपन की मेमोरीज थे। कुछ जिंगल्स तो आज भी सुनते ही हम ऑटोमेटिकली उसको गाने लगते हैं, कंप्लीट करने लगते हैं। तो इसके पहले कि मैं उन एड्स की बातें करूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कौन सा एड आज तक आपको मुंह जुबानी याद है, मतलब आप पूरा का पूरा गा सकते हैं। अगर आपको मुझे बताना हो तो आप मुझे कॉल कीजिए @972235555555।

ऐसे ही हमारा भी मन लगता था जब हमें अमेजिंग अमेजिंग एड्स और जिंगल सुनने को मिलते थे पुराने सारे जो 90s के थे और जो 2000s के थे, क्योंकि अब तो यूट्यूब का जमाना है, अब तो हम स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हमारे पास टाइम कम है, 30 सेकेंड 50 सेकेंड्स की रील्स और स्टोरीज देखते रहते हैं हम। लेकिन आज हम जितने भी लिसनर्स हैं, काफ़ी लोगों ने कॉल किया और बताया, सोहेल और मरियम ने बताया निरमा का जो एड था, वॉशिंग पाउडर निरमा, और उन्होंने और मैंने, हम लोग तो ऑलमोस्ट पूरा गाना गाए दिया, एकदम मुंह जुबानी याद है पूरी के पूरा सॉन्ग। अंजुम ने कॉल किया और बताया कि बजाज बुलंद, भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, और वीको टर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये भी सबको याद है। मतलब आप नॉर्मली वीको टर्मेरिक बोल ही नहीं सकते, आपको जो नेक्स्ट लाइन है ना, नहीं कॉस्मेटिक, वो फटाफट आ ही जाता है। खान साहब ने भी कॉल किया और उन्होंने एक मुल्तानी मिट्टी का एक एड है वो भी काफ़ी अच्छा सा, कि आई हैव नॉट लिसन टू इट बट मैं ज़रूर सुनूंगी और आप सब भी ज़रूर सुने, क्योंकि जब वो गा रहे थे तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और लग रहा था कि हाँ मुझे याद हो रहा है वो। और हेमंत ने भी कॉल किया, उन्होंने बहुत सारे एड्स के बारे में बात करी, जैसे विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, और अगेन बजाज, एंड आई लव यू रसना, एंड आई एम कॉम्प्लान गर्ल, कॉम्प्लान बॉय, ऐसे तो बहुत सारे एड्स हैं, जिंगल्स हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इन सब के अलावा भी अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइए 972-235-5555।

0: अभी हमारे बहुत सारे लिसनर्स का कॉल आया और इसके पहले कि मैं ये सेगमेंट क्लोज करूं, मैं उनके बारे में शेयर करना चाहती हूं। मनीष जी थे हमारे साथ और उन्होंने बजाज का ना वो वाला जो पूरा जिंगल था कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, उनको तीनों के तीनों पैराग्राफ एकदम फटाफट याद थे और वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। आई विश कि गाना प्ले ना हो रहा होता तो मैं उनको जरूर ऑन एयर लेती। एंड देन वी रिसीव अनदर कॉल फ्रॉम राम कुमार जी, जिन्होंने याद किया थम्स अप पेप्सी बंटे वाली बॉटल को, और जो बंटे वाली बॉटल हुआ करती थी वही उस जमाने का कॉकटेल और मॉकटेल हुआ करता था दोस्तों, अब तो काफी ट्रेंडी और स्वैग वाले नेम्स आ गए हैं। तो 90 के एड हमें ऐसे टाइम में ले जाते हैं जब इंटरटेनमेंट सिंपल था, कैची था और टीवी वाले एड्स हम फैमिली के साथ भी देख सकते थे। एंड अभी वक्त आ गया है ब्रेक का।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
8: और एंटरटेनमेंट,
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ।
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ।
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ।
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
16: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
7: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
15: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
7: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
15: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Har bhai super hit.
0: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

हाँ जी, यही पूरी लैला और मेन कैरेक्टर वाइब्स लेके आ चुकी हूँ मैं, आरजे सिमी टू यू। और आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:10। और इसके पहले कि हम गिव अवे राउंड करें, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस मेन कैरेक्टर एनर्जी को और एक्सेसराइज कैसे किया जाए, उसमें और एड ऑन कैसे लाया जाए विथ मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स, जो कि लोकेटेड है फ्रिस्को में। यहाँ आप जा सकते हैं और खरीद सकते हैं ब्यूटीफुल रिंग्स, ईयर रिंग्स, डार्जलिंग नेकलेसेस भी मिलते हैं और कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स भी। यहाँ आपको मिलेगा अपना परफेक्ट पीस एंगेजमेंट के लिए, एनिवर्सरी के लिए, किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन, या फिर अपने आप को ना ट्रीट देना चाह रहे हो, अपनी लैलापन को एंजॉय करना चाह रहे हो, तो भी आप जा सकते हैं। और अगर इस पर आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज मलाबार गर्ल्स एंड डायमंड्स लोकेटेड इन फ्रिस्को। और ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं अपना गिव अवे राउंड। ओके,

कि आपको भी सुरूर है कि आपको कुछ गिव अवे में मिले, और छोटी छोटी अचीवमेंट है जो मुझे पता है लोगों को काफी मजा आता है, मुझे भी काफी मजा आता है ये करते हुए। और अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन द डाइन इन ऑप्शन। और एक बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये ऑलरेडी जीत चुके हो फन एशिया के किसी भी और शो में, तो प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि हमें दूसरों को भी मौका देना है। ओके, क्योंकि आज हम बहुत सारा एड और जिंगल्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो सवाल भी मिलता जुलता ही है। मैं आपसे तीन जिंगल्स को इनकम्प्लीटली बोलूंगी और आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है? इतना सा है बस, तैयार हो जाइए। मैं पहला जिंगल इज आई लव यू डैश, वो कौन सा ब्रांड है, कौन सा प्रोडक्ट है आप बता सकते हैं। सेकेंड इज दूध सी सफेदी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज मेलोडी इतनी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई विल रिपीट द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज आई लव यू डैश, सेकेंड इज दूध की सफेदी, एंड द थर्ड इज मेलोडी इतनी, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए हमें एट 972-235-5555।

सारे एड्स ही ऐसे नहीं होते, मतलब कि आए गए, कुछ एड्स काफी स्पेशल होते हैं, अमेजिंग होते हैं, उन पे काफी मेहनत की गई होती है और वो दिखता है और वो हमारे जबान पे बस जाता है और हमारे दिल में भी बस जाता है हमेशा के लिए। इसी में से कुछ एड्स मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए बोले थे, गिव अवे क्राउन का क्वेश्चन भी पूछा था। तो पहला क्वेश्चन था कि आई लव यू क्या, दैट वॉज रसना, दूध की सफेदी, दैट वॉज निर्मा, एंड मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ओके और आज का जो गिव अवे के विनर हैं वो हैं हेमंत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन डाइनिंग ऑप्शंस फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। और कोई बात नहीं, अगर बाकी लोग नहीं जीत पाए या मैं कॉल नहीं ले पाई, क्योंकि आप मंडे टू फ्राइडे भी जा सकते हैं स्पेशल थाने खाने यहाँ पे। और ना क्या होता है कि हर मंडे टू फ्राइडे को लंच के टाइम पे इनकी डिशेज भी रोटेट होती रहती हैं। ये लोकेटेड है एट मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, और अगर आपको इस पे और कोई जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं इनके वेबसाइट पे, विच इज चंडीगढ़ बाइट्स.com।

देखिए, प्यार वाली बेकरारी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ और हो रहा है आपके साथ, बुखार या किसी और टाइप की बेचैनी है और आप चेकअप वगैरह कराना चाह रहे हैं, तो आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जरूर जाएं। और क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर आपके साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं, मतलब नॉट जस्ट लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स लाइक द रेगुलर वे ऑफ अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स, यहाँ पे आपके साथ पूरे के पूरे 30 मिनट बिताए जाएंगे। आपसे हिस्टोरिकल डेटा लिया जाएगा, आपको क्या फील हो रहा है, और बातें कर भी कभी कभी हम एक बार में सब कुछ नहीं कह पाते ना, मतलब थोड़ा टाइम लगता है बातें करते करते, याद आता है कि हाँ अच्छा ये था, ये भी बताना है डॉक्टर को, बाद में याद आता है कि जब निकल गए होते हैं, तो ये सब नहीं होगा। तो आप अगर पैशन हेल्थ केयर पे जाए, और यहाँ पे आपको पेशेंट की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, और तो और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आए हैं फॉर पीपल हु वांट्स टू जॉइन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। चाहे अगर आप एक एक्सपीरियंस प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो, या फिर साइकेट्रिस्ट हो, हर किसी के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और अगर आप पैशनेट हैं अबाउट द पेशेंट केयर, तो आप अपना रिज्यूमे जो है उनको भेज सकते हैं एट दी एड्रेस ऑफ पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com, या फिर आप उनको कॉल भी कर सकते हैं एट 217-454-4639। यहाँ पे आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका वेबसाइट भी है passionhealthphysicians.com, जहाँ पे अगेन आपको जो बाकी डिटेल्स है वो मिल जाएंगी।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा मैं हीरो।
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
13: उमर ख्वाजा।
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
15: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 or visit astrologereeshwar.com. We got

0: आई टोटली अग्री कि नैनो का कोई भी कसूर नहीं है. कसूर तो दिल का है. आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा. आज हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं एक SBA लोन एक्सपर्ट जो कि बिजनेस परचेस, फ्रेंचाइजी स्टार्टअप्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो लोन्स ऑप्शंस होते हैं उनको समझने में लोगों की हेल्प करते हैं. शाहिद पंजवानी जी हैं हमारे साथ. वेलकम टू द शो शाहिद.
1: थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: ओके शाहिद जी, आपसे एक सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ आर लिसनर्स कि ये जो बिजनेस खरीदने के लिए जो लोन ऑप्शंस होते हैं वो उनके लिए क्या करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कैसे बिजनेस स्टार्टअप करना है, अगर आप थोड़ी मदद कर पाए हमारे लिसनर्स की.
1: विल डेफिनेटली ट्राई. सो SBA लोन एक्सपर्ट्स, अभी हम हमेशा बिजनेस के बारे में, लोन्स के बारे में बात करते हैं, और कल मुझे एक क्वेश्चन आया कि SBA क्या है. देन आई रियलाइज दैट नॉट एवरीबडी नोज व्हाट SBA. सो लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट टू द लिसनर्स, जिनको नहीं पता SBA क्या है, फर्स्ट टाइम मे बी दे आर न्यू टू द बिजनेस वर्ल्ड और व्हाटएवर. SBA जो है ये स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है. ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है जो बिजनेस ओनर्स को या जिनको बिजनेस खरीदना है अगर उनको फाइनेंसिंग चाहिए तो ये जो गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है ये उस लोन को बेसिकली हम इन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि SBA जो एक कोसाइनर है, ये लेंडर को कोसाइन देती है आपके लोन के लिए ताकि आपकी फाइनेंसिंग इजी हो जाए. सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर कोई बिजनेस खरीदना चाहता है और उसको लोन चाहिए, चाहे फ्रेंचाइज खरीदनी है या इंडिपेंडेंट बिजनेस खरीदना है या फ्रेंचाइज स्क्रैच से शुरू करनी है, वी कैन हेल्प देम गेट एन SBA लोन विथ एज लो एज 10% डाउन. $500,000 का अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट है तो ऑल यू नीड टू पुट इज $50,000 डाउन एंड रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी फाइनेंस्ड. वन, दैट्स वन पॉइंट. सेकेंडली, अभी हमने लेटली हम क्या कर रहे हैं कि जब किसी का लोन प्रोसेस होता है, कोई बिजनेस खरीद रहा है, वो 10% डाउन देता है और रिमेनिंग अमाउंट लोन हो जाती है. फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वी ऑल्सो गिव देम $50,000 to $100,000 ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि होता है ये जब बिजनेस खरीदते हो आप उसके बाद बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, बिजनेस ग्रो करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, और जब आप बिजनेस खरीदने के बाद 3-4 महीने बाद वापस आते हो कि आई नीड मनी टू ग्रो द बिजनेस, बैक टू बैक लोन करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अभी एक लोन आपको दिया, अब 3 महीने बाद आप दूसरे दोबारा लोन मांग रहे हो. सो व्हाट वी डू इज एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग वी विल ट्राई टू गिव यू वर्किंग कैपिटल टू ग्रो योर बिजनेस. $50,000 आपने डाउन दिया, $50,000 हमने आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो बेसिकली होता ही है कि आपने बिजनेस जीरो आउट ऑफ पॉकेट खरीद लिया. सो एनीवन इन द मार्केट लुकिंग टू बाय अ बिजनेस, स्टार्ट अ बिजनेस, वी कैन हेल्प यू गेट एन SBA लोन, एज वेल एज इफ यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर SBA और फॉर सम रीजन यू डोंट वॉन्ट SBA, वी डू हैव कन्वेंशनल लोन ऑप्शंस टू.
0: Thank you so much, Shahid ji, for this amazing information. Can you share your contact details with our listeners so that they can reach out to you?
1: 817-786-3338. This is my direct line, 817-786-3338.
0: That's great. Thank you so much, Shahid ji, again, and have a good day. We'll connect with you again.
1: Thanks, Shahid.
0: बाकी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के लिए तो आपको पता ही है कि आपको कहाँ होना है, हमारे साथ यानी कि फनेशियर रेडियो के साथ 104.9 FM पे.

ये दिल ही तो है सारे फसाद की जड़, लेकिन दिल को अगर खुश करना है तो उसका रास्ता जो है पेट से होके गुजरता है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको अच्छा सा टेस्टी सा खाना मिल सकता है, वो भी ऑफर पे, अगर आप ये गिव अवे राउंड जीत जाते हो ना, जो मैं अभी आपसे के साथ करने वाली हूँ, तो आपको $20 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा ऑन डाइनिंग ऑप्शन फ्रॉम नियॉन कैक्टस। नियॉन कैक्टस काफी फेमस है अपने मैक्सिकन फूड फ्यूजन के लिए, तो जरूर ट्राई करें अपना लक, ठीक है। तो मैं ना अभी ये क्या करने वाली हूँ कि मैं एक सॉन्ग बजाने वाली हूँ और आपको बताना है कि इस सॉन्ग के एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, क्योंकि आज हम थ्रोबैक थर्सडे का थीम कर रहे हैं, तो गाना थोड़ा सा नॉट लाइक 90s के अराउंड का है, ठीक है, बहुत पुराना भी नहीं है। ओके, आपको कॉल करना है 9722355555।

व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग. आई मीन बुमरो बुमरो का ही सवाल पूछा था हमने आपसे. हमने आपको पूछा था कि भाई कौन है इसमें लीड एक्टर और एक्ट्रेस, और बहुत सारे कॉल्स आए, काफी सही जवाब मिले हमें. आज के जो हमारे विनर हैं वो हैं देवदास. जी हाँ, और आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड. नियॉन कैक्टस जो है ना, काफ़ी फेमस है अपने मेक्सिकन फ्यूजन की वजह से, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस, जबी हाँ हलाल ऑप्शंस भी मिलता है. और इसकी जो वाइब है रेस्टोरेंट की, यंग है, कलरफुल है, मॉडर्न है, एनर्जेटिक है. अगर आप हैंग आउट पर जाना चाहते हैं, डेट नाइट पर जाना चाहते हैं, या फिर आपको बस ही चिल करने जाना है तो भी जा सकते हैं. यहाँ पे क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स और हैप्पी आवर्स भी है भाई मंडे टू फ्राइडे, और स्पेशल डील्स भी हैं एवरी सिंगल डे. तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर पूछ ले कि भाई आज का स्पेशल डील बताओ. और फिलहाल आज का स्पेशल सॉन्ग बजाने से पहले आज की स्पेशल लेडी के बारे में बात कर लेते हैं. लीजा जी का बर्थडे आ रहा है, और मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो भी अगर उनके फ्रेंड्स सुन रहे हैं, कि भाई 12 बजे विश करना है उनको. शी इज वेरी एक्साइटेड, शी इज ऑल्सो जुलाई बॉर्न लाइक मी एंड आई लव पीपल बॉर्न इन जुलाई. सो लीजा जी, आपको हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
7: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग, रीराउटिंग।
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
7: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
6: क्यों?
7: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
19: Hey, tumne kabhi insurance liya?
20: Liya!
19: Kabhi policy samajh bhi aaya?
20: Nahi aaya!
19: Mujhe bhi nahi aaya! आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772। That's 972-863-7772.
21: Visit www.sanadainc.com today.
22: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

दिल दहरा करते हुए मैं आ चुकी हूँ वापस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। लेकिन जब दिलदारा को भूख लगे और लंच का टाइम भी हो गया हो तो दिलदारा कहाँ जाए भाई, पेस्ट्री ईटरी जाए और कहाँ, क्योंकि यहाँ मिलेगा सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवर फूड चाट फ्यूजन बाइट। मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है ना फ्लेवर का और चाट और जो भी इनके डिशेज हैं वो कमाल के हैं। अगर आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है बाय गोइंग देयर एट हब 121 तो आप सीरियसली कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में, मैं बता देती हूँ। हाँ, यहाँ आप जा सकते हैं ब्रंच के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, डेट नाइट के लिए या फिर अपने दोस्तों के साथ फूडी मीटअप प्लान कीजिए और जाइए एक्सप्लोर कीजिए जगह। और यहाँ की वाइब वो तो अमेजिंग ही है। वंस अगेन विजिट पेस्ट्री ईटरी एट हब 121।

0: डियर टेक्सास बिजनेस ओनर्स, आपके लिए लेके आई हूँ एक खास इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अगर आपको चाहिए एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, डू रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी, जो कि टेक्सास बिजनेसेस को मदद करते आए हैं सिंस 2002 विद देयर कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस, और इनके जो एनर्जी प्लान्स हैं ना वो काफ़ी कस्टमाइज्ड हैं। दिस इज तारा कमर्शियल एनर्जी। आप इनको कॉल करके रीच आउट कर सकते हैं बाई कॉलिंग देम एट नंबर 8444282808, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज taraenergy.com।
1: Authentic, original, and better than our rivals.

जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू 10 बहाने करके लेके दिल, विच इज अ सुपर हिट सॉन्ग ऑफ विशाल एंड शेखर. और जो लास्ट में जो दो वर्ड्स है ना, हियर नाउ, ये है फॉर यू. लाइक ऑल द डैलस बॉलीवुड फैंस, तैयार हो जाइए, क्योंकि विशाल और शेखर लेके आ रहे हैं अपना सुपर हिट टूर टू डैलस ऑन संडे जुलाई 12th. कहाँ पे? एट कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड. और अगर आपको ऐसे ही हिट्स इंजॉय करने हैं, लाइक 10 बहाने, छमक चलो और बहुत सारे सॉन्ग लाइक देसी गर्ल, एवरीथिंग, और विशाल एंड शेखर की जो प्रेजेंस है वो ही मैजिकल है. मतलब आपको तो इनको 10 बहाने क्या, बस इनकी प्रेजेंस दे दो, उतने में ही खुश हो जाते हैं लोग. और बिल्कुल आप जाएं, इंजॉय करें. अगर आपको टिकट्स खरीदनी है तो यू हैव टू गो टू kashpatelproductions.com, ओके, kashpatelproductions.com. और अगर आपने हमारा कोड यूज किया विच इज फन एशिया, तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट.

Guys, if you are looking out to help you with any kind of portfolio management, real estate opportunity, या फिर अगर आप देख रहे हैं कोई alternative investment plan और कोई चाहिए जो आपकी मदद कर सके इन सब चीज में, जो कि आपके लिए ना आपके goals के according कोई personalized financial solution लेके आए, then my friend, you should reach out to My Time Equity, क्योंकि this team has been a very experienced one और उन्होंने काफी individuals और families की मदद की है to build a smarter financial strategy, चाहे वो portfolio management हो, real estate हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा कोई भी investment plan हो, जहां आप long term wealth plan कर रहे हो, retirement के लिए plan कर रहे हो, या फिर अपना investment जो है portfolios को grow करना चाह रहे हो, ठीक है? अगर आप इनको reach out करना चाह रहे हैं तो then you have to call them at 469-702-1272, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, which is mytimeequity.com.

देखिए मैं तो आप लोगों को अपना बना ही चुकी हूँ। मैं तो बिल्कुल आपसे ऐसे बात करती हूँ जैसे आप मेरे घर के ही हो, आप सब मुझे फैमिली ही मानते हो। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसिडर मी एज योर फैमिली मेम्बर, आप भी हमें अपना बना लीजिए, मुझे, बाकी आरजेस को, फ्रॉम द इंटायर फनेशिया टीम फ्रॉम 104.9 FM। और अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपको ना इजी फिनटेक्स के बारे में बता देना चाहती हूँ कि ये है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US, और ये आपको देते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपको लगता है कि you know, आपके बिजनेस में या फिर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा कुछ ऐसा पोटेंशियल है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो डू रीच आउट टू देम, क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड हैं, इफ़िशियंट हैं और आपको आपके फ्यूचर के लिए एकदम तैयार कर देते हैं। ठीक है, आप इनको कॉल कर सकते हैं 4699429888, या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं फॉर द डिटेल्स विच इज agfintechs.com। और बाय बाय बोलना चाहती हूँ विद दिस फाइनल सॉन्ग ऑफ द डे, बट टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, कल फिर आऊंगी इसी वक्त 12:30 से 2:30 बजे तक।

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
11: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
12: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
9: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
13: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभाल लेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hu Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Monday through Friday, 2:30 baje se 5 baje tak mera aur aapka saath rehta hai right here on 104.9 FM Fun Asia Radio. Aur 972-235-5555 ke through aap rehte hain mere saath connected. As always, har roz ki tarah aaj bhi bahut hi special episode aapke liye lekar aayi hu. Kyunki ji aaj है फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ और आप जानते हैं कि फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को आपके लिए लेकर आती हूं फूड जंक्शन 3 बजे से 4:30 बजे तक फूड जंक्शन लेके आऊंगी आपके लिए जहां हम बात करेंगे एक नए शहर की एक नई कंट्री एक नया शहर और कुछ खाना पीना उनके लोकल फेवरेट्स एज वेल एज हम एज अ टूरिस्ट जब वहां पे जाएं तो हमें क्या खाना चाहिए देयर लोकल फेवरेट्स एज वेल एज द देसी फेवरेट्स जिसके बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता बट दैट इज एवरीथिंग 3 o'clock ऑनवर्ड्स जो आज सुनहरी किरण पे आपके लिए आएगा फिलहाल आई एम गोइंग टू प्ले सम ब्यूटिफुल मेलोडीज फॉर यू बने रहिए मेरे साथ दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. आपने अपनी लीगैलिटीज के साथ डील करना है, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना है, पेपर वर्क, द निटी ग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, योर ओन फिजिकल एंड इमोशनल मेंटल हेल्थ. तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अटर्नी चाहिए जी, जो आपकी साइड पे हो, आपकी तरफ से केस फाइल करें, आपकी तरफ से इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. ना सिर्फ ये कि ही विल हेल्प यू फाइट योर केस, ही विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप ये केस जीत नहीं जाते. सो इट इज एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर यू इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. यू और एनीवन यू नो ऑफ नीड दैट काइंड ऑफ असिस्टेंस, प्लीज गिव अटर्नी उमर ख्वाजा अ कॉल. दैट नंबर इज 4693005046, 4693005046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज attorneyomar.com. आई हैव सम ब्यूटिफुल मेलोडीज लाइंड अप फॉर यू फॉर दिस फर्स्ट हाफ आवर. 3 बजे से 4:30 बजे तक लेकर आऊंगी आपके लिए फूड जंक्शन. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.

अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं एंड यू आर लुकिंग टू बाय, या फिर यू नो बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या फिर आप रिलोकेट हो रहे हैं DFW में, या फिर किसी को जानते हैं जो कि DFW में रिलोकेट होने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किससे इन टच होना है, बिकॉज शी इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक यू आर हर फैमिली. दिस इज नवनीता केमका विद केलर विलियम्स रियल्टी. गाइड करेंगी आपको एवरी स्टेप ऑफ द वे पे, पर्सनलाइज सर्विस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड जेन्युइन केयर. एंड आई कैन से दैट बिकॉज आई नो हर पर्सनली. शी इज आवर वेरी ओन नवनीता. और हर घर की एक कहानी है एंड शी विल हेल्प यू फाइंड योर ओन. सो कॉन्टैक्ट नवनीता केमका विद केलर विलियम रियल्टी आज ही फॉर ऑल योर क्वेश्चन. दैट नंबर इज 347-449-4242. 347-449-4242 है उनका नंबर.

राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में साजिद वाजिद का म्यूजिक, गुलजार साहब के लिरिक्स, दिस वाज सुरीली अखियों वाले। और अब जी आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म थी वीर जिसमें सलमान खान हमें नजर आए। आगे बढ़ रहे हैं जी, अगला गाना आपके लिए एक बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम द मूवी बर्फी लाइंड अप है मेरे पास। याद रखिए 3 बजे से लेके 4:30 तक आज हम करेंगे फूड जंक्शन, क्योंकि आज है फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आई ब्रिंग यू अ न्यू सिटी From a new country, और उसको हम करते हैं explore as a tourist। जब हम वहां जाते हैं तो हमें क्या खाना है, वो सारी बातें और भी बहुत कुछ आपके लिए है lined up।

अगर आप H-1B या फिर F-1 या फिर L-1 वीज़ा पे हैं और यू हैव एनी अदर नॉन इमिग्रेशन वीज़ा स्टेटस एंड यू आर प्लानिंग टू यू नो योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज द राइट चॉइस फॉर यू. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एज वेल एज US सिटीजनशिप. कोई भी आपका सवाल है, स्पेशली अगर आप EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं और एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द वीजा प्रोग्राम्स, देन सीमा मेहता लॉ फर्म को आप ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल एंड देयर टीम विल गेट बैक टू यू. दैट ईमेल ID is info@seemamehtalawfirm.com. That is SEEMAMEHTA. SEEMAMEHTALAWFIRM.com. Once again, that email ID in whole is info@seemamehtalawfirm.com.

द फूड कैपिटल ऑफ एशिया. गलती से मेरा ख्याल है कि मैंने चाइना बोल दिया था, तो प्लीज करेक्शन फ्रॉम माई साइड. दिस इज सिंगापुर इज कंसिडर्ड एज द फूड कैपिटल ऑफ एशिया. कवर कर रहे हैं हम सिंगापुर को, और आज लेके गई हूँ आपको सिंगापुर की जर्नी में. तो जी, टुडे एट इन फूड जंक्शन राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड कैपिटल ऑफ एशिया सिंगापुर. क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर्स हॉकर कल्चर वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2020. जी हाँ, ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फन फैक्ट है, बिकॉज वी आर इन सिंगापुर टुडे. दिस रिकग्निशन वॉजंट जस्ट फॉर फूड इटसेल्फ, बल्कि इट्स सेलिब्रेटेड द यूनिक ट्रेडिशन ऑफ हॉकर सेंटर्स, जहाँ लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मिलते हैं टू एंजॉय अफोर्डेबल ऑथेंटिक मील्स. These vibrant food hubs preserve general or generations old family recipes, showcase karte hain Singapore ke multicultural heritage ko, and serve as important community gathering places. Aaj wahan Singapore mein more than 100 hawkers centers hain across Singapore, offering everything from Hainanese chicken rice and laksa to satay and local desserts. Aur kuch hawker stalls to aise hain ki even Michelin star hawker stalls hain. That will be very interesting to see ki Michelin star hawker stall kaisa hoga. To ji, ye hai aapke liye ek bahut hi interesting baat about the hawker culture in Singapore. So when we come back after this, I will tell you the must try local dishes of Singapore. Stay tuned.

All right, this part of our show is brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms in the U.S., offering innovative financial services with untapped potential. Both individual हों आप या अपने business के लिए चाहते हों उनकी help, AG FinTechs is here to help you in any regard. They are trusted, efficient, and they get you ready for your future. Give them a call if you have any question. That number is 469-942-9888. 469-942-9888 is the number, or you can visit the website, which is agfintechs.com. And the news and opinions expressed in these live announcements, as well as the interviews that we do here on our shows, are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ. ये हुआ आपके लिए जी, अपनी फाइनेंसेस संभालेंगे तो ट्रैवल भी कर पाएंगे. तो इसीलिए पहले मैंने कहा कि जरा फाइनेंसेस आपको संभालने का तरीका बता दूं. एजी फिनटेक से कांटेक्ट कर लीजिए. और अब हम दाखिल हो रहे हैं द मस्ट ट्राई लोकल डिशेस ऑफ सिंगापुर. उससे पहले थैंक यू सो मच सिंह साहब आपकी कॉल का. सिंह साहब हैज बिन टू सिंगापुर एंड ही इज डेफिनेटली यू नो सेइंग के बहुत ज्यादा मल्टी कल्चरल है. दैट्स व्हाट ही वी वर यू नो ही वाज रीआइटरेटिंग के देसी डिशेस बहुत साउथ एशियन खाना भी बहुत है वहां पे. क्लिनलीनेस इज आउटस्टैंडिंग. हॉकर कल्चर इज एब्सोल्युटली एज आई वाज टेलिंग यू के हॉकर कल्चर वहां का वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है. वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी क्लीन एंड वेरी डिलिशियस. सो थैंक यू फॉर योर कॉल. अगर आप में से कोई सिंगापुर गया है तो प्लीज मुझे कॉल करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. और अगर आपका एक्सपीरियंस मेरी यू नो जरूर शेयर कीजिए. और जितने एक्सपीरियंसेस आपके शेयर होते जाएंगे वो सारे नाम में नोट करती जाऊंगी और फिर दूंगी आपको फूडिस्तान की तरफ से एक गिव अवे. एक लकी विनर को मिलेगा जी फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, जो कि एक अपस्केल रेस्टोरेंट है, लोकेटेड है फूडिस्तान के अंदर. सो कॉल्स आती रहनी चाहिए थ्रू आउट द शो और उसके बाद एंडिंग में होगा विनर का फैसला. सिंह साहब आप भी इसमें शामिल हो चुके हैं. सो अगर आप विनर हुए तो मैं आपसे आपका नंबर जरूर मांगूंगी. स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ.

जी हाँ, फोन कॉल्स आपकी आ रही हैं. तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस कि आप 1988 में ही वॉज देयर विद हिज फ्रेंड्स एंड दे वर वॉकिंग ऑन द ऑर्चर्ड स्ट्रीट और प्रॉबेबली दे हैड सम ट्रैश इन देयर हैंड एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू थ्रो इट ऑन द स्ट्रीट क्योंकि सफाई इतनी ज्यादा थी कि उसको हर किस फेंकने का दिल भी नहीं था. और जब इतने साफ जगह पे आप कहीं जाते हो तो ऑफकोर्स यू नो यू जस्ट वो कहते हैं ना इंसान अपने माहौल के रंग में रंग जाता है. तो सिंगापुर जाए तो उसी माहौल के रंग में रंग जाएंगे. अच्छा जी, मस्ट ट्राई लोकल डिशेस ऑफ सिंगापुर में सबसे पहला नाम आता है चिली क्रैब का. दिस इज द सिंगापुर्स सिग्नेचर सी फूड. नो विजिट टू सिंगापुर इज कंप्लीट विदाउट ट्राइंग द वर्ल्ड फेमस चिली क्रैब. इसको कहा जाता है ऑफन जी द किंग ऑफ सिंगापुरियन कुजीन. फ्रेश मड क्रैब को कुक किया जाता है रिच थिक सॉस में विद टमेटोज, चिली, गार्लिक एंड अ हिंट ऑफ स्वीटनेस, क्रिएटिंग द परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसी, स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर्स. और ये डिश इज ट्रेडिशनली सर्व्ड विद सॉफ्ट फ्लफी मैंटो बंस, परफेक्ट फॉर सोकिंग अप. मतलब सूप में आप बंस सोक कीजिए और उसके बाद आप उसको पीजिए. सो ट्रस्ट मी, यू विल प्रोबेबली you know, it can be a little messy, but that's okay. Every single bit of that mess is absolutely worth it. इसी के साथ एक और डिश जो के बहुत ज्यादा लोकल फेवरेट्स में नंबर टू पे आती है, या आप कह लीजिए इनमें कोई नंबर वन नंबर टू नहीं है बट टॉप फाइव डिशेस मैं आपको बता रही हूं, इज द हिनेनीज चिकन राइस. इसको कहते हैं सिंगापुर की नेशनल डिश. लेकिन सिंगापुर की इस नेशनल डिश के बारे में हम चर्चा करेंगे इस गाने और ब्रेक के उस पर.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights be.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
4: Ye tera ghar, ye mera ghar.
5: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
6: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
5: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
7: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Not just that, from July 3rd to 5th, Tandoori Flame celebrates Red, White and Spice Festival. Free mocktail with every entree purchase. And kids under 10 get free ice cream, dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 a.m. लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
15: समझ नहीं आ रही, टिकट लूं तो कहां से लूं?
16: इट्स लॉसन।
15: किससे बात करूं, सारी जानकारी कौन देगा?
16: इट्स लॉसन।
15: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
17: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. The travel experts, Lawson Travel.
18: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
19: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
20: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
21: In one moment, an accident can change everything.
16: When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
21: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
22: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Funasia Radio.
23: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Funasia 104.9 FM.

जी हाँ, हवा हवाई से सीधा वापस आ रहे हैं और सिंगापुर की बात हो रही है आज. आप सबकी फोन कॉल्स भी साथ साथ आ रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल्स एंड फॉर शेयरिंग योर सिंगापुर एक्सपीरियंस विद मी. डीनू जोशी, डीनू थैंक यू सो मच आपकी फोन कॉल का, फॉर ऑल योर एक्सपीरियंसेस. 1983 में डीनू वॉज देयर, ही स्टेड देयर फॉर अबाउट 5 ईयर्स. और ना सिर्फ ये कि उन्होंने वहाँ का खाना ऑफकोर्स मुझे बताया कि क्या क्या खाते थे और कितना वो था, और इसी तरह का कल्चर, द क्लिनलीनेस, द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, द पोलाइटनेस, द मैनरिज्म, एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. दैट्स वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट. अच्छा जी, ये तो हुई आपके लिए ये बात. एंड लेट अस गो बैक जहां से हमने इस गाने की तरफ गए थे कि मैं आपको बता रही थी द मस्ट ट्राई लोकल डिशेज इन सिंगापुर. बात की थी हमने चिली क्रैप की, जो कि मस्ट ट्राई है. आप चाइना सिंगापुर जाएं तो आप बिल्कुल हर किस वापस नहीं आ सकते चिली क्रैप ट्राई किए बगैर, अगर आप नॉन वेज हैं तो. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑफकोर्स देर इज नो थिंग इन दैट. अच्छा जी, एक और डिश जो कि सिंगापुर की नेशनल डिश मानी जाती है, विच इज अ मस्ट ट्राई, इज हाइनानीज चिकन राइस, ऑफन रिगार्डेड एज सिंगापुर्स नेशनल डिश. हनेनीज, अगर मैं ये गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो जी मुझे प्लीज करेक्ट कर दें, ये मुझे चीनी जापानी आती नहीं है. सो हनेनीज चिकन राइस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ सिंपल इन्ग्रीडियंट्स कैन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर्स. Originally brought in by Chinese immigrants from Hainan Island, ये iconic dish feature करती है tender poached chicken served with fragrant rice cooked in rich chicken stock, garlic और साथ ही साथ ginger. और इसको serve किया जाता है तीन signature condiments के साथ, spicy chili sauce, फ्रेश जिंजर पेस्ट और साथ ही साथ डार्क सोया सॉस, ताकि आप अपने बाइट को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकें. और सिंप्लिसिटी तो देखिए, मैंने आपको बता दिया किस तरह बनती है ये डिश, लेकिन डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी, अचीविंग द परफेक्ट बैलेंस ऑफ जूसी चिकन, एरोमेटिक राइस और साथ ही साथ फ्लेवरफुल सॉसेस इज कंसिडर्ड एन आर्ट. और हर बंदा इसको बेहतरीन नहीं बना सकता. सो इट इज अ फेवरेट अमंगस्ट लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट एंड कैन बी एंजॉयड फॉर ब्रेकफेस्ट, लंच और डिनर. तो सिंपल जो अपेयरेंस है इसकी, इसको आप बिल्कुल फूल मत होइएगा और ये मत सोचिएगा कि जी इसको स्किप किया जा सकता है. नो, यू मस्ट ट्राई, इट्स अ मस्ट ट्राई डिश विच इज ऑफ कोर्स सिंगापुर नेशनल डिश. द नेक्स्ट डिश दैट इज अ मस्ट ट्राई ऑन द लिस्ट व्हेन यू आर इन सिंगापुर एज अ टूरिस्ट इज लक्सा. लक्सा इज सिंगापुर्स मोस्ट आइकॉनिक कम्फर्ट फूड. और ये जी पुरानकन कुजीन से इंस्पायर हुआ है ये, एंड इट हैज बीन लव्ड ऑल अक्रॉस द कम्युनिटीज. रिच एरोमेटिक नूडल सूप है जो कि परफेक्टली ब्लेंड किया जाता है चाइनीज नूडल ट्रेडिशन एंड माले स्पाइस इन्फ्लुएंस के साथ. द बेस इज क्रीमी कोकोनट मिल्क करी broth infused with chili paste, dried shrimp and saath hi saath spices, and this creates a bold balance of heat, sweetness as well as umami. Thick rice noodles soak up the flavorful soup. Saath hi saath toppings mein prawn, fish cake ya phir boiled egg jo hai wo texture ko ek naya kisam ka feel dete hain, and every bite is like heavenly. Every spoonful feels indulgent yet comforting. So if Hainanese chicken is comfort in simplicity, then laksa is comfort with a spicy kick. Ek bowl aur aap instantly kehne wale kehte hain ki you have that bowl and you will be a fan forever. Ugly, most necessary dishes of Singapore mein baat karenge saate ki, but that after this song.

0: बहुत यादें थी, पर अब बस वो लम्हा याद आता है जब वो जा रही थी।
1: मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सिमरन तुझे किस करे। यू नो आई जस्ट लव व्हेन दो लड़कियां

साटे सिंगापुर्स स्मोकी स्ट्रीट फेवरेट कंसिडर किया जाता है द मस्ट हैव डिशेस इन सिंगापुर के सेगमेंट में हम इस वक्त हैं राइट हियर ऑन फूड जंक्शन विद सुनहरी किरण. अच्छा जी, साटे इज वन ऑफ सिंगापुर्स मोस्ट बिलवड इवनिंग स्ट्रीट फूड्स. सिंपल, सोशल एंड फुल ऑफ स्मोकी फ्लेवर्स. It features skewers of marinated chicken hua, beef hua, lamb hua, grilled over open charcoal until slightly charred and juicy. And what makes this unforgettable is the rich peanut sauce, jo ke iske saath serve ki jaati hai. Creamy, slightly sweet, gently spiced, matlab perfect balance of everything. Aur saath hi saath fresh cucumber slices or rice cakes add kiye jate hain and you get the perfect balance of texture as well as taste in every bite. Aur shaam mein ye jo experience hai ye aur bhi zyada special ho jata hai because the aroma of grilling meat fills the air and entire street comes alive with food, laughter and gathering crowds. So ji, as the sun sets in Singapore, follow the smoky aroma, kyunki ye hoga definitely, this smoky aroma will call you towards some satay cooking somewhere. Aur isi ke saath हम जो हैं वो अगली मस्ट हैव डिश की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज स्मोकी वोक परफेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड चार क्वे थियो. दिस इज वन ऑफ सिंगापुर्स मोस्ट अडिक्टिव हॉकर क्लासिक और इट इज मेड विद फ्लैट राइस नूडल्स stir fried over high heat with prawns, Chinese sausages, eggs, bean sprouts as well as soy sauce. Or what truly defines this dish is the legendary woki, yani ke that smoky, slightly charred aroma and flavor jo ke aata hai only from expert stir frying in a blazing hot wok. Matlab wo jaise hum usme reelon mein dekhte hain ya dramon mein dekhte the jab Chinese bade bade chef ya Singaporean ya koi bhi bade bade jo chefs डिशेस में खाना बना रहे होते हैं और स्पीड से उनका हाथ चल रहा होता है, शायद वैसे ही स्पीड से उनका हाथ चलता होगा और इसी तरह बनते होंगे ये खाने. सो ये कोई फैंसी डिश नहीं है लेकिन दिस इज बोल्ड स्ट्रीट साइड कैरेक्टर इन डीप कंफर्ट फूड सेटिस्फैक्शन. तो एक प्लेट ऑफ चार क्वेटियो और आप समझ जाएंगे कि सिंगापुर का जो हॉकर फूड है वो क्यों वर्ल्ड फेमस है. So next time you are in Singapore, you must have a try of any one of these dishes. Yeah, sari hi try kar lijiye. Abhi mere khale list mein ek dish aur maujood hai, lekin wo baat karenge is gaane ki.

और जी, फूडिस्तान की तरफ से आपके लिए जो गिव अवे लेके आई थी, सबसे पहले तो आपको बताएं कि फ्रेश ग्रोसरीज आपको चाहिए, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस और अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट फूडिस्तान इन ऑबरी. और फूडिस्तान आपको प्राइस मैच की गारंटी देता है. दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles. और आपसे मैं आपके सिंगापुरियन एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ रही थी, इफ यू हैव बीन टू सिंगापुर. और विनर अनाउंस करने का टाइम आ चुका है. डीनू जोशी, डीनू कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, विच इज एन अपस्केल रेस्टोरेंट लोकेटेड इन साइड फूडिस्तान इन ऑबरी. सो आपका नाम और नंबर हम वहां पहुंचा देंगे. 2 दिन दीजिए हमें एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days to go to Foodistan in Aubrey at the Vibe Restaurant, D Vibe Restaurant, and avail your free item. और आप तमाम लोग जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी शेयर करने का. It made me feel that I am actually sitting in Singapore and I think I am more and more inclined कि अगली छुट्टी जो है उसमें सिंगापुर को लिस्ट में ऊपर डेफिनेटली डाल लेना चाहिए. तो इसके साथ आपको बताऊं जी कि बात हो रही थी आपसे कि कौन सा आखिरी एक डिश रह गई है जो खानी ज़रूरी है सिंगापुर जाके, एंड दैट इज़ नासी लिमक. अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो काइंडली कॉल मी एंड फिक्स दैट प्रोनाउंसिएशन फॉर मी. नासी लिमक इज़ वन ऑफ सिंगापुर्स मोस्ट लव्ड एंड कम्फर्टिंग माले डिश. ये कहते हैं जी इसको कम्फर्ट फीस्ट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेग्रेंट एंड इट्स हार्ट इज़ फ्रेग्रेंट कोकोनट राइस cooked with pandan leaves that gives in a subtle aromatic sweetness. और इस डिश को truly special क्या बनाता है? Perfect mix of sides, जैसे जो एक साथ एक प्लेट के ऊपर जमा की जाती हैं, जैसे कि spicy sambal, crispy fried chicken या फिर fish, crunchy peanuts, salty anchovies, as well as boiled या फिर fried egg. और कुछ versions में cucumber भी, खीरा भी शामिल किया जाता है. And every bite, ऑफ कोर्स जब इतना सब कुछ होगा तो फिर सोच लीजिए आप, हर बाइट जो है वो फ्लेवर से भरा हुआ होगा. क्रीमी, स्पाइसी, सॉल्टी, क्रंची, मतलब everything in one bite and it'll be a burst of flavors in your mouth. So from breakfast tables to late night cravings, nasi lemak is the kind of dish that feels like home no matter where you are in Singapore. Ye thi the must try dishes in Singapore the next time you plan to visit there. Aur ab jab hum is gaane se wapas aayenge to main aapko bataungi the hawker's center, yani ki the heart of Singapore's food culture, उसके बारे में करेंगे थोड़ी सी चर्चा. बनी रहिए मेरे साथ. I still have a lot of great information lined up for you.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
7: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
6: Kahan?
8: Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
7: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
9: I've been researching retirement planning.
10: Oh, really? Where?
9: Google, YouTube, a guy on TikTok.
10: Or you could just talk to WealthTactic.
9: What's the difference?
10: They create a real retirement strategy, not just investments, but a plan for when your income stops.
11: WealthTactic, because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ.
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ.
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ.
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
15: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
17: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
18: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
19: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
20: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
21: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
22: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
23: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
22: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
24: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
0: वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
24: मैं हीरो।
25: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
26: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
25: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
26: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
27: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
28: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
27: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
28: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
27: सच में सब संभाल लेंगे?
28: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. चल रहा है सिलसिला फूड जंक्शन में. अभी 10 मिनट और है मेरे पास आपके साथ, जहां मैं बात करूंगी आपके साथ. आज हम शेयर कर रहे हैं द फूड डेस्टिनेशन, द यू नो द फूड डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, स्पेशली एशिया का जो नंबर वन फूड डेस्टिनेशन है, दैट इज सिंगापुर. और उनके हॉकर प्रोग्राम, हॉकर सेंटर्स के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, यूनेस्को ने भी उन्हें रेट किया है. और बताने वाली थी आपको कि कुछ ऐसे हॉकर सेंटर्स दैट नेक्स्ट टाइम यू आर इन सिंगापुर यू मस्ट गो एंड ट्राई देम. कि जानिए तो सही कि आखिर उनके हॉकर सेंटर्स में ऐसा क्या है कि उसे इतना ज़्यादा वाइडली रिगार्ड किया जाता है. तो जी, द टॉप हॉकर सेंटर्स इन सिंगापुर में जिन लिस्ट आती है उसमें सबसे पहला नाम है मैक्सवेल फूड सेंटर का. This is a must visit spot for classic local flavors. ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे famous जो dishes मिलती हैं वो है जी, सबसे पहले है नैनीज chicken rice, local desserts जैसे कि शिंदौल as well as ice kacang, या फिर fresh food juices, fruit juices. Maxwell is where simplicity meets perfection. और हर stall यहाँ पे कहा जाता है कि एक hidden gem है. हर stall में मिलेगा आपको कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ, कुछ outstanding. इसी के साथ अनदर स्टॉप विच इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉकर सेंटर इन सिंगापुर इज लोपासाट, विच इज LAUPASAT, वन ऑफ सिंगापुर्स मोस्ट आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक फूड मार्केट्स, नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल विक्टोरियन आर्किटेक्चर, नोन फॉर फेमस साटे स्ट्रीट इन द इवनिंग, जहां पे साटे के अरोमा से पूरा माहौल यमी हो जाता है. सी फूड डिशेज एज वेल एज लेट नाइट डाइनिंग अंडर द सिटी लाइट्स. और जब रात होती है तो लोपासाट टर्न्स इनटू अ ग्लोइंग फूड पैराडाइज राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी. इसी के साथ अनदर लोकल फेवरेट इज ओल्ड एयरपोर्ट रोड फूड सेंटर. इट इज नोन फॉर इट्स कंसिस्टेंसी एंड लेजेंडरी हॉकर स्टॉल्स. चार काउटियो या फिर लक्सा या फिर फ्राइड होकियन मी, ये डिशेज वहाँ की बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फ्लेवरफुल हैं. एंड दिस इज़ वेयर लोकल्स गो. ये जो स्पेशल बात होती है, जहाँ लोकल्स जाते हैं ना, वहाँ एक चक्कर ज़रूर लगा लेना चाहिए. दिस इज़ वेयर लोकल्स गो व्हेन दे वांट द रियल टेस्ट ऑफ सिंगापुर. नो फ्रिल्स, no you know drama and all that stuff, ki ye kar lo wo kar lo, just authentic flavors. So in Singapore, hawker centers are more than just places to eat. They are the heartbeat of everyday's life, jahan pe culture, community aur cuisine comes together on one plate.

सिंगापुर का कैफे कल्चर, अब हम इसकी बात करने वाले हैं. तो दिस इज़ वेयर यू नो कॉफ़ी मीट्स लाइफस्टाइल, और बहुत पॉपुलर हो रहा है ये कैफे कल्चर इन सिंगापुर, एंड इट हैज़ ग्रोन इनटू अ वाइब्रेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न सिटी लाइफ, ब्लेंडिंग ग्लोबल कॉफ़ी ट्रेंड्स विद लोकल क्रिएटिविटी, और साथ ही साथ बियॉन्ड यू नो आप कह लीजिए हॉकर फूड एंड फाइन डाइनिंग, कैफेज हेयर आर सोशल स्पेसेस जहाँ लोग मिलते हैं, दे वर्क, दे रिलैक्स, दे मीट फ्रेंड्स एंड एन्जॉय ब्यूटिफुली क्राफ्टेड फूड्स एज वेल एज ड्रिंक्स. एंड वॉट मेक्स दिस कैफे सीन स्पेशल इज attention to details, from specialty brews and single origin coffee beans to you know pastries as well as Instagram worthy interiors. Whether you are in a quiet neighborhood ya phir aap kisi bustling district mein maujood hain, there is always a cafe nearby offering a unique experience. Ye sab padh ke dekhiye, mera ab tak Singapore ka chakkar to laga nahi hai, lekin ye sab padh ke mujhe aisa lag raha hai ki mujhe wahan khana khane ka bahut maza aane wala hai. Bahut sari options hai, dil kiya coffee pee li, dil kiya hawkers स्ट्रीट पे चले गए, दिल किया तो फाइन डाइनिंग कर ली, मिशेलिन स्टार भी खा लिया, मतलब सब कुछ ही आपको यहाँ पे मिल रहा है. और हर तरह की कुजीन है, मतलब ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि एक ही कुजीन है तो ओहो अब क्या खाएंगे. सो दिस इज साउंडिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. और बेस्ट कैफेज इन सिंगापुर में चंद एक नाम मैं आपको बताती चलती हूँ जो कि रिव्यूज में बार बार आ रहे हैं. एक डिस्क्लेमर आपको दे दूंगी, ये हैं बेस्ट कैफेज के नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, बट द रिव्यूज दैट आई हैव गॉन थ्रू फॉर द रिसर्च पर्पसेस इज व्हाट इज ब्रिंगिंग दीज names over and over again. एक local favorite जो सिंगापुर के मॉडर्न कैफे सीन को शेप करता है, उसमें नाम आता है जी टियोंग बाहरू बेकरी का. This is known for its buttery, flaky croissants, freshly baked pastries, और साथ ही साथ इनका जो light brunch menu है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और quality coffee. इसी के साथ एक और cafe जो बहुत ज़्यादा reviews में नज़र आता है वो है Common Man Coffee Roaster. This is a must visit for serious coffee lovers because it is known for specialty expertly roasted coffee, strong espresso based drinks, और साथ ही साथ all day brunch menu. और मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैफे वाइब्स तो हैं ही इसकी. दिस इज वेयर कॉफी इज इन जस्ट अ ड्रिंक, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट इज ब्रूड टू परफेक्शन. एंड अनदर कैफे दैट कम्स अप अगेन एंड अगेन इज पीएस कैफे. दिस इज एलिगेंट, स्टाइलिश एंड परफेक्ट फॉर इंडल्जेंस. तो जी इट इज नोन फॉर यू नो डिजर्ट्स, बहुत ही ज्यादा यहाँ की डिजर्ट्स पॉपुलर हैं. दिस इज पीएस कैफे की, और इसके साथ ब्यूटिफुल अपस्केल इंटीरियर्स हैं, ब्रंच एंड कम्फर्ट फूड क्लासिक्स हैं, और साथ ही साथ रिलैक्स्ड एनवायरमेंट है. सो दिस इज बेसिकली द कैफे कल्चर ऑफ सिंगापुर. तो अगर आपको कैफेज बहुत ज़्यादा पसंद हैं, यू वांट स्पॉट्स वेयर यू कैन सिट एंड यू कैन वर्क, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग पे हैं या अपने बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, बैठना है आपने, बस ऐसी चिल करना है, थोड़ा कॉफ़ी पी लें, तो दिस इज़ वेयर यू नो you can go. So from cozy neighborhood bakeries to chic specialty coffee spots, Singapore ka jo cafe culture hai is a perfect blend of flavor, style as well as lifestyle, proving that in this city even a simple cup of coffee can tell a big story.

0: जी हाँ जी, आपके सिंगापुर के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मैं हूँ ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड, और बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आ भी चुके हैं जो अपने सिंगापुर के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. एंड दिस इज नाउ टाइम लकीली दैट आई कैन टेक वन ऑफ द कॉलर्स ऑन एयर. लेट्स सी हु दैट इज. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: Hi, my name is Janak, Janak Champaneri.
0: Ji Janak, bataiye, what would you like to tell us?
1: जहाँ हम सिंगापुर की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सिंगापुर में हम शायद 2023 के आसपास गए थे, और वहाँ पे मिस्टर कोकोनट करके एक फ्रेंचाइज है.
0: जी.
1: बहुत ही बढ़िया कोकोनट की ड्रिंक्स और कोकोनट की वैरायटीज मिलती है. वैसी ड्रिंक्स हमने आज तक कहीं भी नहीं ट्राई की, और मिलती भी नहीं होगी शायद, क्योंकि एकदम नेचुरल 100% कोकोनट, जो यंग कोकोनट की क्रीम होती है वो, उससे वो लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हैं. शायद आप ऑनलाइन भी देख सकते हो.
0: वाओ, इट साउंड्स सो
1: बहुत ही बढ़िया. हाँ. और हम सेंटोस आइलैंड गए थे, वहां पे हमने वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, और फिर उसके बाद 2 से 3 बार हमने डाउनटाउन से ट्राई किया और अलग अलग जगह पे ट्राई किया, क्योंकि बहुत ही बढ़िया था.
0: ओके.
1: दूसरी एक चीज हमने नोटिस की कि वहाँ पे जो चाय है ना, हमारे इंडियन चाय बोलते
0: जी,
1: वो उबाल के देते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने 2 से 3 जगह पे ट्राई किया, वो लोग कुछ गर्म पानी में कुछ मसाला डाल के उसे चाय बोलते हैं. तो वो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा
0: जी.
1: जो हमारे यहाँ, और नॉट ओनली हमारे इंडिया में लेकिन यहाँ भी, कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो लोग ना चाय पत्ती डाल के, दूध डाल के उबालते हैं. वहाँ पे कोई दूसरा ही कुछ चल रहा है
0: जी.
1: वो हमें कुछ नोटिस किया वहाँ पे.
0: तो आपने जो है वो देसी रेस्टोरेंट पे जाके भी चाय पी, और वो भी ऐसे ही बनाते हैं कि ये सिर्फ?
1: हाँ, वो लोग, हाँ, वो लोग ऐसे ही बनाते हैं.
0: अच्छा, देसी रेस्टोरेंट्स भी ऐसे ही बनाते हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. ओके, ऑलराइट. कुछ और शेयर करेंगे आप अपने सिंगापुर एक्सपीरियंस के बारे में?
1: वेल, हमने कुछ दिन स्पेंड किए थे क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे ही रहता है. तो डाउनटाउन बहुत ही बढ़िया जगह है, और सबसे अच्छा हमने कोकोनट बहुत सारे पिए वहाँ पे, फ्रेश कोकोनट, बड़े बड़े कोकोनट होते हैं. 2 जन भी पी ले तो भी कुछ पानी बच जाए, इतने बड़े बड़े होते हैं.
0: इंटरेस्टिंग.
1: तो बहुत ही फ्रेश कोकोनट.
0: परफेक्ट.
1: और कोकोनट बहुत ही बढ़िया मिलते हैं वहाँ पे. फ्रूट्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे मिलते
0: हैं.
1: और दूसरा एक चीज हमने नोटिस किया कि ऑरेंजेस जो होते हैं ना, उसके जगह जगह पे ना वेंडिंग मशीन्स होते हैं.
0: ओके.
1: इवन नॉर्मल रोड पे भी, और आप जैसे $2 से आप जैसे प्रेस करोगे तो फ्रेश ऑरेंज छिलेगी आपके सामने, और आपके सामने पैक होके बाहर निकलेगा वो एकदम फ्रेश जूस.
0: वाह, क्या बात.
1: वो भी हमने कुछ नोटिस किया, वो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इवन US में भी.
0: Absolutely. Janak, thank you so much aapki phone call ka, and that was really informative and so apt with the theme of the show. Thank you and stay connected. Sunte rahiye. Ye tha ji aapke liye live caller hamare jo apna experience bata rahe the Singapore ka. Maine aaj aapko bahut sari cheeze Singapore ke bare mein batayi. We covered a lot, but there is still a lot to cover. Jaise ki desserts jo ki must try hain Singapore ki, ya phir street food adventure, ya phir fine dining of Singapore, aur saath hi saath abhi baat karni बाकी है देसी फ्लेवर्स की, एज वेल एज अगर आप वेजिटेरियन लवर हैं तो आपको क्या करना है सिंगापुर में, और इसके साथ द हिडन जेम्स एंड द लोकल मार्केट्स. आई स्टिल हैव सो मच मोर दैट इज लाइंड अप अबाउट सिंगापुर फॉर यू, बट आज के शो का टाइम हुआ चाहता है खत्म, यानी कि फूड जंक्शन का. अभी मैं आपके साथ मौजूद हूं, लेकिन फूड जंक्शन का हमारा 3 से 4:30 का सेगमेंट हो चुका है खत्म. तो अभी इस गाने के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. अगले थर्सडे, यानी कि फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में आपके लिए फूड जंक्शन लेके आती हूँ. सो नेक्स्ट टाइम इन ऑगस्ट, द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, आई विल कम बैक विद यू ऑन फूड जंक्शन एंड वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग थिंग्स जो अभी हमने सिंगापुर के बारे में एक दूसरे से चर्चा करनी है. सो सुनते रहिए, दिस इज फूड जंक्शन राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, 3 till 4:30 PM एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. I bring that to you, and thank you so much all of you for participating and for sharing your stories. No.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशन, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
10: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
11: तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
10: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
12: बेटा, 95% आए?
13: हाँ मम्मी।
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
14: मेरा?
12: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
14: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
15: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
16: कितने आदमी थे?
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

104.9 FM पे इस वक्त आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 से 5 बजे तक मैं आपके साथ रहती हूं और मैं हूं किरण और आप लेके आई हूं आपके लिए एक बेहतरीन गिव अवे जिसका इंतजार 100% आपको होगा. सबसे पहले तो ये जी कि अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं, अच्छे गानों के फैन हैं, आप इस जोड़ी के फैन हैं या इनमें से किसी एक के भी फैन हैं, तो आ रही है ये जोड़ी आपके लिए. दिस इज विशाल एंड शेखर, द डियो बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, और लेके आ रहे हैं वो द सुपर हिट टूर टू डैलस. दिस विल बी हैपनिंग ऑन संडे जुलाई द 12th एट द कर्टिस कल्बल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स आपके लिए सेल पर मौजूद हैं cashpatelproductions.com पे, KASH cashpatelproductions.com पे लॉग ऑन कीजिए. गेट डोंट फॉरगेट टू गेट योर टिकट्स, दे आर सेलिंग फास्ट. ऑफ कोर्स इट इज विशाल शेखर, टिकट्स मुश्किल से ही मिलेंगी आपको, जल्दी जल्दी से खरीद लीजिए. और व्हाइल यू आर चेकिंग आउट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड FunAsia, FUNASIA to get your 30% discount. तो FunAsia के लिस्टनर हैं आप, इसीलिए आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा हमारा नाम यानी ये FunAsia का नाम या कोड इस्तेमाल करने पे. और अब ये मौका है आपके पास टू विन वन टिकट, एंड दिस टिकट कैन, यू कैन विन दिस टिकट बाय आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए विशाल शेखर का कॉन्सर्ट है तो कुछ उन्हीं से रिलेटेड बात आपसे पूछूंगी. अच्छा, अभी जो है वो विशाल और शेखर में से एक पर्सनालिटी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो आप मुझे बताइए कि जून, अच्छा चलिए ये छोड़ देते हैं हम, मुझे ये बताइए कि विशाल ददलानी की डेट ऑफ बर्थ क्या है. चलिए सिंपल कर देती हूँ सवाल को, विशाल ददलानी की डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए और जीत लीजिए ये गिव अवे. पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, अभी अभी की है उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

जी हाँ, द देसी गर्ल इज द हॉटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, ये एक ऐसा एंथम बनाया विशाल शेखर ने कि आई थिंक एवरी देसी गर्ल स्पेशली हु इज लिविंग आउटसाइड द देसी वर्ल्ड इज यू नो इन लव विद दिस सॉन्ग. तो जी, ऑल द देसी गर्ल्स आउट देयर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. ऑल द देसी मैन आउट देयर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. और सवाल आपसे पूछा था कि विशाल ददलानी की बर्थडे मुझे बताइए, अभी अभी उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है और आप सब ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर June 28th, 1973 है विशाल ददलानी की बर्थडे. अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की और ये सेलिब्रेशन बर्थडे उनकी थी. तोहफा आपको मिलेगा, ये फ्री टिकट जो जीता है वो है जी आज के हमारे लकी विनर, एंड दैट इज शिवम मुंदरा. शिवम कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. हमें जो है मैं आपका नाम और नंबर हम अपनी टीम के पास पहुंचा देंगे. प्लीज लुक आउट इफ यू रिसीव एनी ईमेल और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज ड्रॉप इन एन ईमेल एट radioadmin@funasia.net. radioadmin@funasia.net is where you are going to email if you have any questions. Congratulations. और आप तमाम लोग भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. फनेशिया इस तरह के बहुत सारे गिवअवेज आपके लिए लेकर आता है. All you have to do is stay tuned and stay connected. Once again, दिल से thank you. और वैसे अगर आपने अब तक टिकट्स नहीं खरीदे विशाल शेखर के कॉन्सर्ट के, तो वंस अगेन लेट मी रिपीट इट फॉर यू. cashpatelproductions.com इज वेयर यू कैन बाय द टिकट, एंड व्हेन यू यूज द प्रोमो कोड फनएशिया यू आर गोइंग टू गेट अ 30% डिस्काउंट बिकॉज यू आर अ स्पेशल फनएशिया लिसनर. द इवेंट हैपनिंग ऑन संडे जुलाई द 12th एट कर्टिस कलवल सेंटर.

कुछ खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं बैक टू बैक, कुछ विशाल ही के गाने आपके लिए, विशाल शेखर के गाने आपके लिए प्ले कर रही थी। और आज की एक ताज़ा खबर ये है आज की एक ताज़ा खबर ये है जी कि मैं आपके साथ 5 नहीं बल्कि 6 बजे तक यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहूँगी। मारविन की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसीलिए आज 6 बजे तक मैं और आप एक साथ राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून बल्कि योर ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मौजूद रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलूँ कि पैशन, देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी हेल्थ का, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर डॉक्टर को अपनी विजिट नहीं करते, एनुअल चेकअप्स नहीं कराते, तो आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ टू बी पैशनेट अबाउट इट एंड विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली। चेकअप कराइए अपना, ताकि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन अराइज हो रही है तो वक्त से पहले उसको पकड़ लिया जाए। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि डॉक्टर हमारी बात सुने और यू नो हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 5 मिनट 10 मिनट एंड द डॉक्टर इज इन एंड आउट एंड गॉन। बट नो, एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दैट इज नॉट द केस। एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स एग्जैक्ट। और आपकी यू नो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, द डॉक्टर ट्राइज टू टॉक टू यू, अंडरस्टैंड योर हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस विजिट। एंड बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू नो आपको फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, सिर्फ पेशेंट की तरह नहीं। सो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, पैशन हेल्थ केयर प्राइमरी केयर, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर सर्विंग यू ऑल। और खाली यही नहीं, पेशेंट ही नहीं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, और अगर आप ढूंढ रहे हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ग्रोइंग एंड दे आर ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यू। सो ज़रूर आप अपना रेज्यूमे सेंड कीजिए इस ईमेल आईडी पे, दैट ईमेल आईडी इज passionhealthphysicians@gmail.com. passionhealthphysicians@gmail.com is the ID where you can send your resume. And mazeed aapke paas koi information aapne is job ke bare mein puchni hai to aap unko text kar sakte hain at this number 217-454-4639. इस पे आप एज अ डॉक्टर, एज अ अगर आपको कोई जॉब वहाँ पे लेनी है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना टेक्स्ट कीजिए एंड दे विल गेट बैक टू यू। एज अ पेशेंट या एज somebody हु इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, आप लॉग ऑन कीजिए जी passionhealthphysicians.com पे, या फिर यू हैव एनी क्वेश्चन गिव देम अ कॉल एट दिस नंबर और टेक्स्ट देम एट दिस नंबर 214-666-6259 214-666-6259. This is Passion Health Primary Care. Your health is of course their passion. Make it your passion and let them make it theirs.

And while we are heading on to a short break, I will give you the weather update. कि आज का weather कहाँ stand कर रहा है जी. सबसे पहले तो आज है Thursday, July the 2nd. और studio में हो रहा है 4:57 PM. और इस वक्त city of Makini में है 93 degrees. However, it feels like 97 right now. दिन रहा mostly sunny with a 20% of chance of showers and thunderstorms here and there. कहीं कहीं कुछ बादल का सा समा था, but mostly it was sunny. और highs जो थे वो अब mid 90s तक जाएंगे, जबकि शाम रहेगी partly cloudy in the evening, then becoming mostly clear. A slight chance of showers in the evening as well. Humid होगा with lows in the mid 70s. आज का pollen count is देखिए पोलन काउंट आपको बताती चलूं 4.1, विच इज ऑफ कोर्स लो, बट ग्रास इज द ओनली थिंग दैट इज कॉजिंग पोलन राइट नाउ एट दिस मोमेंट, जबकि यूवी इंडेक्स इज 11, विच इज एक्सट्रीमली हाई. सो कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी इफ यू आर प्लानिंग टू बी आउटसाइड, कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड. सनराइज आज का हुआ 6:21 सुबह, 6:21 AM, जबकि आज का सनसेट होगा शाम 8:39 PM. वंस अगेन दैट इज 8:39 PM. This weather forecast is brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
9: तो पहनती क्यों नहीं हो?
8: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेजन टाइप.
9: तो रोज वाला ले लो.
10: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: इट्स लॉसन.
13: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
14: इट्स लॉसन.
13: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
15: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
16: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: Hello Texas Parivar. Kya aapko pata hai, there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
19: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
20: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
19: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
20: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
19: ये क्या होता?
20: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
20: मामू,
11: देखो क्या हो गया।
14: ओ क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
14: ओए जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
14: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
21: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
22: हाय, दिस इज माधवन एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय ऑफिशियल रेडियो स्टेशन फनेशिया रेडियो।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण आपके साथ. This is an extended version of your drive time with Sunehri Kiran. A very good evening to the listeners of Fun Asia Radio. Thank you. आज की शाम हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए. वैसे आप सुनते हैं 5 से 7 तक. मार्विन को आज यहाँ मौजूद नहीं है तबीयत की नासाजी की वजह से. सो मैं किरण आपके साथ 6 बजे तक मौजूद हूँ और लेके आई हूँ आपके लिए इस वक्त करेंसी अपडेट. US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी in the world. तो आपको बताते चले जी कि according to xrates.com इस वक्त यानी कि जुलाई 2nd थर्सडे 5:14 PM इन द स्टूडियो और यूरो ट्रेड कर रहा है 0.87 पे जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74. इंडियन रुपी 95.51 पे स्टैंड कर रहा है. कनेडियन डॉलर 1.41 पे स्टैंड कर रहा है जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.12 Pakistani rupees are trading for US dollar or Nepalese rupee 152.88 Nepalese rupee are trading for US dollar. Bangladeshi taka 123.28 pe is waqt stand kar raha hai with respect to US dollar. And is gaane ke baad jab hum wapas aayenge to I will give you the gold price update to finish up your currency updates or aap keh lijiye your finance updates right here with Sunehri Kiran.

और आपका इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एज वेल एज टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. एक्सप्लोर कीजिए स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन. कोई भी माइलस्टोन है आपका, किसी भी इवेंट के लिए आपको ज्वेलरी खरीदनी है, पीएमजे ज्वेल्स इज कमिंग टू फ्रिस्को फॉर यू. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा, पीएमजे इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस. विजिट कीजिए पीएमजे ज्वेल्स फ्रिस्को में, लोकेटेड है जी मेन स्ट्रीट पे, और देखिए कि पीएमजे की ज्वेलरी आपको क्या कहानी सुनाती है, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव देयर पीसेस. अब जो ज्वेलरी की बात हो रही है, तो मैं आपको सोने का भाव भी बताती चलूं कि गोल्ड प्राइसेस क्या हैं आज इस वक्त अकॉर्डिंग टू goldprice.org. और जी, गोल्ड प्राइस पर आउंस इस वक्त ट्रेड कर रहा है $4,124.49, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $132.61. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.81 का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $56.01 का इजाफा हुआ. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
6: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
5: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस cashback at closing. Ajay reviews each house thoroughly and shares all the pros and cons and negotiates the best price and builder incentives. Just visit ajayprabhu.com and see why people are raving about him.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
8: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com।
9: hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।

मैं हूं किरण, ये है 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो और आप सुन रहे हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस इवनिंग. एक घंटा यानी कि 6 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूं. उम्मीद करती हूं कि आपकी शाम का आगाज हो चुका है बहुत ही खूबसूरत. विद होप एंड प्रेयर दैट यू हैव अ लवली लवली इवनिंग. लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है बहुत सारे लोगों का. अगर कल आपकी छुट्टी है सो एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड. हैप्पी 4th of July टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय दिस टाइम विद योर family and friends. That is the best time जब 2-3 दिन मिल जाते हैं और हमें छुट्टी मिलती है and we have that time to spend with the people we care for the most.

0: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. और अब वक्त आ चला है जब मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूँ हमारे SBA लोन एक्सपर्ट सेगमेंट के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद पंजवानी जी. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं जी कि काफ़ी सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो है उनके जहन में ऑफकोर्स फाइनेंसिंग का आता है. तो हमारे साथ आज मौजूद हैं SBA लोन एक्सपर्ट, जो कि लोगों को बिजनेस परचेज, फ्रेंचाइज स्टार्टअप्स और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स जो है उसके बारे में कैसे डिसीजन आपने लेने हैं, हाउ टू मेक द राइट चॉइस. And Mr. Shahid Panjwani is here with us with SBA Loan Experts. So let's welcome him on the airwaves of Fanasia. Good evening, Shahid ji. How are you doing?
1: I'm doing great. Thanks for having me.
0: Thank you so much, Shahid ji, for always bringing this insight for the community. Please bataiye, Shahid ji, jo log naya business start karna chahte hain, whether they are looking to buy or to start in any capacity, unko loans, paise, finances kahan se available honge, and how can you, as SBA loan experts, help?
1: Buying and hamari desi community mein mainly, दो चीजें बहुत बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज होती है कि खुद का घर खरीदना है और सूनर और लेटर खुद का बिजनेस शुरू करना है, या तो फिर एक पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है. दिस इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ द माइंड एंड दैट्स वेयर वी कम इन द पिक्चर. इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट और बाय योर ओन बिजनेस, वी कैन हेल्प यू गेट द लोन विद एज लो एज 10% डाउन. सो SBA, जैसे हम हमेशा SBA के बारे में बात करते हैं, कल किसी ने फोन किया और ये बात के बारे में मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं था, जो कल सवाल आया कि व्हाट इज SBA. नॉट एवरीबॉडी नोज व्हाट इज SBA. SBA जो है ये स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी व्हिच हेल्प्स द बैंक्स. ये बैंक को सपोर्ट करती है कि किसी को बिजनेस शुरू या करने के लिए या खरीदने के लिए लोन चाहिए, देन दे काइंड ऑफ को साइन, दे काइंड ऑफ गारंटी द लोन. सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय, वी कैन हेल्प यू गेट द लोन विद एन SBA लोन एज लो एज 10% डाउन. फॉर एग्जाम्पल $500,000 का अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट है, तो ऑल यू नीड टू डू इज 50-50 का 10-12% डाउन होता है, $50,000-$55,000 डाउन दो और रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी लोन. एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो गिव यू एडिशनल वर्किंग कैपिटल आफ्टर यू बाय योर बिजनेस. आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो हम आपको एडिशनल $50,000-$60,000 वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं. तो एंड ऑफ द डे होता ही है कि आपने $50,000-$55,000 डाउन दिया, विच इज 10-12% ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 500 के, आपको बाकी के पैसे की लोन मिल गई. ऑन टॉप ऑफ दैट हमने आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो जो आपने डाउन दिया था दैट्स द मनी दैट केम बैक टू यू. बेसिकली अ वॉश आउट, आपने जीरो डाउन में बिजनेस खरीद लिया. सो एनीवन इन द मार्केट ट्राइंग टू बाय अ बिजनेस और ट्राइंग टू बाय अ फ्रेंचाइज और स्टार्ट अ फ्रेंचाइज, वी कैन हेल्प यू गेट द लोन वन ऑन वन कंसल्टेशन एंड ईच सिनेरियो इज डिफरेंट. कॉल अस, लेट्स फिगर आउट अ वे टू गेट योर बिजनेस स्टार्टेड.
0: That sounds like a plan. Shahid ji, please bataiye, what is the best way to get in touch with you?
1: 817-786-3338. 817-786-3338. This line directly comes to me.
0: And would you also recommend some websites?
1: TSBALoanExperts.com.
0: All right, there you go, TheSBALoanExperts.com or 817-786-3338. Shahid ji, is there anything else that you'd like to cover before we let you go?
1: One point I would like to add, SBA loan mein hum primarily specialize karte hai, but for some reason, if you do not qualify for SBA or maybe you don't want SBA, we also have non-SBA loans, which are also known as conventional loans.
0: Perfect. That was very helpful. Thank you so much for connecting with us this evening. We will talk to you next time.
1: Okay.

एंड इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. ट्रैफिक अपडेट देने से पहले मैं आपको ये बताऊं जी कि दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी उमर ख्वाजा. इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं आप, या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन बी ट्रिकी एज वेल एज स्ट्रेसफुल. Insurance companies, paperwork, legalities, the nitty-gritties of the situation, जो कि आधे से ज्यादा टाइम हमें मालूम भी नहीं होता कि क्या चल रहा है पीछे. सो आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए है जो आपकी तरफ से आपका केस लड़े, केस फाइल करे, they help you get the best compensation that you deserve. And that attorney is attorney Umar Khwaja. And the best part is कि आपको कुछ पे नहीं करना until you win the case. तो it is a win-win situation for you. जैसे कहते हैं ना कि इस stressful situation में एक राहत की खबर सुना रही हूं आपको. अटर्नी उमर ख्वाजा से कॉन्टैक्ट कीजिए इफ यू और समवन यू नो इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट. दैट नंबर इज 4693005046 इज द नंबर. और यू कैन विजिट द वेबसाइट विच इज अटर्नी उमर OMAR attorneyumar.com. एंड द गुड न्यूज राइट नाउ इज कि मुझे एक ही इंसिडेंट इस वक्त नजर आ रहा है आपके साथ शेयर करने के लिए ऑन द रोड्स ऑफ डैलस, एंड दैट इज ऑन 635 एट फ्रीपोर्ट पार्कवे वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन, दैट इज द एग्जिट लेन, is blocked. But that's all where your traffic is concerned. Pretty much everything else seems clear right now.

0: जीनी
1: हुकम मेरी आका,
0: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
1: मिराज लाउंज चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
0: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
1: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
0: और एंटरटेनमेंट,
1: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
0: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
1: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: अब पंजाबी आ गया।
8: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
17: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
18: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
17: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

0: And it is time now to connect you with our URA Debt Relief segment. हमारे साथ मौजूद हैं आज URA Debt Relief segment के organization के representative Mr. Aman, जो हमें बताएंगे कि URA आपको कैसे help कर सकता है to make the right choices which can really help you. Let's welcome him on the airwaves of Fanasia. Good evening, Aman ji. How are you doing?
1: Good evening, Fanasia. सुनने वाले सभी listeners को URA और Aman की तरफ से नमस्कार. So दोस्तों, महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने वो गलती आप ना दोहराइए जो पिछले महीने या पिछले कई महीनों से दोहराते आ रहे हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं. अच्छी बात है मिनिमम पेमेंट भरना अगर यूज किए हैं तो, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड उतारने के मोटिव से आप मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं तो वो कभी पूरा नहीं होगा मिनिमम पेमेंट से. अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाए, आधे से ज्यादा बिल्कुल वाइप्ड ऑफ कर दिया जाए, तो आप URA को कॉल कीजिए. URA आपके सारे क्रेडिट कार्ड की आधी किस्तें माफ करवा देगा और आधी आपकी पेमेंट्स इंटरेस्ट फ्री बना देगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, आपके पर्सनल लोन्स और या फिर गाड़ी जो रिपोजेस हो चुकी है या गाड़ी जो टोटल हो चुकी है, उन लोन्स को भी नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. तो कॉल कीजिए URA 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं 9167763555. सो मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार जरूर कॉल कीजिएगा 9167763555 और आप अपना कर्जा आधा माफ करवा सकते हैं, यानी डेट फ्री हो सकते हैं.
0: थैंक यू सो मच आज की शाम हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.

और अगर आप घर जा रहे हैं लेकिन खाना पकाने का आज बिल्कुल मूड नहीं है, या फिर कोई अचानक से किसी ने कॉल करके आपको कह दिया है कि आज हम साथ खाना खाएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि क्या करना है, खाना तो पकाने का मूड नहीं है लेकिन परोसना भी घर जैसा ही खाना है, तो फिर मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। इसका सोल्यूशन है जी तंदूरी फ्लेम, जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है। तमाम आपकी नॉर्थ इंडियन फेवरेट डिशेज जैसे कि सिजलिंग तंदूरी प्लाटर्स हैं, करीज, मतलब आउटस्टैंडिंग करीज, नान्स आपको फ्रेश हॉट मिलेंगे, मतलब आप जाइए ऑर्डर कीजिए, वहां बैठ के खाइए, घर ले आइए, केटरिंग करवाइए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तंदूरी फ्लेम पे पूरी होगी। और द बेस्ट पार्ट इज के जायका होगा बिल्कुल घर जैसा। दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड, सो डू नॉट मिस इट, डू चेक दम आउट।

एंड विद दैट इट इज अ रैप फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. आज पूरी 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रही. कल एक बार फिर प्रेजेंट होंगी यहीं पर राइट हियर ऑन द सेम चैनल 104.9 FM Fun Asia Radio आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण लेके 2:30 PM टिल 5 PM. और कल बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. इट इज फ्राइडे सो 3 PM टिल 4:30 PM आई विल ब्रिंग किड्स जंक्शन जहां आपकी कॉल्स ली जाएंगी लाइव और लेके आऊंगी आपके लिए कुछ गिव अवेज. सो बनी रहिए मेरे साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड हैव अ लवली लवली रेस्ट ऑफ योर डे एंड हैप्पी 4th of July.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
6: Ye set sirf shaadi ke liye theek hai. Ye wala bahut heavy hai. Aur ye kab pehna tha last time?
7: To pehenti kyun nahi ho?
6: Kaise pehnu? Ya to heavy ya fir special occasion type.
7: तो रोज वाला ले लो.
8: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
12: AG FinTax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
14: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
15: प्लान या होप?
14: मतलब है
15: प्लान, मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
14: ओके, तो मेरा वाला होप है.
15: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
14: क्यों?
15: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
11: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com.
16: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
17: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
16: वे एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वे टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
18: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Park. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
20: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो बहुत ही बढ़िया हैं। मैं एक दिन की छुट्टी के बाद वापस आ चुकी हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन? गाइज, यू आर ऑल लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फनीजा 104.9 FM। भाई, टेक्निकली इट इज़ नॉट एन इवनिंग इन डैलस येट, विच इज़ बेस इट इज़ एन इवनिंग इन डैलस, बट इट इज़ नॉट एन इवनिंग इन डैलस। ओके, दिस इज़ माई शो एन इवनिंग इन डैलस, विच स्टार्ट्स एट 7 o'clock। लेकिन आज मार्विन जी, जो आप बहुत बिंदास हो के रहते हैं हमेशा, मार्विन जी अनफॉर्चुनेटली इज ऑफ टुडे, ही इज नॉट इन द स्टूडियो। तो आई एम फिलिंग इन फॉर मार्विन जी एंड आई हैव कम इन अ लिटिल बिट अर्ली। तो गाइज, आज हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने होने वाले हैं। मेरे पास मेरे रेगुलर गिव अवे के अलावा दो स्पेशल गिव अवेज और हैं। पता है वो कौन से हैं? एक तो विशाल और शेखर लाइव के टिकट्स, ओके? एंड आई हैव टू गिव यू गाइज टू टिकट्स, बाय द वे। आई हैव टू टिकट्स टू गिव अवे फॉर विशाल एंड शेखर लाइव, विच इज गोइंग टू हैपन ऑन July 12th, ओके? एंड दूसरी चीज, फ्रॉम द मिराज लाउंज आई हैव अ गिव अवे अगेन, ठीक है? और उसके अलावा आज का ये वाला गिव अवे तो है, इसके अलावा मेरा रेगुलर गिव अवे भी है, विच इज़ द फन पिज्ज़ा किचन एंड द फ्लेवर लाउंज। तो गाइज, स्टे ट्यून्ड। मैंने अभी गिव अवे का क्वेश्चन भी नहीं अनाउंस किया, तो स्टे ट्यून्ड एंड वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। लेकिन उसके पहले, जाने से पहले, आपको पता है टुडे वॉज काइंड ऑफ लाइक माई डे ऑफ ऑल्सो। आई डेंट हैव एनी एक्स्ट्रा कैंप्स वगैरह वगैरह टू डू, सो देन ड्यूरिंग द डे ऑल आई डिड वॉज जस्ट रिलैक्स। आई स्लेप्ट सो मच, आई हैड गुड फूड, और मैंने अपना अच्छे से मेकअप शेकअप किया, एकदम सजना है मुझे सजना के लिए वाली वाइब्स आ गई। बट सजना तो है नहीं मेरा कोई, लेकिन मैंने अपने लिए सजा। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा स्पार्कल लगाना है एंड यू वॉन्ट फील अ लिल स्पेशल ऑन योर डे ऑफ, देन यू कैन हेड टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन। फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स, इयर रिंग्स एंड डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, फाइंड द परफेक्ट पीस फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और सिंपली ट्रीटिंग योर सेल्फ। Experience the unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And don't forget, अगर आप app download करते हैं, then you can check out their latest collection updates and more details. So, check out the song, then we'll come back and talk some more.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
4: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: ये तेरा घर, ये मेरा घर.
6: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
7: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
6: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
8: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: इट्स लॉसन.
8: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
9: इट्स लॉसन.
8: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
10: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
11: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा.
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
12: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
3: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
13: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
3: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
14: छोटा सा मेरो मदन गोपाल.
15: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
16: And guys, we are back. So, hum log baatein kar rahe the Pentagram ke baare mein. Not really. We were listening to the song by Pentagram. And we were talking about Vishal and Shekhar, jiske aaj main aapko ek nahi do tickets dene wali hoon. लेकिन उसमें जाने से पहले वी हैव अ सेकंड गिव अवे जिसके बारे में मैं आपको बता दूं. वेल आवर सेकंड गिव अवे इज गोइंग टू बी अबाउट, लेट मी क्विकली ओपन इट, द मिराज लाउंज. हाँ जी, तो मिराज लाउंज के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उसके पहले गाइज if you ever have any tax issues, you know how difficult it is to be an immigrant in this country. I know it because I am one. I moved here like 8 or 9 years ago and I'm telling you, it's not easy. For the first few years, you know, you're filing as a non-resident tax, and then after that you have to file as, you know, 5 saal ke baad you can file as a resident tax, and it was so complicated to figure out schedule C, A, wo wagera wagera, especially if you're an independent contractor. It took me forever and lots of money and lots of planning to figure out what my tax strategy was. So for the past 3-4 years, I've kind of got the hang of it. But don't be like me. Don't waste so much time and figure out your tax strategy. If you are on an extension, then you probably need a tax attorney, like, or like a tax person right now. In that case, contact somebody called AG FinTax. They are one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services for untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. So don't be like me. Don't waste so much time and spend loads and loads of money figuring out which accountant is going to figure out my complicated tax situation. Call these guys. Call them at 469-942-9888 or visit agfintax.com. When we come back after the song, we have the second ticket. Okay, so stay tuned.

गाइज वो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स है, पता है, दैट सॉन्ग इज सॉफ्टली बाय करण औजला एंड आई एब्सोल्यूटली लव दैट सॉन्ग. इट बॉप्स सो हार्ड सो हार्ड. एवरी टाइम आई लिसन टू इट मैं तो नाचने लग जाती हूँ. एंड समटाइम्स इट इज़ ऑन माई कार्डियो प्ले लिस्ट एंड आई एम लाइक ट्रेडमिल पे भागते भागते भागते भागते नहीं, आई डू अ यू नो ब्रिस्क वॉक ऑन द ट्रेडमिल, इनक्लाइन वॉक, और उसमें करते करते ना वॉक करते करते आई एम लाइक मूविंग माई हैंड्स टोटली डांसिंग वाइल लिसनिंग टू दैट सॉन्ग. मेरे आस पास सोच रहे ये पता नहीं क्या सुन क्या रही है, इसको क्या हो क्या रहा है लाइफ में. भाई लाइफ में ये हो रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं डांस करते करते अपनी एक्सरसाइज करती हूँ. सो आई एम दैट पर्सन. ओके सो डोंट जज मी नेक्स्ट टाइम यू सी मी. आगे बढ़ते हैं गाइस. देखा बिना एनीवेज बोले भी आगे बढ़ सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास दो दो गिव अवे है. एक विशाल एंड शेखर की टिकट्स जो somebody has already won. श्रीकांत कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दोज टू टिकट्स टू द कॉन्सर्ट. एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव गिव अवे इज फ्रॉम द मिराज लाउंज. सो डैलस, अगर आप अपना नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट स्पॉट ढूंढ रहे हैं फॉर ऑल माई यंग फोक्स एंड माई ओल्ड फोक्स, इट डजेंट मैटर ऑनेस्टली, देन इट्स टाइम टू गो टू मिराज लाउंज. मिराज लाउंज में क्या होगा? यू गेट प्रीमियम हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स, handcrafted cocktails, live music, exciting DJ nights. Wow, it's unstoppable, you guys. Everything is happening there. And here's the best part. Happy hour unka Monday se Thursday tak chalta hai, subah 11 baje se 6 baje tak. Pata hai, Dallas ke happy hour sirf 4:30 se 6 baje tak hote hai. Sirf 1.5 ghante ka hota hai most Dallas spots. But these guys are offering their happy hour from 11 a.m. to 6 p.m. featuring hookahs only at $24.99 and shots for only $5. Stop. That's worth it. Go have some shots with your girlfriends or boyfriends, whatever, doesn't matter. Have some shots with your friends. Thoda piyo, daru sharu piyo, have some fun. Don't miss fun with the ladies' night. They have a ladies' night and also a college night. All my UTD folks, you gotta go. Kyunki main UTD ke paas rehti hu, to aapko to jana padega, theek hai? Visit Mirage Lounge on McKinney Ranch Parkway because miracles happen at Mirage. And you can look at your own mirage in the mirror in the bathroom after getting drunk. Trust me, drunk pictures are very fun. Answer today's simple question and then what you can get is $20 off on a bill of 50. So if you go with a group of 10 guys or 10 girls and if you order $50 worth of food and drinks and hookah, then you get $20 off. That's a steal. That's almost a 50% off. Not a full 50% off, but that's cool. Okay? So, I'm going to pick two winners for this one. And jo do pehli calls jayengi, aapko saath mein call karna padega. Jo do pehle callers jo mere honge, you guys will win this. So stay online, okay? So my question is, agar aapko wo movie pata hai, it is related to Vishal and Shekhar. If you know the movie Honeymoon Travels Private Limited, theek hai? To uska, usme, if you've seen the movie, then you know what I'm talking about. But usme there is a superhero couple, okay? It's basically about all these couples going on their honeymoon and like all kinds of weird things happen. But within that, there is a superhero couple like Superman. And I mean like Superman, Batman, flying in the sky, wearing a red cape and all that. So, aapko mujhe ye batana hai, which are the two actors that played the superhero couple? So, call me and tell me now. Tick, tick, tick, tick, tick, टाइम शुरू हो चुका है तो आप बताइए मुझे कॉल करके कि विच आर द टू सुपर हीरो कपल्स. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए. अगर आपको नहीं फिगर आउट हो रहा है तो यू नो आई एम श्योर यू विल फिगर इट आउट. कम ऑन.

गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल कॉल्स. अनफॉर्चुनेटली हमें दो विनर मिल चुके हैं ऑलरेडी. कंग्रेचुलेशंस विशाल एंड कंग्रेचुलेशंस फयाज फॉर विनिंग दैट गिव अवे व्हिच इज $20 ऑफ ऑन अ बिल ऑफ $50 फ्रॉम द मिराज लाउंज. वेल द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वॉज अभय डियोल एंड मिनीषा अलाम्बा. येस दैट वॉज द मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ द मूवी. जब मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग सुपर हीरो कपल निकलेंगे. मतलब बहुत सारे कपल्स तो थे मूवी में लेकिन वो सुपर हीरो कपल निकलेंगे मुझे ये इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था. वो टुवर्ड्स द एंड में ही पता चला. लेकिन उनका बड़ा अच्छा सा गाना है प्यार की ये कहानी सुनो. तो आई विल प्ले यू दैट सॉन्ग. ठीक है तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

0: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
1: हाँ देख लेंगे।
0: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
1: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
2: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलस न्यूएस्ट।
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: सुनो कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड Inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
11: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
12: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
12: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5-13, कॉइट Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभाल लेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: Guys, we are back and you are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. हाँ जी, आज मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ, लेकिन मैं फिर भी वही फन लेके आऊंगी दोबारा 7 बजे। तो प्रॉपर टाइम 7 बजे से है, लेकिन आज हम वी आर फिलिंग इन फॉर मार्विन जी हु इज आउट टुडे। तो तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए, because I have fresh music when I come in for y'all.

भाई, लिसनिंग टू श्रेया घोषाल रैप वॉज नॉट ऑन माई लिस्ट फॉर लास्ट ईयर. यू नो, वॉज नॉट ऑन माई 2025 लिस्ट, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज दैट सॉन्ग वॉज रियली गुड, वॉजंट इट? दैट वॉज सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल ऑन एन इंडी सॉन्ग बाय सलीम सुलेमान, विच वी ऑल नो आर लाइक रियली अमेजिंग बॉलीवुड कंपोजर्स एंड देयर ऑफकोर्स ग्रेट बॉलीवुड सिंगर्स. लेकिन they also did this track which was separate from any movie. And if you follow Salim Suleiman, you know they have collaborated with a lot of indie artists. And I will play you some of the songs that they have done later in the evening today. So aap log tuned in rahe because we listened to some amazing, amazing songs today. And then I'm going to tell you about some amazing things that I saw today on the internet. But however, aage jaane se pehle, guys, Passion Health Primary Care. How much does your time, does your doctor spend with you? 5 मिनट, 10 मिनट? Well, अगर आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के पास जाएंगे, देन दे विल स्पेंड अ फुल 30 मिनट्स विद यू बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट देयर, यू आर लाइक फैमिली. और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर रियली केयर्स अबाउट देयर कम्युनिटी. एंड दैट्स नॉट ऑल, दे आर ग्रोइंग, दे आर हायरिंग डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. तो इफ यू आर इन दैट फील्ड एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, देन यू शुड रीच आउट टू देम एट पैशन हेल्थ फिजिशियंस @gmail.com,

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है। ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
4: तो पहनती क्यों नहीं हो?
3: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
4: तो रोज वाला ले लो।
5: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route. Rerouting.
6: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी